0: तो पितृपक्ष की जैसे बात चल रही थी आगे बढ़ते हैं, तीन पशुओं की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला है कुत्ता। कुत्ते को यम का दूत माना जाता है, कहते हैं कि इससे इधर माध्यम की वस्तुएं भी नजर आती है। कुत्ता जो है यम का दूत है, तो उसको पहले ही हो जाता है आसार हो जाता है कि क्या होने वाला है। दरअसल कुत्ता एक ऐसा प्राणी है जो भविष्य में होने वाली घटनाओं को और ईथर माध्यम सूक्ष्म जगत की आत्माओं को देखने की क्षमता रखता है। कुत्ते को
1: आगम हो जाता है,
0: हिंदू देवता भैरव महाराज का सेवक माना जाता है। कुत्ते को भोजन देने से भैरव महाराज प्रसन्न होते हैं और हर तरह के आकस्मिक संकटों से भी भक्त की रक्षा करते हैं। कुत्ते को रोटी देते रहने से पितरों की कृपा बनी रहती है, तो इसलिए कुत्ते को रोटी देना हर समय देना चाहिए, तो आपके पितरों की कृपा आपके बस की रहेगी। अगला है गाय। जिस तरह गाय में सभी देवी देवताओं का निवास है, उसी तरह गाय में सभी देवी और देवताओं का निवास बताया गया है। दरअसल मान्यता के अनुसार 84 लाख योनियों का सफर करके आत्मा अंतिम योनि के रूप में गाय बनती है। गाय लाखों योनियों का वह पड़ाव है जहां आत्मा विश्राम करके आगे की यात्रा शुरू करती है। गाय जो गाय माता है, कुछ लोग जानवर बोलते हैं पशु बोलते हैं, तो गाय को पशु नहीं बोलना चाहिए, तो गाय माता का दर्जा दिया गया है।
1: हाँ राजेंद्र जी, जैसे आपने कहा था 84 लाख योनि,
0: 84 लाख योनियों मतलब
1: हाँ,
0: अब मनुष्य की एक योनि है, ऐसे कुछ कुत्ता जानवर जो अलग अलग 84 लाख योनियों में से जब सबसे आखिरी योनि गाय की होती है,
1: हाँ,
0: वहाँ वो आत्मा कुछ समय के लिए विश्राम करती है और हाँ, इसके बाद आगे की यात्रा पे बढ़ती है।
1: अच्छा,
0: हाथी। हाथी की बात चल रही है। हाथी को हिंदू धर्म में भगवान गणेश को साक्षात रूप में माना गया है। यह इंद्र का वाहन भी है। हाथी को पूर्वजों का प्रतीक भी माना गया है। जिस दिन किसी हाथी की मृत्यु हो जाती है, उस दिन उसका कोई साथी भोजन नहीं करता। हाथियों को अपना पूर्वजों की स्मृतियाँ रहती है। अश्विन मास की पूर्णिमा के दिन गज पूजा विधिवत रखा जाता है। सुख समृद्धि की इच्छा रखने वाले उस दिन हाथी

0: की पूजा करते हैं।
1: गज किसको कहते हैं?
0: गज हाथी को कहते हैं।
2: अच्छा,
0: गज मत संस्कृत में बोलते हैं ना।
1: अच्छा, गज। अच्छा,
0: इसके अलावा बराहा, बैल और चींटियों का यहाँ उल्लेख किया जाता है। जो चींटी को आटा देते हैं और छोटी छोटी सी चींटियों को चावल देते हैं चिड़ियों को, वही बैकुंठ चले जाते हैं। तो इसलिए चींटी को आटा देना चाहिए, चिड़ियों को चावल देना चाहिए। तो आगे बात करते हैं, संजय जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
3: जरूर जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं शांता जी भी कुछ तैयार कर चुके हैं कहने के। मेरे ख्याल से कुछ पिटारा से कुछ सुनाने वाले हैं अपने ओर से। पर शांता जी, यहाँ पर किसी ने ये संदेश भी भेजा है राजेंद्र जी कि हर कोई सुख की चाबी ढूंढ रहा है, लेकिन सवाल ये है कि सुख की ताला किसने लगाया है। तो सुख के ताला के और किसने लगाया है, इसके लिए कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश है। और ज्योति का प्रकाश जिसमें आपको कुछ ना कुछ संदेश आपके लिए खोज खोज करके रखा जाता है, और जिसे आपके जीवन का ज्योति जो जल रहा है उसमें थोड़ा और प्रकाश आ सके। दोस्तों, ये कार्यक्रम जो लगभग 188 देशों तक सुना जा सकता है, तो आशा यही है कि इस कार्यक्रम से कुछ ना कुछ लाभ आपको जरूर प्राप्त होए। चलो एक गीत सुन लेते हैं तो आगे बढ़ेंगे।
0: जरूर।

0: वो घर कितना सुंदर है जिस घर में पितरों का हो सत्कार। बहुत अच्छा जो भजन था, बहुत ही अच्छा भजन था शांता जी। आपने जो भजन ढूंढते हैं बड़े, उसका हम बहुत ही आभार करते हैं कि आप इतने ढूंढ ढूंढ के अच्छी चीज़ लाते हैं। हाँ, समय लगाते, बहुत अच्छा। आगे चलते हैं, जलचर जंतु। तीन जलचर जंतु की बात चलेगी। भगवान विष्णु ने एक बार मत्स्य का अवतार लेकर मनुष्य जाति के अस्तित्व को जल प्रलय से बचाना था। जब श्राद्ध पक्ष में चावल के लड्डू बनाए जाते हैं तो उन्हें जल में विसर्जित कर दिया जाता है। कछुआ, आगे की बात चलेगी कछुआ की।
1: तो राजेंद्र जी, कछुआ है क्या? कछुआ,
0: कछुआ
1: किसको कहते हैं?
0: कछुआ एक ऐसा होता है, ऐसा स्केल पार, वो ऐसे चलता है।
1: कछुआ किसको कहते हैं शांता? अगर आप हो सके तो और बढ़िया से हम सबको बता सके।
2: स्केल पात।
1: हाँ, राजेंद्र जी स्केल पात को कहते हैं।
0: भगवान विष्णु ने कच्छप का अवतार लेकर ही देव और असुरों के लिए मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर स्थापित किया था।
2: हाँ।
0: जब भगवान ने कछुआ का अवतार लिया था और मंदराचल पर्वत अपनी पीठ पे लिया
2: जी,
3: तो समुद्र मंथन
0: और समुद्र मंथन हुआ, तो समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले
2: जी।
0: सबसे पहले हलाहल विष निकला था
2: जी,
0: जिस विष से एकदम सब लोग झुलस रहे थे, कुछ मर रहे थे। तो फिर भगवान शंकर ने अपने गले में उसको विष को रोका और वही नीलकंठ महादेव के नाम से जाने गए। हरिद्वार से थोड़ी दूरी पे एक जगह है नील का मंदिर, आपने कोई गया है?
2: हाँ, जी, हमने गए।
0: हाँ, तो वही,
1: तो संद्रा जी आपने भी गए हैं नीलकंठ मंदिर?
3: हाँ जी, मैं गई।
1: तो वहाँ के बारे में कुछ बताइए, वहाँ का वातावरण कैसे है, वहाँ पर जाकर के क्या खूबियां है और कैसे वहाँ पहुँचते हैं?
0: हाँ, कछुआ की थोड़ा सा बात खत्म कर देते हैं, इसके बाद संद्रा जी आप बताएंगे वहाँ के बारे में। कछुआ बहुत ही पवित्र उभयचर जंतु है जो जल की सभी गतिविधियों को जानता है।
1: अच्छा? जल की सभी गतिविधियों।
0: हाँ, कछुआ को बहुत सारे लोग अपने घर पे भी रखते हैं, कहते हैं कि कछुआ अगर घर पे रहता तो लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए रखते हैं
1: ऐसा।
0: और तीसरा जो है नाग है। भारतीय संस्कृति में नाग की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि यह एक रहस्यमय जंतु है। यह भी पितरों का प्रतीक माना गया है। इसके अलावा मगरमच्छ भी माना जाता है। तो बताइए जी,
1: मगरमच्छ किसको कहते हैं राजेंद्र जी?
0: मगरमच्छ जो पानी में
1: कि हम जरूर समझ जाते, जैसे कि राजेंद्र जी हम सबको एकदम सरनामी में जो हम सबको समझा देते हैं और सारा संदेश। राजेंद्र जी, कार्यक्रम आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा सा वृतांत जब सांद्रा जी हम सबको सुना दे कि उन्होंने जा करके और कौन सा स्थान पे गए थे। सांद्रा जी
3: जी, हम गए थे नीलकंठ मंदिर, वो हरिद्वार में है। पहला बात तो ये है, आप भारत जाओ और मन में लेकर जाओ कि आप जा रहे हो हरिद्वार, तो सबसे पहले मन में आता है कि शिव बाबा के दर्शन होगी और गंगा की दर्शन होगी, गंगा स्नान करेंगे। तो हम लोग तो गए थे न्यू दिल्ली से, हम लोग तो बस से गए थे और वहाँ से पैदल गए थे। तो जो मन में हो गया कि गंगा जी की दर्शन होगी, शिव जी की दर्शन होगी, तो मन तो तृप्त हो जाती है। बस ये बात सुनकर, ये बात दिल में रखकर जाओ वहां पर। हम तो गए थे, समर रहा, ठंड नहीं थी,
1: गर्मी के समय था,
3: बहुत था धूप, बहुत था। तो हम लोग गर्मी के समय में गए थे और गंगा में पैर रखो, गंगा इतना ठंडा है, गंगा जी
2: शीतल
3: जल, थीफ जो सो अनहेल खुद रिलैक्स फुल। एंड हाँ जी, हम गए मंदिर में, शिवलिंग है, शिवलिंग पर अर्पण किए, जो भी अर्पण कर पाते थे वहाँ। थोड़े थोड़े पंडितों है वहाँ पे जो मदद करती है, चीज़ें बिकती है, जो भी चढ़ाना चाहो चढ़ा लो और मन अपना तृप्त कर लो। जैसे आपने कहा, मन शुद्ध करो तो धर्म के काम कीजिए ना, मन के पवित्र करना है तो धर्म के काम कीजिए, धर्म के काम करने से मन पवित्र होता है।
2: हाँ सांद्रा जी, अपना अपना बताए, अच्छा लगा सुनने के लिए। और मेरे ख्याल से
1: सुनते सुनते ये भी मन में हो गया कि मेरा भी इच्छा हो रहा है, कब चले
2: और हम चलेंगे सच में
3: फिर से।
2: हाँ हाँ, ये सांद्रा जी जो गंगा जल के बात करी ना, तो जैसे हम, मैं भी एक बार भारत जो गई तो मेरे गोड़ में बहुत सारा दर्द था, ठीक से चल नहीं पाती थी और मेरी पैर बहुत से सूजन था उसमें, और ऐसा मौका आई कि हम सब गए काशी,
1: काशी
2: काशी विश्वनाथ। तो वहाँ पे हमारे गाइड जो है हम सबको बोट में बैठा कर अलीगढ़ एक्वा की
3: दूसरे किनारे
2: किनारे हाँ, तो वहाँ से हमको कहा, हम सभी को कहा कि आप अपना पूजा करना चाहते तो करो। तो मेरे मन में यही, कभी मैं सुनी थी कि फान गंगा जी जो आप मांगोगे जो भी करोगे मन से करोगे तो वो पूरा करती
1: है, करती तो है। गंगा है, है।
2: वाकई मैं गई, मैं तो स्नान की बार मैं उसमें गई गंगा में, और उससे
3: रखी आपने,
2: उससे माता से मैंने प्रार्थना की मने मन में, और सच में उसी दिन मेरी पैर अच्छी हो गई, और आज तक मेरी पैर में दर्द नहीं।
0: तो सुनने वालों आपने देखा कितना बढ़िया वृतांत शांता जी ने बताया गंगा का, कि गंगा में केवल जल के स्पर्श मात्र से ही समस्त दुख दूर हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग तो कहते हैं कि गंगा जल से ऐसा नहीं होता। तो सब पॉजिटिविटी अगर जो लोग उन तरफ रहते हैं तो उनका जरूर होता है, जो नहीं रखते हैं तो उनका मैं कह नहीं सकता,
2: होता है।
0: बहुत ही अच्छा शांता जी आपने जो
2: स्नान किए, और उसमें हम स्नान के कुंभ मेला में हम गए थे, जितने दिन हुआ थी दो हफ्ते हुआ थी, रोज हम जाते स्नान करें, और उसका परिवर्तन होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि तुरंत नहीं होता है, पर समय के अनुसार उसका परिवर्तन होता है अपने जीवन में।
1: दोस्तों, ये फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा कार्यक्रम ज्योति का अवकाश चल रहा है। तो राजेंद्र जी,
0: जी
1: जरा ये तो बताइए कि कुछ और संदेश है हमारे ये पार्व श्राद्ध के अंतर्गत?
0: हाँ, जैसे कि आजकल पितृपक्ष की शुरुआत है, चल ही रहा है पितृपक्ष, उसके बारे में थोड़ा सा बातचीत। जी
1: क्यों ना एक सुंदर सा गीत, क्योंकि शांता ने आज का गीतों जो इकट्ठा किए है ना, ये हम जानते हैं कि परमात्मा कभी भाग्य नहीं लिखता है। जीवन के हर कदम पर हमारे सोच, हमारे व्यवहार एवं हमारे कर्म है हमारा भाग्य लिखते हैं। तो राजेंद्र जी, एक सुंदर सा गीत के ओर हम सब चलते हैं, फिर आगे कार्यक्रम बढ़ेंगे।
0: जरूर।

0: भरोसा करना भारी है। तो क्यों ना आगे का जो आजकल पितृपक्ष के बारे में थोड़ा सा समझ जाए।
1: कहने के तात्पर्य यह है दोस्तों कि देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान सबसे सर्वश्रेष्ठ है। राजेंद्र जी, जैसे कि आप हम सबके कार्यक्रम में पितृपक्ष अंतर्गत जो परवंश रात है उस अंतर्गत में और सुनाने वाले हैं, तो आगे का संदेश क्या है?
0: आगे का संदेश है कि पितरों का महत्व क्या है। संसार के समस्त धर्मों में कहा गया है कि मरने के बाद भी जीवात्मा का अस्तित्व समाप्त नहीं होता, वरन वह किसी न किसी रूप में बना ही रहता है। जैसे मनुष्य कपड़ों को समय समय पर बदलते रहते हैं, उसी तरह जीव को भी शरीर बदलने पड़ते हैं। जिस प्रकार तमाम जीवन भर एक ही कपड़ा नहीं पहना जा सकता, उसी प्रकार आत्मा अनंत समय तक एक ही शरीर में नहीं ठहर सकती। न जाते मियते वा कदाचिन्नमयी भूत्वा भवितो न भूभुवा, न जायते मित्रते वा कदाचिन्नाय भूता भवितो वा न भूपा, पूजो नित्वा शाश्वतं पुराणानां, हन्यते हन्यमाने शरीरा गीता। गीता के अध्याय 2 के अध्याय में कहा गया है कि आत्मा न तो कभी जन्म लेती है और न मरती है। मरना जीवन शरीर का धर्म है। शरीर का नाश हो जाने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। विज्ञान के अनुसार कोई भी पदार्थ कभी नष्ट नहीं होता, वरन उसके रूप में परिवर्तित हो जाता है। व्यक्ति के संस्कार होने के बाद यही अक्षय आत्मा पितर रूप में क्रियाशील रहती है तथा अपनी अनोत्मनी के लिए प्रयास रहित रहने के साथ साथ पृथ्वी पर अपने स्वजनों एवं सुपात्रों की मदद के लिए सदैव तैयार रहती है। पितरों के प्रति श्राद्ध, उनका स्मरण एवं उचित संस्कार करने से हमें सदैव पितरों से लाभ ही लाभ मिलता है। पितर वह उच्च आत्माएं होती है जो अपने स्वभाव एवं संस्कार के कारण दूसरों की यथासंभव सहायता करती है। हिंदू धर्मों के पितरों में संदेशवाहक भी कहा गया है। शास्त्रों में लिखा है, ओम अरयम माना तृप्तताम इदम त्रिलोकम तस्मै स्वाध्याय नमः मृत्योर्मा अमृतम गमया। अर्थात अर्यम्मा पितरों के देव हैं जो सबसे श्रेष्ठ हैं। उन अर्यम्मा देव को प्रणाम करता हूँ। हे पिता महा और प्रति महा, हे माता माता महा और परमात्मा महा, आपको भी बारंबार प्रणाम है। आप हमें मृत्यु से अमृत की ओर ले चले। इसका अर्थ यह है कि वर्ष भर अपने देवों को समर्पित अनेकों पर्वों का आयोजन करते हैं, लेकिन हमने बहुत से लोग यह महसूस करते हैं कि हमारी प्रार्थना देवों तक नहीं पहुंच पा सक रही है। हमारे पूर्वज देवों और हमारे मध्य एक सेतु का कार्य करते हैं, और जब हमारे पितृ हमारी श्रद्धा हमारे भाव हमारे कर्मों से तृप्त हो जाते हैं, हमसे संतुष्ट हो जाते हैं, तो उनके माध्यम से उनके आशीर्वाद से देवों तथा हमारी प्रार्थना बहुत ही आसानी से पहुँच जाती है और हमारे मनोवांछित फल की शीघ्रता से प्राप्त हो जाती है। पितरों का सूक्ष्म जगत से संबंध होने के कारण वह अपने परिजनों स्वजनों को सतर्क करती रहती है तथा तमाम कठिनाइयों को दूर कराकर उन्हें सफलता भी दिलाती है। सामान्यतः यह सर्वसाधारण को अपनी उपस्थिति का आभास भी नहीं देते, परंतु उपयुक्त मनोवृत्ति एवं व्यक्तित्व को देखकर या उपस्थित होकर भी सहयोग एवं परामर्श देते हैं। पितरों का उद्देश्य ही अपने वंशजों को पितृवृत्त स्नेह दुलार सहयोग एवं खुशियाँ प्रदान करना है। संसार में तमाम उदाहरण उपलब्ध हैं जब इन्होंने दैवीय वरदान के रूप में मदद की है। पितरों का महत्व पितर अपने कुल से मात्र अपने प्रति श्रद्धा अपना स्मरण अपना आदर तथा अपने प्रति उच्च संस्कार ही अपेक्षा रखते हैं, और यह भी सत्य है कि उनका श्राद्ध करने के नाम उनके नाम से दान धर्म करने संस्कार करने स्मरण करने का पुण्य फल एवं यश करने वालों को ही प्राप्त होता है तथा उनका कुछ मात्र अंश ही हमारे पितरों के पास पहुंचता है। जो करता है वही भरता है, परंतु हमारे पितर जब यह देखते हैं कि मेरे कुल के लोग हमेशा प्रति कृतज्ञता का उपहार का भाव रखते हैं प्रदर्शित कर रहे हैं, तो उन्हें असीम संतोष एवं सुख का अनुभव हो जाता है।
1: ऐसा होता है। तो राजेंद्र जी, आपने लगातार और हिंदी में और ऐसा संदेश सुंदर रूप से दिया चलो सांद्रा जी भी उसे कोशिश करेंगे, उसका पूरा नहीं हो पाएगा दोस्तों।
2: नहीं, डांस भी करेंगे।
3: हाँ जी, तो मैं भी यहाँ पर कुछ संदेश देना चाहती हूँ डच में, नीदरलैंड्स में। पितृ श्रद्धांजलि, वट हाउ दैट इन दैट बिटेकन दैट वी गान फॉर एरन फ्रॉम द फोर ओल्डर्स एंड दैट इज अ हेल बिलोंगरेक रिचुअल फॉर द हिंदूस। हियरमी टोनू रिस्पेक्ट voor de verering van de overledene. En het is vooral zo belangrijk omdat de ziel van de overledene na de dood beschermer wordt voor het hele gezin. De verplichting aan de voorouders heet Pitr Reen. Hindoes vervullen deze verplichting door een offerplechtigheid te houden genaamd de Shraad. Shraad wordt meestal gehouden in Pitrapaksh voor de ouders indien al overleden. Alleen voor de overledene ouders wordt deze shraad gedaan. Ouders, grootouders en overgrootouders of voor alle voorouders. Aan hun ouders hebben Hindoes een ereschuld zolang die nog in leven zijn, want die hebben hen verzorgd en opgevoed. Mana to ye pitrareen kabhi khatam nahi hota hai, lekin hum log hinduo maan kar chalte hai ki shraad karne se kuch kam ho jata hai. Ze lossen de schuld voor het grootste deel af door hen te verzorgen als ze oud zijn geworden en niet kunnen werken. Er blijft nog een restschuld over die wordt ingelost met shraad door middel van jaldaan, water en melk, tildaan, maanzaad, diepdaan en het reciteren van pitramantras om uw matapita, parpita op een juiste vedische manier Sridhanjali uit. Aap pitrareen se mukt hona chahte, apne pitro ko mukti dilana chahte ho, to kuch bhi kijiye, lekin kijiye kuch.
1: जरूर, संद्रा जी ने भी संदेश दिए। राजेंद्र जी, जैसे कि संदेश में और हम सब सुनते आए हैं कि हमें तीन प्रकार के ऋण होता है। पहला जो पितृ ऋण, दूसरा ऋषि ऋण और तीसरा देव ऋण। इन तीनों पे हमें ध्यान देना है और हम सब क्या कर सकते हैं इसे अंतर्गत में, इसमें कुछ ना कुछ संदेश और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा। तो संदेश क्या है, पहले हम सब संदेश सुना देते तो फिर हम सब अगले गीत की ओर बढ़ेंगे।
0: संदेश थोड़ा सा ही है, ज्यादा नहीं है। अपने प्रियजनों की साधना सहायता के लिए वह हर संभव प्रयत्न करते हैं। पितरों के प्रति श्रद्धा भाव रखने, उन्हें सद्भावना भरी श्रद्धांजलि देने तथा उनके प्रति अनुकूल भाव रखकर उनकी सहायता लेने से पीछे नहीं रहना चाहिए। परिजनों का मृतक के लिए लगातार रोना पीटना तथा शोक प्रदर्शन करने से उन्हें दुख होता है, उनकी शांति में बाधा पड़ती है। इसलिए उनकी यादों, स्मृतियों, क्रियाकलापों को सदा के लिए संजो कर रखकर हमने उनसे प्रेरणा कर लेनी चाहिए, उनकी शांति की कामना करनी चाहिए। परंतु मृतक के साथ शारीरिक मोह बंधन शीघ्र ही तोड़ लेना चाहिए। यह मानना चाहिए कि उनका रूप अवश्य बदल गया, लेकिन उनका आशीर्वाद सदा हमारे साथ है। परावैज्ञानिकों को अपने अनुसंधानों के दौरान अनेक साक्ष्य मिले हैं, जिससे यह पता चलता है कि तमाम पितरों ने समय समय पर अपने आत्मियों की कठिनाइयों की सहायता की है तथा उसका उचित मार्गदर्शन भी किया है। कहीं यह नज़र नहीं आई, कहीं उनकी आवाज़ सुनाई पड़ी और कहीं यह स्पष्ट आभास हुआ है कि कोई परलौकिक शक्ति हमारी मददगार बनी। प्रसन्न हमारा उनके प्रति श्रद्धा, विश्वास एवं कठिनाइयों में उनका स्मरण करने का है। हमें अपने पितरों के प्रति वैसे ही श्रद्धा भावना रखनी चाहिए जैसे हम प्रभु के प्रति रखते हैं। संसार में सभी धर्मों एवं सभ्यताओं में पितरों के प्रति कर्तव्य पूरा करने को कहा गया है। अनेक धर्मों में अलग अलग रीतियों की पितर पूजन एवं श्राद्ध पर्व धर्म की परंपरा प्रचलित है। पितरों को स्थूल सहायता नहीं परंतु सूक्ष्म भावात्मक सहयोग एवं श्रद्धा मात्र की आवश्यकता होती है, क्योंकि वह सूक्ष्म शरीर में ही रहते हैं तथा प्रसन्न होने पर यह पितर बदलने की प्रेरणा, शक्ति, सहयोग, मार्गदर्शन एवं सफलता प्रदान करते हैं। यही आज का जो संदेश था पितृपक्षों के समय का, यही संदेश रहा। अब हम चाहेंगे कि एक छोटा सा भजन चलाया जाए, जिस प्रकार दूजे की बात मानी जाए, तो आप फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे।

माँ बाप की नज़र में सर को पकड़ के रोके। बहुत ही अच्छा जो भजन था वैदिक नित्य कर्म विधि का, बहुत अच्छा भजन रहा। अब हमारा समय बढ़ता है आगे की ओर, तो संजय जी अब हम लोगों को वही गाना याद आता कि लागे छूटे ना अब तो सनम। जैसे ही मोहम्मद रफ़ी का ये गाना और लता मंगेशकर जी का गाना आता है, सब लोगों को पता चलता है कि हम लोगों का समय अपनी सीमा पे पहुंच चुका है और हम विदा लेने वाले हैं। तो समय तो कभी किसी के लिए रुकता नहीं, विदा तो लेना ही पड़ेगा। क्यों ना वही गाना लागी छूटे ना सनम अब तो सनम चलाया जाए।

0: पुकारे।
1: हाँ, उन हिंदुस्तानी की रेडियो को सुनने वालों, जैसे कि ये गाना शुरू होता है और हम लोगों का विदा लेने का समय होता है, तो बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं को जिन्होंने हमें इतना प्यार से सुना। और आज के जो कार्यक्रम रहा पितृपक्ष के बारे में, सब लोगों ने सुना, मनन किया, बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली बार इसी दिन इसी समय, तब तक के लिए नमस्कार, यानी सेवक राजेंद्र सिंह का नमस्कार, धन्यवाद।

एहसास मिटा, तलाश मिटा, मिट गया उम्मीदें भी, सब मिट गया, पर जो ना मिट सका वो है याद तेरी। सुने वालों, इसी वाणी के साथ आपको सेविका शांता की प्यार भरी राम राम प्रणाम। आपको एक शुभ दिवस होवे।

0: जीना।
1: जिंदगी छोटी नहीं होती है, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं, तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। बस यही जिंदगी है। दोस्तों, आज का कार्यक्रम यहाँ पर समाप्ति पे आकर पहुँचे हैं। आशा यही है कि कुछ न कुछ संदेश आपके लिए इसमें जरूर लाभदायक निकले, और हम सब अगले सप्ताह कार्यक्रम लेकर फिर उपस्थित रहेंगे। आज के कार्यक्रम में सहयोग देने वाले शांता खेमई जी और सांद्रा जी, और हमारे पैनल के पीछे राजेंद्र सिंह जी, और मैं हूँ आपका सेवक संजय। नमस्कार कहता

तो यारो देखा जाए आपको हम नाइटिंगेल लता जी का सॉन्ग सुनाते हैं, और ये कौन सा गीत है, मूवी का नाम है, यानी कि एक मस्त भरी गीत है, अभी आप लोग को बताएंगे और आगे इस गीत के बारे में।

जुड़ तेरी मेरी बीच में कैसा है ये बंधन, तो ये अनजाना है कमल हसन रति अग्निहोत्री का ये मूवी एल्बम है, नचिकेता जी का ये सॉन्ग है एक और हो जाए।

और मूवी एक दूजे के लिए फन 1981 का ये सॉन्ग है एक और चलते है यार नहीं तक का अलका यांगनी कुमार शान उदित नारायण का ये गीत है जो आपको जरूर पसंद होगा।

और चेहरा तो क्या देखियो भैया, दिल में उतरियो तो उसका मजा आपको और मिलेगा। कायांगनी कुमार चानू।

और देखा है, क्या देखा है, क्या देखा है, साजन के प्यार देखा है, और कहां देखा है, आंखों में जाकर देखा है, और देखा है तो और आगे क्या देखेंगे। नाइटिंगेल लता जी पर माशी मोहम्मद रफी का एक और सॉन्ग हो जाए, तेरे नीले नीले आंखों की।

दोस्तों जोंग जोंग जोंग मूवी का नाम है तुमसे अच्छा कौन है 1969 रंगत तेरी सूरत से इस An romantic duet song by the golden voice of Nightingale, Lata Mangeshkar, and Padmashri Mohammad Rafi White, Hasrat Jaipur. Song the hit. Uske baad hum chalte hain movie ka naam hai Waqt 1965 ka ek super hit song hai jo Padmashri Rafi ji ka yani ki Rafi ji ka song hai aur suna jaye.

और ऐ मेरी जोहरा जबी, तुझको मालूम नहीं है कि आप कितना हसीन है, और तुझे ये भी मालूम नहीं है कि अभी हम कितना जवान है। ये तो बातचीत हो रहा है और ये बात तो दो प्यार करने वालों के लिए है, और उसके बाद हम चलते हैं। आप यहाँ आए और जॉनी के पास किस लिए गीत सुनने को, आप यहाँ आए किस लिए? और दादा किशोर जी का ये सॉन्ग है, आशा भोसले का ये गाना है, हिंदी मूवी सॉन्ग। तो दोस्तों, किशोर दादा आशा भोसले का सॉन्ग, मूवी के नाम है कल आज और कल। 97.1 का ये प्यार भरी मस्त भरी सॉन्ग है, जिबर हिट सॉन्ग।

0: ले जरा आप मुस्कुराइए।
1: मुस्कुराने की न कोई बात है,
0: आज देखिए तो क्या हसीन रात है।
1: ओ

0: जरा थाम लो बार बार पूछो ना दिल से भी काम लो
1: काम का बताओ
0: काम सीधा साधा है
1: बोलो बोलो
0: आज लेना एक वादा है
1: क्या
0: आजा आजा बुलाया इसलिए आए हैं तो काम भी बताइए पहले जरा आप मुस्कुराइए पहले जरा आप मुस्कुराइए
2: और आपको मुस्कुराने की तो बात है दोस्तों। और ये गीत एक बेमिसाल गीत किशोर दादा आशा जी का। और हम चलते हैं अगला सॉन्ग की ओर। वो है वो क्या है आप खुद ही सुनिए। चेहरे पे खुशी छा जाती है क्यों छा जाती है जो किसी को प्यार आ जाते हैं।

दिन है बहार की और लाखों गम संसार के और आ जाना। तो यहाँ पर हम चलते हैं किशोर दादा के ओर और किशोर दादा आपको क्या सुनाते हैं।

और दोस्तों देवानंद का ये फिल्म है जो आप लोग को देखना चाहिए, इट इज हील मूवी फिल्म एंड से। तो हम चलते हैं और आगे को अपना प्रोग्राम को लेकर। ये भी एक सॉन्ग है जो चोरी चोरी जो तुमसे मिली, नाइटिंगेल लता मंगेशकर और करोड़ों का दिल चुराने वाला द हार्ट ऑफ मिलियंस माइती मुकेश का ये सॉन्ग।

और तुमसे हो हसीना कभी तो मोहब्बत तो मैंने करनी थी। पद्माश्री मोहम्मद रफी का ये सॉन्ग है, मूवी का नाम है फर्श 1967 के सॉन्ग थे। उसके बाद हम चलते हैं आशा जी की और आशा जी मूवी का नाम पूजा का फूल और आशा भोसले का ये सॉन्ग है।

0: बंदा परवर का ये सॉन्ग है। और आप जानते हैं रफी साहब कितना सुंदर सुंदर गीत को गाया है, तो ये आप सबके लिए भी है।
1: There is no need for panic. They are crossing some highways. Please remain where you are. And for your entertainment, Miss Colette will give you an exciting cabaret number.

और अब नाराज खुदा कहे करे दोस्तों क्या जरा ठहर तुझे समझाऊं, पूजा का फूल है, मूफी का नाम है, नाइटिंगेल लता जी का सॉन्ग है।

करारे साहे जय मुखर्जी विजयंती माला का ये फिल्म इशारा जोंग का और ये नाम है। और दोस्तों ये सब पुराना पुराना गीत कितना अच्छा लगता है।

मित्रों, सुख शांति सांसारिक साधनों में नहीं, अपने सत्यता और सत्य स्वरूप

दोस्तों, रिश्तों को इतनी अहमियत मत दो कि जब वे टूटे तो तुम्हारा अस्तित्व भी यानी परसोलक है बिखर जाए। और जिनकी कदर नहीं है, जब कोई आपका कदर नहीं करे तो उनसे दूर ही रहो, ये बेहतर है मित्रों, बहुत बेहतर रहेगा। और कुछ रिश्ते केवल सीख देने के आते हैं, आपको कुछ सिखाने के लिए आते हैं और साथ निभाने नहीं। और जो बार बार बार बार तुम्हें चोट दें, उसका हाथ पकड़ने से बेहतर है मित्रों, साथ रहने से बेहतर है दोस्तों कि उसे मुक्त कर देना। और कई बार जिनसे हम सबसे ज़्यादा उम्मीद रखते हैं, वही हमें सबसे अधिक

खुद को आत्मा इतना निर्भर बनाओ कि किसी का साथ रहे या ना रहे तुम्हारी गति ना रुके, तुम्हारी गति ना रुके। मित्रों, इस तरह से अपने को निर्भर बनाओ।

मित्रों, कहे जाते हैं कि जीवन में सफलता केवल ध्यान करना, हम क्या बदला रहे हैं कि जीवन में सफलता केवल तप और प्रयास से मिलती है। केवल इच्छाएं रखने यानी इच्छा करने से, इच्छाएं रखने से कुछ नहीं मिलती, कुछ नहीं होता है मित्रों।

0: और जो त्याग करता है, जो गिर कर उठता है, जो अकेला लड़ता है, वही इतिहास रचता है। मित्रों, वही इतिहास रचता है। और माता पिता का संघर्ष, भाई बहनों ध्यान करना, हम आपसे क्या बतला रहे हैं। हम मनोरंजन के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम कुछ बतला रहे हैं कि आप इसे याद करें, अपने जीवन में उतारें, तभी आपका बाकी जीवन सफल हो पाएंगे, अन्यथा पता नहीं। मित्रों, तो माता पिता का संघर्ष और बलिदान हमें वह जीवन देता है जिसके लिए हम हर दिन सपने देखते हैं। अगर हम उनके त्याग, दोस्तों हम उनकी त्याग को भूल जाएं, तो जीवन की सारी ऊंचाइयां, जीवन की सारी ऊंचाइयां भी अर्थहीन हो जाती है। मतलब खीन बतीकने अब जीवन में नहीं रहते, कुछ भी नहीं, सब खलास हो जाए। मित्रों ध्यान करते रहना,
1: जब हमारे पास बुढ़ापा आने लगता है, तो इस भजन के माध्यम से हम आपको बतलाने जा रहा हूँ कि हमारे साथ क्या होने लगता है। जब ये सब आप महसूस करेंगे कि आपके साथ हो रहे हैं, तो समझ लेना कि बुढ़ापा

0: मेरे प्यारे साथियों, हर दर्द ध्यान करना, हर दर्द, हर आंसू, हर असफलता एक संदेश लेकर आती है कि तुम में अभी और शक्ति है। जब आप सोच रहे हो कि मैं बेकार हूं, शक्तिहीन हूं, एक मैं नीच, नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है मित्रों। अभी तक तुम में और शक्ति है, और जीवन का सत्य यही है कि सब कुछ एक न एक दिन छूट जाएगा, छूट जाएगा, सब कुछ एक न एक दिन छूट जाएगा। लेकिन जो सीख तुम संघर्षों से लोगे, जो सीख तुम मेहनत से लोगे मित्रों, वो तुम्हारे साथ हमेशा चलेगी, हमेशा चलेगी। आपके ज्ञान हमेशा चलेगी, ज्ञान कोई छीन नहीं पाएगा आपके मित्रों। और कुछ चीजों को समय पर छोड़ना सीखो, कुछ चीज को ना जिंदगी भर लेकर चलते रहो, चिंता करते रहो, बीमार हो जाओगे। छोड़ना सीखो हैं, क्योंकि हर कोई तुम्हारे जीवन का पात्र नहीं होता है, हर रिश्ता अमर नहीं होता है। कुछ बस अध्याय मित्रों, कुछ बस अध्याय होता है, थोड़े दिन के लिए जीवन में होते हैं, छुट्टा छुट्टी वगैरह वगैरह ये सब पता नहीं है, मगर कभी कर्म के अनुसार होता है ना। तो और कुछ केवल एक सबक है, जो कुछ मिले आपके जीवन में मेहनत से, या किसी ने आपको कुछ बुराई कर दिया, उससे जो सीख मिले है वो एक सबक है, वो एक लेस है मित्रों। डर उसे नहीं, डर नहीं होना चाहिए जो तुम्हारे सामने बहस करते हैं, ताकि ताकि करते हैं, डर उनसे जो चुपचाप चुपचाप तुम्हारे पतन की योजना बनाते हैं, उन लोगों से डरना चाहिए जो तुम्हारे लिए एगो फाल सेती करे है, वैसे लोग से डरना चाहिए मित्रों। और तुलना करना छोड़ दो, तुलना करना छोड़ दो, मतलब ओके ऐसे है तो हम के हो चाहिए, ओके मर्सिडीज भैंस हैं तो हम के मर्सिडीज भैंस चाहिए, ओके बीएमडब्ल्यू, ये सब बतिया छोड़, मेहनत करते रहो और जो मिले जीवन में उससे सुखी रहो, उसी में संतोष करना। तो तुलना करना छोड़ दो मित्रों, तुम जैसे हो अनोखे हो। यदि उड़ना चाहते हो भाई बहनों, उड़ना चाहते हो तो उन जंजीरों को तोड़ो जो तुम्हें बांधे हुए हैं, उसे तोड़ दो है? तब आप उड़ना सीखोगे, तब आप फ्री है ही पाओगे मित्रों।
1: पैसा कमाना ठीक है, मगर पैसों के बस में मत हो जाना।

मित्रों, जो बात हम आपसे बतला रहे हैं और बतलाते हैं, इसे वैसा ही हवा में उड़ा देना नहीं है। जीवन में उतारो, अपने माता पिता का आशीर्वाद ही। ध्यान करना इस पे हम क्या बोल रहे हैं। अगर माई बाप नहीं है तो फोटो है ना, खड़ा होके उससे हाथ जोड़ के प्रार्थना किया करो भी। तो अपने माता पिता का आशीर्वाद ही मित्रों जीवन की असली पूंजी है। जीवन की असली पूंजी है। माँ के चरणों में, ध्यान करना, यमुनी देंगे यम वफ आउदर सैन आउद सैनिक स्मरणी, उनका आशीर्वाद पावर उतने ही हैं। तो माँ के चरणों में वही शक्ति है, वही शक्ति है जो भगवान के मंदिरों में भी नहीं मिलती है। मित्रों, जो भगवान के मंदिरों में भी नहीं मिलती है। विश्वास करो तो गंगा मैया है और ना विश्वास करो तो गोत्रों के पानी है। मित्रों, खुश रहना, ध्यान करो, खुश रहना कोई भाग्य की बात नहीं है, यह एक कौशल है। यह कला उससे आती है जो जीवन की कठोरताओं को स्वीकार कर लेता है। कभी कभी मित्रों, कभी कभी सफाई देने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि सामने वाला सुनने की योग्यता ही नहीं है। तो जो कोई आपके बात ना सुने, समझाओ बतलाओ ना सुने, छोड़ दो, उनके ऊपर छोड़ दो, अपन कर्म जाने, वो देखे का करे सके है। मित्रों, इसलिए खुद को उस स्तर तक पहुंचाओ जहां तुम्हारे मौन उपस्थिति भी प्रभाव डाले। जहां तुम चुप रहो वहां भर लोग समझ जाए कि इकरे आगे ना बतियाई, तो कुछ ना बोलते, आंतु और ना ही देवत है। मित्रों, तो दोस्तों, हर कठिनाई केवल एक परीक्षा है, और उसे मुस्कुरा कर पार करता है वही असली विजेता होता है। जब तुम अपने डर का सामना कर लेते हो तब वही डर तुम्हारी ताकत बन जाता है। मित्रों, और ये ना सोचना कि हम डरपोक है या दूसर कोई सोचे कि तू डरपोक है, नहीं, सो हाथ है नीदमी बस्त में से। और जो हम बतला रहे हैं ना, ध्यान करके सुनते रहना, ध्यान करके सुनते रहना।

मित्रों, जो अंदर टूट कर भी, ध्यान करिए, जो अंदर टूट कर भी मुस्कुराता है वही सबसे मजबूत योद्धा है। हाँ, वही सबसे मजबूत योद्धा है, इंसान है। इसीलिए खुद को इतना सक्षम बना लो, इतना अडिग बना लो कि यह संसार तुम्हारे आत्मा बल के आगे झुक जाए, झुक जाए मित्रों, क्योंकि आप में वो शक्ति है। और जब मनुष्य अपने आप की पहचानने की भूल कर बैठता है भाई बहनों, तब वो अपने जीवन के मार्ग से भटक जाता है, हट जाता है और संसार की ठोकरें खाने लगता है, जैसे आपके साथ होवत है। हैं? नहीं, ऐसे नहीं होते आपके साथ, तो आप सही रास्ता पे हो, चलते रहे ना मित्रों। क्योंकि, ध्यान करिए, क्योंकि वो स्वयं के आत्मा बल को भूल कर दूसरों की सोच धारणाओं और बातों में इतना उलझ जाता है, इतना उलझ जाता है कि खुद की अहमियत को खो बैठता है। और जबकि वास्तविक शक्ति उसके अंदर ही होती है, तुम्हारे अंदर है। उसका मन ही उसका सबसे बड़ा साथी होता है मित्रों, आपके मन ही सबसे बड़ा साथी होता है और वही सबसे बड़ा शत्रु भी बन सकता है। शत्रु भी, तो दुश्मन बाहर ना खोजो, दुश्मन तुम्हारी कर्म से है, जैसा कर्म करियो वैसा ही मिले। प्रेम प्यार से रहिए तो प्रेम और प्यार मिलेंगे, और बिगी मांग खेलियो तो तुम्हारे सामने और बिगी मांग आ जाइए, तो टकराव हो ही, सुखी नहीं हो पाओगे मित्रों, सुखी नहीं हो पाओगे। इन सब बातों पे ध्यान रखते रहना मित्रों, हम सुमर बात नहीं बोलत हैं।

मित्रों, मैंने आपको भी बतलाया था कि मन ही आपका जो शत्रु है वही भी है। सबसे बड़ा शत्रु भी आपके मन ही है, मगर वो आपके हाथ में है। और यदि उसे मित्रों, यदि उसे दृढ़ न बनाया जाए मन को, तो यही मन तुम्हारे अपने ही खिलाफ खड़ा कर देगा। धन है पी मन तीख यौ व्यस्त में धन है पी अन प्रॉब्लम। इसीलिए सबसे पहले अपने चित्त को स्थिर करो, अपने खोपड़िया को ठीक करो, पहले अपने चित्त को स्थिर करो। मित्रों, दूसरों के कर्म और विचार क्या है ध्यान करना, दूसरों के कर्म और विचार क्या है इस पर समय व्यर्थ मत करो, क्योंकि उनके कर्म उनका अपरिणाम तय करेगा, उनका अपरिणाम तय करेगा मित्रों। लेकिन तुम्हारा रास्ता केवल तुम्हारे कर्मों से ही बनेगा। तुम खुद अपने भविष्य का रचयिता हो और ना कोई दूसर कोई। मित्रों, और यदि तुम अपना लक्ष्य निश्चित कर लो और फिर पूरी निष्ठा से इस ओर प्रयत्नशील रहो, तो कोई भी बाधा, कोई भी विफलता तुम्हें रोक नहीं सकती। विश्वास करो हम क्या बोल रहे हैं। मित्रों, ये सब बेकार की बात नहीं है, सोचनीय बात है।

मित्रों, आप देखिए कि कितनी उम्र के हैं आप, और फिर भी आप सोच रहे हैं सुधरने की बात कि हम अपने जीवन में और बेहतर करेंगे। और बेहतर क्या कर सकते हो, क्या करना चाहते हो आप? सिर्फ ज्ञान से ही जीवन को सुधार आ सकती है मित्रों। तो इसीलिए आपको हम इस रूप में इस तरीका से ज्ञान प्रदान करते हैं। इच्छा हो तो ले लेना, अगर ना इच्छा हो तो चलते रहना। जिस गाड़ी में आप चल रहे हो उससे चलते रहो, देखो कहाँ पहुँचते हैं। कितने लोग तो चले गए, कहाँ गए पता ना है, उसके बारे में क्या बोलते हैं आप? तो आपके बारे में क्या बोलना चाहते हैं लोग, ये आप तय करते हैं। हम यही कहते हैं, हे प्रभु आप मुझे मिलो या ना मिलो, ये तो आपकी इच्छा है भगवान, मगर मुझे उन लोगों से मिलवाते रहना जो आपको मिल चुके हैं या बिल्कुल आपके करीब है। मित्रों, धन्यवाद आपकी ध्यान के लिए, और आगे बढ़ते रहना।

ओम गणपते नमो नमः श्री श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति पप्पा मोरिया। ओम एक दंताय विद्महे।

शुभ सवेरा आप सभी को हार्दिक से बधाई है, हार्दिक से और हार्दिक से बधाई है। आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, जरूर से खुशहाल में होंगे। करो दिन की शुरुआत मधुर वाणी के साथ, उम्मीद से भरी एक नई सुबह, एक नई सुबह में आपका स्वागत है। जो कुछ है तेरे दिल में, जो कुछ भी है तेरे दिल में, सब उसको खबर है। ए बंदे तेरे हाल पर, ए बंदे तेरे हाल पर भगवान की नजर है। उसके होते हुए तुम क्यों परेशान है? भगवान के चरणों में तो हर समय का और हर समस्या का समाधान है।

हम सभी प्रभु के प्रिय है, इसे आप मानो या ना मानो, बल्कि ये बात सच है। आज आप जो भी कार्य, आप जो भी शुभ कार्य करने जा रहे हैं, आप सभी को इस कार्य में सफलता प्राप्त होवे। हम यहाँ से भी याद करते हैं जो दुखित परिवार है, यही विनती है, प्रार्थना है प्रभु परमात्मा से, जो दुख के घड़ी है वह अवश्य से दूर हो जावे। कहते हैं कि भगवान की अदालत में वकालत नहीं होती, भगवान की अदालत में वकालत नहीं होती, और यदि सजा हो जाए तो जमानत नहीं होती। भगवान हमसे जो भी लेते हैं ना, उसे हमेशा हमको दुगना वापस करता है। तो इसमें आप सोचो, क्या अच्छा करते हो तो आपको दुगना भी अच्छा मिलेगा, और बुराई भी करोगे तो दुगना भी मिलेगा। भगवान हमसे जो भी लेता है उसे हमेशा दुगना वापस करता है। विनती है प्रभु से, हे भगवान मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना, हे भगवान मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना, जो रिश्ता सही हो, जो रिश्ता सही हो उसी पर चलाए रखना। आप अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखना।

बात तो सही है, अभी जो मिला है पता नहीं कहाँ कैसे कब होगा। ये शरीर हमको मिलेगा या ना मिलेगा इससे तो आपको ना पता होगा, मेरे ख्याल से मुझे तो ना पता है। इसलिए जो भी करना है आज ही करो, अभी करो और अच्छा करो। कहते हैं कि कोई छुप कर पुण्य तो कोई पाप करता है, कोई छुप कर पुण्य तो कोई पाप करता है। हम इंसानों को ये चेतावनी है कि ऊपर हमारा भगवान बंद आंखों से हमें देख रहा है। आत्मा को निरंतर साफ करते रहो, आत्मा को निरंतर साफ करते रहो, परमात्मा को निरंतर याद, जी हाँ, याद करते रहो।

कीर्तन में प्रभु से नाता अवश्य ही जुड़ जाएगा। श्री गणेश जी की कृपा आशीर्वाद सदा ही बना रहे आपकी और आपकी परिवार पर। आपका दिन

इतनी सुंदर भजन कि चल मन चल बाबा के धाम, चल भोले की धाम। ईश्वर की उपस्थित हर जगह होती है, यानी कि कण कण में भगवान है, सिर्फ उसे देखने वाला उसे महसूस वाला होना चाहिए। कहते भी कि परवाह मत करो, परवाह ना करो, चाहे जमाना खिलाफ क्यों ना हो, बस उस रास्ते पर चलो जो साफ और अच्छा हो और सच्चा हो।

आपको, आपको आज, आज की तारीख, आज का दिन हार्दिक से शुभकामनाएं, हार्दिक से शुभकामनाएं पेश किया जाता है और आपको हार्दिक से शुभकामनाएं पेश किया जाता है और ये भी कहती हूँ कि आपका दिन मंगल

हमारे बड़े बुजुर्ग ये कहते कि भगवान के घर में धेरे अंधेर नहीं है, गीत में है भी और अवश्य इसमें सच ही होगा। शुभ दिन के हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। वो कागज की दौलत ही क्या जो पानी से गल जाए, वो कागज की दौलत ही क्या जो पानी से गल जाए और आग से जल जाए। दौलत तो दुआएं की होती है, ना पानी से गलती है ना आग से जलती है। आनंद लूट ले बंदे, आनंद लूट ले बंदे, प्रभु के बंदगी का न जाने कब छूट जाए साथ जिंदगी का। शुभ दिन का हार्दिक से शुभकामनाएं।

अति सुंदर अति सुंदर हमको यहाँ से श्रवण कर ली है और कहते हैं कि सुबह की रोशनी में छुपी है नई आस, सुबह की रोशनी में छुपी है नई आस, हार घिर कर भी कभी ना होना उदास, जिंदगी एक जिंदगी के हर एक मोड़ पे है एक नई बात। ये तो बात सच है कि जिंदगी के हर मोड़ पर है एक नई बात, उस पर जरूर से गौर करें और चलते हैं।

लता जी के आवाज में साथ दे रहे थे उदित नारायण जी, सुने हमने ओ पालनहारे। सुबह की ठंडी हवा कुछ कह जाती है, अवश्य सुबह की ठंडी हवा कुछ कह जाती है। हर पत्ता खामोशी से मुस्कुराता है। कुदरत के हर रंग में छुपी है बात कोई, जो सिर्फ खामोशी में ही समझाई जाती है। अवश्य जो सिर्फ खामोशी में ही समझाई जाती है।

किशोरदा जी के आवास में फिल्म का नाम है छोटी बहू और ये फिल्म पिक्चराइज किया गया है नेखंतीन एनन सेफंतख में। ओस की बूंदे फूलों को भिगा रही है, ओस के बूंदे फूलों को भिगा रही है, ठंडे लहरें एक ताजगी जगा रही है। एक प्यारी सी सुबह आपको जगा रही है, सुबह की प्यारी रौनक तो देखो,

नगरे नगरे द्वारे द्वारे ढूंढो रे सांवरिया। इसी धुन पर यहाँ हमने सुने कि रामा रामा रतते रतते बीती रे उमरिया। सूरज के बिना सुबह नहीं होती, सूरज के बिना सुबह नहीं होती, चांद के बिना रात नहीं होती, बादल के बिना बरसात नहीं होती, और आपके याद के बिना दिन की शुरुआत नहीं होती। आप सभी को एक शुभ प्रभात। कि फूलों की तरह महकते रहो, फूलों की तरह महकते रहो और सूरज की तरह चमकते रहो। आपके लिए पेश किया जाता है आपका फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से ये सुंदर सा प्यार भरा भजन और गीत आपके लिए।

5 in 1 यानी कि 5 मंत्र एक साथ यहाँ से हमने श्रवण की है और वो मंत्र हमने सुने हैं जिसमें हम श्रवण की है गणेश जी के, लक्ष्मण लक्ष्मी जी के, हनुमान जी की गायत्री मंत्र और शिव जी की मंत्र, साथ में हम तीनों 5 मंत्र एक साथ में श्रवण कर ली है। सुबह सुबह सुबह सुबह सूरज का साथ हो, सुबह सुबह सूरज का साथ हो, गुनगुनाते पक्षियों की आवाज हो, हाथ में कॉफी और यादों में कोई खास हो, उस सुबह की पहली याद आप हो। सुबह सुबह सूरज की साथ हो, कितने आनंद मिलते हैं ना।

उठकर देखो सुबह की नजारा है मेरे दोस्त, उठकर देखो आंखों खोल कर देखो इस सुबह का नजारा, हवा है ठंडी मौसम ही प्यारा।

मन ही मंदिर और मन ही पूजा है। आपने सुने, हमने भी सुने, और इससे हम जरूर से कुछ फायदा उठाएंगे।

जो सोता है वो खोता है, और कहते हैं जो जागता है वही पाता है। सुबह सुबह जिंदगी की शुरुआत होती है, किसी अपने के साथ हो तो बहुत खास होती है। बादलों से सूरज निकल आई है, आसमान से नया रंग, आसमान पे नया रंग छाया है। बांसुरी बनाई के सांवरिया

बांसुरी बनाई के जरूर से बांसुरी बनाई के। लता जी के आवाज में हमने श्रवण कर ली है।

अखिया मिला के और अखिया बहुत सुंदर गीत। यादे यादे यादे ताज़ा करा देते हैं ये गीत, और ये गीत आपके लिए पेश हो रहा है। नदिया के पार से निकाल दिया गया है, और नदिया के पार या पुराना नदिया के पार है फिल्म पुराना नदिया के पार से, और ये फिल्म पिक्चराइज किया गया है नेकंतीन अख्तन फिर तक में। अब बताना है कि उन समय के अभी व्यक्ति है निवासियों है कि नहीं, फिर भी जो इन दोनों में उन दिनों में ये गाना सुनकर और बड़े हुए हैं उनका याद जो है ताज़ा हो जाता है। वक्त हमेशा आगे बढ़ता है, ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानती हूँ कि वक्त हमेशा आगे बढ़ते हैं, रुकने का नाम इसमें नहीं है। रुके तो बस खराब और अधूरे रह जाते हैं। तो अखियां मिला के उसके बाद है मोरे राजा हो, मेरे ख्याल से इसका बोल है मोरे राजा हो ले चल मुझे नदिया के पार।

हाँ, वक्त हर रिश्ते की सच्चाई दिखा देते हैं मेरे दोस्त। कौन अपना है और कौन पराया है वो भी बता देते हैं, और वो क्या है? वक्त। इस बारे दिल लेके भागा, दगा दे के भागा।

0: दिल लेके भागा, दगा दे के भागा, ऐसे बेदर्दी ने कैसे और फरमा दिया है। मेरे प्यारे सुनने वालों, हर वक्त हर पल आपको शुभकामनाएं पेश किया जाता है आप ही का फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। मुश्किल दौर के यही एक सच्चाई होती है मेरे दोस्त, और वो क्या होता है हम आपसे ये बता दें कि मुश्किल दौर की यही एक सच्चाई होती है, बेकार लोग खुद ब खुद जिंदगी से दूर हो जाते हैं।
1: तुम इसको खेल

इन एवरग्रीन सॉन्ग्स पेश हो रहा है हमसे मोहब्बत, हमसे होती मोहब्बत तुमको प्यार ज़रूर से, आप ज़रूर से प्यार सीख जाते। वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, आपने ठीक सुना कि वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, पर ये ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती मेरे दोस्त वक्त बदलने के लिए।

फिल्म अनारी से ये सुंदर सा गीत आपके लिए। और ये फिल्म, इस फिल्म में स्टार कास्ट थे राज कपूर, नूतन जी और मोतीलाल। हाँ, गीत को गाई है लता जी और शुरुआत में आप सुने मुकेश जी की आवाज़। यहाँ से लेकर चलते हैं उससे पहले ये बताना चाहती हूँ कि मन में हमेशा जीत की आशा होती है। हाँ, मन में हमेशा जीत की आशा होनी चाहिए, होती है और होनी चाहिए, क्योंकि नसीब बदले या ना बदले, वक्त, हाँ, फिर वही वक्त जो है वो अक्सर बदलता है।

मुकेश साहब जी की आवाज में एक वो भी दिवाली फिल्म नजराना से आपके लिए निकाल दिया गया। इसमें राज कपूर और विजयंती माला स्टार कास्ट हैं। दुख की बात ये है मेरे दोस्त कि दुख की बात ये है कि हम ये सोचते हैं कि बहुत वक्त है। दुख की बात यह है कि वक्त बहुत कम है। खुशी की बात यह है कि अभी वक्त है।

0: एक परदेसी, परदेसी तो आ गया है, पंडित जी की हार्दिक से स्वागत है आज यहाँ के प्रोग्राम में। और स्वीकार कीजिए हमारे सभी का, हम सभी का प्यार भरी नमस्कार। पंडित जी आप आकाश में हैं, आपको हार्दिक से स्वागत है।
1: धन्यवाद, नमस्कार जी।
0: नमस्कार नमस्कार।

ब्रह्मा नारायण परम तपाम नारायण तपो देवाम हरि ओम नीलम भुज श्यामल कोमलंगम सीता समारूपित्वाम भागम पाणु महासायक चारुशापम नमामि राम रघुवंश नाथम। हरि ओम नमः संभवाय च मयूभवाय च नमः शंकराय च मत्स्यासुराय च मोक्षुक्षरूप विश्वरूप को नमस्कार। संसार सुख देने वाले प्रभु को नमस्कार। आनंद देने वाले प्रभु को नमस्कार। मंगलमय ईश्वर को नमस्कार। और अत्यंत स्वरूप और कल्याणकारक ईश्वर को हमारा बारंबार नमस्कार हो। सर्वप्रथम आकाशवाणी के सुनने वाले जहाँ तक हमारा आज पहुँचे आप सभी को जाकर यथाविधि मेरा प्रणाम नमस्कार या राम राम सीताराम पहुँचे। खास करके राजीव फान के जो मालिक हैं मैं उनके भूरी विधानवाद दे रहा हूँ जिस समय प्रदान किया धर्म प्रचार करने के लिए। हम आप अभी कितना ले रहे थे जहाँ प्रसन्नता जी ने राजीव फान को माध्यम से हम आप कितने अच्छे ढंग सेवा कर

नहीं है। तो आकाशवाणी के सुनने वाले, इस समय हमारी सनातन धर्म अंतर्गत पितृपक्ष चल रहा है। पितृपक्ष चल, उसके बारे में कुछ विचार किया जाए। पितृपिंड श्राद्ध, इसका अर्थ क्या होते हैं कि पितृलोक के गए हुए जीव श्राद्ध अन्न को खाते, इसलिए पितृलोक गत मृत्यु पितृ के लिए श्राद्ध करना चाहिए। मृत्यु पितृ कर्म अनुसार चाहे देव योनि को प्राप्त हुए हो, चाहे नर के शरीर में हो, अथवा पशु पक्षी कीट पतंग आदि किसी भी योनि में क्यों ना हो, श्राद्ध प्रत्येक योनि में उनके प्राप्त होते हैं। लोग हमेशा प्रश्न करते, पंडित जी अगर मोक्ष प्राप्त हो गए तो हम पितृ यानि श्राद्ध करते हो प्राप्त होते कि ना? हमारे ग्रंथ द्वारा अब जाके प्राप्त होते हैं, इस पर विचार किया जाए आकाशवाणी के सुना लो। दूसरा अर्थ होते हैं पिंड पितृ यज्ञ श्राद्ध का अर्थ होते हैं जीवित माता पिता आदि आदरणीय, जीवित माता पिता आदि उसको हमें आदर करना चाहिए, बड़े की सेवा करना, और मृत्यु पश्चात उनके निमित्त विधि पूर्वक पिंडदान तर्पण हवन और गरीबों को भोजन करना, ये प्रत्येक सुयोग पुत्र का धर्म है। श्राद्ध का दूसरा नाम पिंड पितृयज्ञ भी है। श्राद्ध मर्यादा अनादि काल से चले आए हैं, पर छूटे पंडित जी कब से क्रिया चल रहा है हमारे शास्त्र द्वारा, आदि मर्यादा अनादि काल से चले आए हैं। वेदों सभी शास्त्र में मृत्यु श्राद्ध का विस्तार विधान मिलता है। चूरू वाल्मीकि रामायण में लिखा है राजा दशरथ ने मरते समय ने यदि कहा, राजा दशरथ क्या कहा था, यदि भारत की सम्मति में राम का वन जाना उचित हो तो भारत कदाचित भी मेरा श्राद्ध तर्पण न करे। आगे इसी कांड में लिखा है भरत द्वारा राजा दशरथ का श्राद्ध किया गया ना, और रामचंद्र जी द्वारा श्राद्ध तर्पण पिंडदान के आदि करना लिखा है। इसी प्रकार आरण कांड में जटाओं के तर्पण कौन किया, जिस समय गाथा आप सुन चुके होंगे आकाशवाणी के सुनने वाले, आरण कांड में गाथा आता है जिस समय प्रभु राम लक्ष्मण सीता माँ के ढूंढते हैं, वृक्ष से पेड़ से पत्ते से पूछते हैं कौन प्रभु राम, तो घट घट में शमाल सब कुछ जाने वाले हैं, लेकिन प्रभु राम पेड़ से पूछे विराज हमारे सीते के देखे हैं, तो आगे जो जाते हैं तो वहां किसके दर्शन करते हैं, वहां पर देखो जटाओ का पंख कटा हुआ वहां पर गिरा हुआ है। जटाओ प्रभु राम से कहते, प्रभु देखो ये दशा रावण ने मेरे पंख काट दिया है। तो वहां पर जा करके और जटाओ ने प्रभु राम से कहा कि देखो रावण ने दक्षिण की ओर जैद कां जिसे हम कहते हैं दक्षिण को सीता को लेके गए हैं। तो प्रभु राम ने जटाओ जो सबसे चिड़िया में जो सबसे गिरा हुआ चिड़िया है उसको उठा करके प्रभु राम अपने गोद में रख कर करके उनके धूल जिसे बोलते हैं ना, उसके धूल जो है उसको साफ सुथरा कर करके प्रभु राम कहे हैं जटाऊ से, आप जा करके हजार वर्ष राज्य करो। तो जटाऊ कहते प्रभु हमारा सात पीढ़ी प्रभु मोक्ष यानी मोक्ष प्राप्त हो गए हैं, क्यों कि आपके आशीर्वाद मेरे को मिला है। ऋषि मुनि आपके भजन कीर्तन करते हैं, इतने नजदीक नहीं आते हैं, और चिड़िया में मैं सबसे गिरा हुआ चिड़िया, प्रभु आप मेरे को अपने गोद में ले, प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए। तो प्रभु जा करके जटाओं ने अपने शरीर वहां पर शरीर को त्यागते, उसके पश्चात प्रभु राम ने, ये गाथा आरण कांड में है, प्रभु राम जाकर के जटाओ को वहां पर पिंडदान किया, तर्पण किया है। और सुग्रीव द्वारा आप जानते हैं, सुग्रीव द्वारा

द्वारा मृत्यु बाल के तर्पण अपने भ्राता के तर्पण किया, यानी तर्पण पिंडदान किया कौन? सुग्रीव। और जा करके भभीषण द्वारा रावण को तर्पण लिखा है। जा करके ये घटना आज से 9 लाख वर्ष पुरानी है। फिर से बात दोहरा रहा आकाशवाणी के सुनने वाले, हम आप जो क्रिया करते हैं ये घटना आज से 9 लाख वर्ष पुरानी है। महाभारत में अनेकों प्रमाण हम दिखाते हैं। महाभारत में आदि पूर्व माँ कुंती और भीष्म जी द्वारा मृत्युपिंड राजा निमित्त हजारों गरीबों को भोजन कराए गए हैं। और जा करके ही बात श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय में भी लिखा, श्लोक में लिखा है। जा करके वहां पर क्या लिखा है कि अर्थात जिन पितर को तर्पण पिंडदान आदि श्राद्ध क्रिया लुप्त हो जाते हैं, वे पितर गिर जाते हैं, दुर्गति को प्राप्त होते हैं, ऐसे लिखा है। तो आकाशवाणी के सुनने वाले, जो क्रिया हम करते सनातन धर्म के अंतर्गत सब जाकर अनेक प्रमाण है। दुनिया के अन्य मतमतांतर भी किसी न किसी रूप में मृत्यु श्राद्ध के करते हैं। यहाँ पर देखो ईसाई लोग, अब जो ईसाई जात है ना, अपने मुर्दे की सदगति के लिए कबर पर काश पत्थर का लिखा है ना, कबर पर काश पत्थर का स्वभाव खड़ा करते हैं। और जा करके अनेकों मजहब जो अनेकों धर्म जो हैं इस रात के क्रिया करते हैं। आकाशवाणी के सुनने मैंने आपके भी दिखाए हैं, और हमारा धर्म भी ना हमें जानना चाहिए। सब मिट गए जहां से, हमको मिटाने वाले कुछ राज हैं जो हस से मिटे नहीं हमारे। कहने के तात आकाशवाणी के सुनने वाले, हमारा सनातन धर्म हम लोग देवी देवता को पूजा करते श्राद्ध क्रिया करते हैं। आज सर्वश में जहां भी जाओ हमारा सनातन धर्म के झंडा फहरा रहा, हमारे सनातन धर्म के ध्वजा वहां पर जहां पर दिखो जा करके। क्यों? हमारे सनातन धर्म जो हम लोग देवी देवता को पूजते हैं, और हम कभी नहीं बोलते हैं कि जब जैसे आप हमारे धर्म में आओ, हम आप जानते जहां भी जाओ सारे विश्व में हमारे हिंदू धर्म है। आकाशवाणी के सुनल मैंने संक्षेप छोटे रूप में आपके दिखाए हैं कि जाकर के श्राद्ध क्रिया जो चल रहा इस समय तो हमारे अनेकों गरण में है। यहाँ तक करण के आप जानते हैं, महाभारत करण, उसको जो शरीर का जो मृत्यु हुआ, इंद्रलोक गए तो वहां पर भोजन क्या मिलता है? स्वर्ण, सोने के भोजन। तो वहां पर करण देखते हैं मेरे क्यों अन्य नहीं मिलते भोजन, तो वहां पर कहा गया कि देखो आप तो सदैव हमेशा स्वर्ण दान किए थे, उसी कारण आपके स्वर्ण मिलते, आप अन्न कभी अर्पण नहीं किया। तो आकाशवाणी के सुनने वाले, करण फिर आकर के मृत्यु लोग में पितर के श्राद्ध करते हैं, भोजन अर्पण करते हैं, उसके पश्चात वो भी जाकर के अन्न के भोजन प्राप्त करते हैं। तो आकाशवाणी के सुन मैंने आपके सिर्फ संकेत ही किए हैं कि हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत इस समय जो पितृ लोग यानी जिसके हम बोलते हैं पितृ पक्ष जो है ना, तो इसमें हम जो हमारे बंधु बांधव ने उसके नाम से हम जा करके जल, उसमें जल धर दे, और जल में काला तिल है, गंगा जल है, और सफेद फूल धनिया जाए, सरल रूप में पितृ को ध्यान करके उसके अर्पण करें, तो हमें बहुत उसमें जा करके हमारे बंधु बांधव हमारे पितृ जो है जाकर उनके आशीर्वाद से जो हमारे आपको ऊपर लगेगा। तो लोग हमेशा प्रश्न करते पंडित जी वो तो दूसरा यूनि में चल गए, प्राप्त कैसे होगा? तो जैसे हम आप कोई के नाम से सुरनाम में कुछ ना कुछ जा करके दर्भ अर्पण यानी दर्भ यानी टूटी भाषा कहूं
कुछ पैसा जाकर वो फरमा करते हैं ना, उनके नाम से अवश्य प्राप्त करते। इसी प्रकार हमारे पितृ जो है इस समय हमारे पास नहीं, हमारे पितृ जो गुजर गए हैं, जो कुछ हम उनके नाम से जो हम श्राद्ध करते जल्द अवश्य जाके प्राप्त करते हैं। तो आकाशवाणी के सुनने वाले युवाने द्वारा अपना पर्सनल विराम करने जा रहा हूँ, फिर से मैं बात दोहरा रहा हूँ, आज फिर बार बार हमेशा बात मैं दोहरा रहा हूँ, कौन बचा है कौन बचेगा, वो किसका माल खा जाना दुनिया थी, दुनिया रहकर पंछूट जाना है। आकाशवाणी के सुनने वाले पंछी कब उड़ेगा हमें आपको बात ये पता नहीं है। हरि ओम, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भर। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम।

0: जाले।
1: यहाँ से हम सब मिलकर श्रवण की है श्री पंडित राजकुमार महात्म जी के मुखारबिंद से सुंदर सा कथा, और ये बताए कि पितर पक्ष इस वक्त चल रहा है और आप जाकर भी अपने पितरों के कैसे श्राद्ध कर सकते हैं। आप पितर के श्राद्ध करेंगे तो आपके घर में भी खुशहाली भी प्राप्त होगे, आपको भी खुशहाल प्राप्त होंगे, जो बाधा है वो भी कट जाएगी। तो जरूर से वक्त निकाल कर और पितर को अपने जो है उनका श्राद्ध करना। पंडित जी को हार्दिक से धन्यवाद किया जाता है और कहती हूँ कि आपको भी एक शुभ दिन होवे। पितर पक्ष के बाद आ जाएगा नवरात्रम। हाँ, एक परदेसी मेरा दिल ले गया और जाते जाते मीठा मीठा और गम दे गया। आज 30 तारीख सितंबर है, नौवा महीना, इस महीना का आखिरी दिन। कल 1 तारीख अक्टूबर हो जाएगा सितंबर, देर तक सितंबर। फंदाग स्लुइटन वाज सितंबर ऑफ अ मंथ फॉल kleine en grote momenten van genieten, loslaten, leren en weer verder gaan. Het is net als vallen, opstaan en doorgaan. Neem vandaag even de tijd om stil te staan bij wat goed was. Dankbaar te zijn voor wat je hebt en met vertrouwen uit te kijken naar wat komen gaat. Maar het belangrijkste is dat u dan vandaag in het nu gaat leven. Dag van vandaag een mooie herinnering van kan maken. Mooie invulling kan geven. Dat het vandaag 30 september ook een mooie, een gezellige, een liefdevolle memory kan worden.

जी मेरे दोस्तों, कि मेरे पीछे एक दीवाना, मेरे आगे एक दीवानी। और ये फिल्म निकाल दिएगा, फिल्म नजराना से आपके लिए पेश किया गया है मुकेश जी और आशा भोसले जी की आवाज में। राज कपूर, विजयंती माला, उषा किरण, आगा, सबिता, सबिता चटर्जी इस फिल्म में अपना कला प्रदर्शन की है।

अल्टीमेट हिंदी रेगी हिट्स आपके लिए पेश हो रहा है आपका फाहन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। ये ग्रेंस आनगेवन इज नीट सो मोइलक द रिएक्शन फॉर द अंडर स्पॉनेंट फिंडन दैट

और तस्वीर से भी और निकर के सामने आ, और कौन आएंगे, महबूबा ही आएंगे हमारे यारो। तो प्यार भरी सॉन्ग है, क्या दिल ने कहा है।

दिल ने कहा आओ क्या मैंने सुना लवली सॉन्ग हम आप लोग को आज सुनाएंगे दोस्तों तेरे नाम लिया और क्या किया क्या किया तेरा नाम लिया और क्या किया सुना जाए।

तो पूछना तो पड़ेगा कि तुम इतने दिन कहाँ थे, कितने दिन कहाँ थे। तो वो कहेंगे कि इतने दिन जहाँ भी थे लेकिन तुझे याद तो हमने किया है। तो अगला प्यार भरी गीत कौन है, क्या है? तो ये कहते हैं कि जब आप कहीं हो और उसको कुछ दिन नहीं देखा है तो लगता है कि तुझे हमने कहीं देखा है, लेकिन कहाँ देखा है पता नहीं चलता है। तो अजनबी आपको बताएंगे कि कहाँ तुझे देखा है।

अजनबी, अगर ये अजनबी आप हो तो आपको बताना पड़ेगा कि तुम कौन हो। अजनबी को बताना पड़ेगा कि तुम कौन हो। तो अगला गीत की ओर हम बढ़ते हैं। आप सभी को यानी कि शादीशुदा लोग के बारे में आपको हम इस गीत को सुनाते हैं। मौफी का नाम है सौतन नहीं खतीन द्रियन तख्त का ये फिल्म है दोस्तों। और ये मौफी है, इसमें एक सुपर हिट सॉन्ग इसमें गाया है कि जोर दादा ने, आओ सुना जाए। पहले भैया सूरीनाम में लोग जानते थे तो लड़की देखने को तो आते थे कोला, और इस गीत में क्या आते हैं, आओ सुना जाए।

और राजेश खन्ना थीना मुनीम का ये सॉन्ग है, मोफी के नाम है सौतन दोस्तों, सौतिनिया सौतन मोफी के नाम है। इसके बाद हम और आगे को चलते हैं, रोमांटिक सॉन्ग, एक और रोमांटिक सॉन्ग हो जाए आज अलका का, अलका याग्निक और द टाइगर ऑफ इंडिया कुमार कुमार शानू की ओर हम चलते हैं। कौन सा सॉन्ग है दोस्तों, कौन सा सॉन्ग है, नवीन सरवन का म्यूजिक है।

आशियाना, और उसके बाद हम चलते हैं। कभी कभी लोग को पूछना पड़ता है और कहते हैं एक बैन खेन अख्तिनवेर, लोग बोलते हैं एक बैन खेन अख्तिनवेर, और एकवा बोले है एक वर्थ अख्तिन। तो ये गीत 18 बरिस से के उम्र का गीत है दोस्तों, एक सुपरहिट सुपरहिट फिल्म सुहाग का है, जो नई खती हों नई हनन जीवन तख में, और ये मूवी हलचल मचाए थे।

के उम्र हो गया है तो कोई जतन करना चाहिए, और जतन के बाद हम चलते हैं, क्या आपकी जो आंखें है वो भी काली है, काली है या गोरी है या ब्लू है या लाल है, ये सवाल हम नहीं करता है, करते हैं लवाजी कर करते हैं।

न जाने ऊंच नीच कला न जाने जात सरस्वती माता दीजिए हमको अपनी आशीर्वाद। एक बार फिर कहते हैं तमाम रेडियो फोन के सुनने वालों को हमारा राम राम नमस्कार प्यार भरी राम सत श्री अकाल।

जॉनी नंबर वन है हमारा नाम। आज का देश विदेश के समाचार को हम सुनाना है, हमारा काम यही है, हमारे मोहब्बत भरी प्यार की पैगाम। तो दोस्तों एक ही दम हम बढ़ते हैं, जाते हैं अपना जूरी नाम की ओर, अपना मातृभूमि यहाँ पे हमारा जन्म हुआ है और बहुतों के जन्म हुआ है। तो हम जाते भैया बोले फीसम फ्राई रेजन, तो बोलिए जॉनी कितना देश सरनाम मांगत रहा हॉलांत में, और फीसम फ्राई रईस हुए के बारे में चिजुआ लिख हुई गए कि नालुक भैले ना ना ना चिजुआ नालुक भैले फीस रईस के बारे में है। ये है गाना भैया, गाना जहां से सुरीनाम के कफरी आए हैं, तू जाने है स्लाफर ने एक तेज पे मिस्ट क्वाम फन गाना, तो वहां के सुरीनाम एंड गाना के फीसम फ्रई हुआ रईस हो सके हैं। तो गाना के प्रेसिडेंट जॉन द्रामानी महामा आयल है अंतमुद करी से, और प्रेसिडेंट जेनिफर खेरलेन सिमोन से, और बोले हैगा अपने बलांगस्टेले जोन गतोंद आन दे फीसम फ्रीस्टेलिंग फॉर होल्डर्स फान गोने पासपोर्टन, अन डेफिनेटिवे ओवरइनकम्स दारओवर इज नोग नीट गेमेल्ड। तो ये बात हुई भैया, गस्प्रेक फॉन प्लांट न्यूयॉर्क में भइल है, 81 अलगमेने वर्गादरिंग जो रहा अमेरिका में फ्रीनेड स्टार्ट न्यूयॉर्क में। तो हुआ पे बोले कम्युनिकेशन दिस बोली से जेनिफर सिमोन से, और गाना के बड़कुआ से कि उसे बोलेगा फीसम फ्राई रईस हो सके टूरिस्ट एंड कल्चरल कॉन्टैक्टन गमकलक माकन सुरीनाम फ्रोक दानास आंदा फॉर बेटर लुक फॉरबिंडिंग एंड विल verdere uitvoering geven aan de luchtvaartovereenkomst die beide landen al hebben ondertekend. तो भैया गाना के बाद चिथियाँ हुए हैं, बोले जो खुद सेक्टर जन है बोले इस इन बिल अस्तरेन फन सामन वर्किंग गाना बस के एक उम फन खरे के खुद इंडस्ट्री एंड बेदर रखेरिंग इन विल द मोगल फॉर

पीके ही बोले है मेरहिबा जोन एनडीपी के है बोले एनडीपी के लित मत स्कापू बोले धरती से बोले काहे के पीके ही बोले मेर फर्ट्रैक मेरहिबा इस एनडीपी अन हेल ग्रोथ स्पिट्स क्वेट हमने यानी भैया कितना बड़का स्पेस रहा रोमानो मेरहिबा भैया कहीं नहीं जहल काट चुका ले बाप को छोड़वा दे रहा असी बनानो दाऊद पीके फिट यामर की उ निकल गए है बोले आउट एनडीपी न्यू ब्राफो टेस्ट इज द पार्स पार्टी हियर मी अन हेल ग्रोथ स्पेस क्वेट खराब बोले से Ze zijn een hele grote spits kwijtgeraakt. Als ik de NDP was, dan zou ik naar een manier zoeken om dit recht te trekken. Men onderschat dat Merhiba het levende bewijs is van de resocialistische statie. We kennen zijn geschiedenis en we zien ook welke kant hij opgaat. En als iemand zo een stap maakt, dan nou een tof stap. Je mik drape, zei P.K. Ja. तो ये बात है उकर बाप के कई रही जहल में से छोड़वा दे रहा दिस इज है अन स्पेस ऑफ व्हाट इज है एक्चुअली द एनडीपी कोऑर्डिनेटर जो रापोंड बेक के पीके स्टेल दैट है इन द सेल्फ रिसोर्ट ऑफ पॉलिटिक वर्क फॉर हिट अबोव हीफ गदान एंड सेल्फ ओ गेन हीफ gezien heeft hoe hard Merhiba heeft gewerkt in veel gevallen willen de mensen in de buurt alleen met Merhiba praten Ja, betaalde commissaris RVS K. Psychiatrische Centrum Suriname. Hij werd hiervoor voorgedragen door de vakbond. Piqué stelt dat wanneer een pleegzoon van Bouterse de partij verlaat waar hij is opgegroeid en wel geconcludeerd dat worden dat is niet klopt bij de NDP. Dus de ego Piqué niet kregen gaat hier pe erjane Merhiba. तो पीके ये करवाने में बड़ी लंबा चौड़ा बोले भैया बोले वो स्पेच नहीं कर गए एनडीपी के देखो भैया लानफा लुविस होफ में दगा वल भैल है नानी हाँ 58 यार रख एकना रेस जो नहींगा लख इन अख्तरकामन तो स्लापन सूतल लहा अपन कमरा में मीठा मीठा सपना देखा था नानी और उतरे में भैया दगा वल भैल हुआ पे बताए गए है सूतले में फरकला नीच फंदस को उतर तक है बन खोर बोले हम तो कुछ ना सुन ली बाटी लेकिन सिपाही के मेल्डिंग गई है बोले दबावा कर फरकलार द कि साढ़े चार बजे और रोंग ओवर है एरफ मार्क्ट बोले एगो घूमत रहा तरवेल है से अख्त द वोरिंग बफोन होर दे है अन द फोर से द मेर्दर स्कूटन बोले लिप ऑन मेडलक नार फोर एंड सक अप इन का अफतन एगो प्रोफेसर जा है दागो के और बोले दबावा कर ओवरहैंडिंग द पुलिसी एंड सक मेड फियर हिल van 9 mm die hij op straat had gevonden. Een minder gezwaai, ik er waren mee onderzoek kreeg hij, hamarie janta. तो ये सब बात है अब देखो भैया एगो एक्स मिलिटेर है सुरीनाम में 65 यार के पेंशनर्ड हैगा ओके पकड़ी से भैया अपन क्लाइन डॉक्टर के 15 बरिस के मिस ब्रेक करी से नानी 21 सितंबर के गो एक्स मिलिटेर है एर ये बोले लंग ड्यूरक सेक्सुअल मिस ब्रेक करी से पर 15 यार के क्लाइन डॉक्टर के और बतावे हैगा लड़कियां जो है 15 बरिस के ओके सब दतरा गए onderzoek करी से और बोले हैगा फोर खलाइड सिपाही में गए ले और ओएम एक पकड़ के सुरजतिया के बन करी से और बताए गए 15 वर्ष के लड़की के बोले एंकल वीकन खलीडन ऑन पोकिंग तो सेल्फ डूडिंग अंडर नाम दूर Tijdig ingrijpen kon erger worden. Chaudia Mangatra zelf moord zelf kreeg. Maar ze hebben ingrijp kreeg ze. En betekent ook een geile ziek een huis mee op de vatsiepe. और बताई गई नौसाकलंग में जिसे मस्कापलक बखलाइडिंग उपाय से ग्रोथफादर एर ये वोंड ना दात हर मुदर ओनकफे एन यार खलीदन वास ओवरलीदन लड़किया के मैवा मर गया रहा ग्रोथफादर हुआ रहत रहा फोराफ खान अंडर सेल्फ डोडिंग पोकिंग हाद द स्लाग तो फर हान सिचुआसी तू फर्ट्रोट आन बकेंद फान हर ओवरलीदन मुदर नार आनलेडिंग फान द सेल्फ द वेर द पुलिसी इन कस्काकल त मैवा के कोनो फ्रिंदेर रहा या कोई रहा ओके बताई से बिटी हुआ लड़कुआ 15 बरिस के की ओकर अने यानी कि ओपा ओके मिस ब्रेक कर उहिक मारे उमांगे सेल्फ मोर्ट करे भैया देखो 1 मिलियन के बांध चिटियां हुए हैं
1 मिलियन के सोना के गहना के वार्दे भाई घर में से चोरी भइल है सुरीनाम देश में हमारे प्यारे प्यारे जनता। और बात है दाखरात वेख में, दाखरात में रात के बोले अनखरूत हुफेल है सिरादन बैठ खमाक लिफोर्दो के सिपाही एक बारे में गईल है एगो त्वेयन फैफ तक यारख आन खत्रोफन से फरक्लार दर्स रोन दर्तीन वास खान स्लापन de plaats werd ter plaatse werd de RG 52-jarige aangetroffen. Ook jaren bij Raadke Bolo Jatra Soete. Doei bij Raadke werd haar echtgenoot erbij wakker om naar het toilet Jatra gaan. Of op een medicijn Jatra, de waai Jatra pie koekroe mee geil he. Ook deke koekroe mee woonkamer mee bolle sub overhoop heil he. Bolle de bak de controle ontdekte de vrouw dat een hoeveelheid sieraden die ze in de plastic bak had bewaard. En in de keukenkast had verstopt verdwenen was. De totale economische waarde van de buit was geschat op 1 miljoen Surinaamse dollar. Bij onderzoek bleek dat een keukenraam was geforceerd. De indringer hebben zich via deze opening toegang tot de woning verschaft. Het pand is niet voorzien van die vereisten, maar beschikt wel van een camerasysteem. De politie van Livorno heeft de zaak in de handen, mensen. De abdeko camera beeld per ke ail he ke na ail he nani. Abdeko go sora briske. Sora briske. Jarige aangehouden voor zeden delict. Met bedleggerige vrouw. Ego ouder bija bemara bedi meraha. Na chalol pamatra 60 jaar kego ouder bija reisdijk mee. बताए गए हैगा कि सिपाही पकड़ी से 26 सितंबर के 16 बरिस के को लौंडा के मेंदर यार रखे और इस सीदन दिलक कर ले रहा रेस डाइक में एगो सस्तक यार रख एगो औरत जोन बेट लिख रख रहा उन चलोल पावत रहा बेनी में लेटर ला द बमोनर फन पान बत्राप्त न फरदाख्त बै तैस आकोम की स्लाप कामर में ओकर हिलप बहुफन मुदर के ओकर माई के द योंगन बफोन से को moment gedeeltelijk ontkleed op het tafel. Toen de dochter alarm sloeg en hulp riep, sloeg de verdachte direct op de vlucht. De kapraapraau taarke londwa camera mee raam. Op het eigen onmiddellijk sipahi geloke pakrise lokaliseer karise aanhouding van de 16-jarige verdachte op een adres in nabije omgeving. तो भैया ये हु सब चीज होवे है बेमरिया औरत है और चल ना पावे है और जाए के सोरा बरिस के लुंडा उकर संगे सीदन देलक करे भैया कितना पाप दुनिया में हुई गे बिचारी चल ना पावे अब देखो उकर संगे का हुए है। अब देखो भैया एक औरत यहाँ देखो तू ही लड़का के छाता ले के डाम पे बा कफन्नी के है फ्राउ ना आन कोम से नीदरलैंड डकलोस एक है पालस इन सुरीनाम अख्तर खलाते सब कुछ छोड़ के औरतिया आए नीदरलैंड में और यहाँ डकलोस हुई गए है औरतिया भैया एक और सरनाम के औरत हैगा die ongeveer 2 maanden geleden met haar 7-jarige kind naar Nederland vertrok, is daar dakloos geraakt nadat haar relatie kort na aankomst eindigde. De vrouw die anoniem wil blijven om haar privé en die van haar families te beschermen, wilde dat ze in Suriname haar woning en werk achterliet voor de toekomst in Nederland. Te hier, Ayla, bija, doei, larka, leek ik ook ouderd heen gaan. Ouro, bole heen gaan. एगो रिलेशन रहा ओके कोर्ट ने लसिया जो दोन में तो के निकाल दी से घर में से कई औरतिया नाम पे औरतिया बोले अपन काम धंधा घर द्वार सब छोड़ के नीदरलैंड एली के हमारे को तुकोम्स बन जाए हिया और मोई अब बोले द फ्रॉम होम द इन एंड वर्क टू सुरीनाम एंड हैड दैट एन एगन वोनिंग से बसलोड ना नीदरलैंड वर्ट्रेकन ओम हर यंगस्ट किन बेटर अंडरवाइज मोगलिकिटी टू बीडन एंड सेक बाय हर partner te vestigen. Volgens haar waren vooraf afspraken gemaakt over gezamenlijke gezinsleven.
Als je hing aan haar te ook haar partner was niet aanwezig. En enkele dagen later kreeg ze volgens haar te horen dat zij met haar kind kon terugkeren naar Suriname. Omdat hij niet verder wilde met de relatie. Dus ja, papa had geen zin meer in de relatie. Maar waar we alles in Suriname hebben opgegeven en ons zij komen vestigen in Nederland. Voor een betere toekomst van vooral de jongste. Ja, het was een slag en het is nog steeds een slag. Want dan word je op dat moment ook aan je lot overgelaten in een vreemd land. Maar die doekje baat hebben, ja, die ook haar partner ook in je tjoor deze. Op het eigen, sindsdien heeft de vrouw geen vaste verblijf was. Zij zegt op verschillende plekken te hebben geslapen, waaronder bij familieleden in een tuin en in de kraakpanden. Soms kon zij slechts 1 of 2 nachten ergens blijven. Ik ben dakloos, ik slaap hier en daar en overal. Ik heb buiten geslapen, toen was het weer nog een beetje aangenamer. Laat me maar drukken, apiorotia kakariga. Vrouw werkt momenteel niet. Voor basisvoorzieningen waaronder voedsel maakt zij gebruik van hulp via de organisatie beschikbaar bij de Rode Kruis, de Apebdekooi Auretke, Hiakelanti Helpkere of moet u weer teruggaan naar Suriname. Dus dit zijn de zaken een beetje mensen die een miljoen hier aanwezen. Je partner zit je graag, je partner wil het ook in maar dan ben je gewoon dakloos mensen. Dan moet je weer vertrekken op kontje hè. Ik er waren mee, juist de chich hamloon na janila. Hamare janta, ye se babant hota hai. To ham aap logo ko ek geet ko sunate hai. Jeevan se bhari teri aankhe.

किशोर कुमार का ये सॉन्ग थे जो आपको हमने सुना दिया। दोस्तों हम चलते हैं पेयल पेयल पेयल सुमोहर जो के बांधे बोले हम झगड़ा ना खो जिला पोलतिकुआ में बोले बकी जल लड़ाई हुई तो बोले पीछे भी ना हट पार चालू हूर के पेयल फोर से तर पौल सुमोहर जो बोले हैगा बोले ब्रेंसवेग से बोले हम स्लोस से प्रॉब्लम रहा मा बोले हम झगड़ा ना खोजला बोले हम लोग बतियाली के हम लोग बड़का संगतिया बाटी भैया जल लड़ाई हुए लगे तो संगतिया ना कामे आवे है सब अपन अपन पढ़ते ही देखे है तो एनडीपी यानी कि पीएल के फोर्स से तो पॉल सुमहार जो बोले हमसे रोनी ब्राइक से बोली हम लोग बिगी माती बाटी यार बोले जोन भल तोन भैल बोले हैगा हम लोग के कोवाली सी जोन है खुरूब जोन है और ओमा हैगा एनडीपी एनपीएस आतु इन तक बेप एंड अबोप वह पर व्हीकल्स एंड क्वालिटी टॉप सही सो मोहार जो इ बार बोले से इंटरव्यू में सो मोहार जो बोले हैगा बन्ना दृक्त बोले क्वालिटी मेड वर्किंग के बारे में सामन वर्किंग के बारे में सेंट फलांगन इस दान आल पॉलिटिक पढ़ते हैं लंच सामन तैलपन तो यहाँ बताए गए हैं बोले फिर यहाँ पे इसे बोले कि इन क्लाइन लैंड में 500 इन्वोडर्स यहाँ बताए गए हैं कि द पेयल इधर बोलेगा प्रॉब्लम ook een probleem te hebben met de oppositie partij VHP. Het ging volgens hem eerder slecht om een meningsverschil tussen hem en wijlen oud VHP voorzitter Chan Santokise. ये बातचीत है दोस्तों आप लोग के छोटा रूप में बता देखो भैया पिस्तौल के दगावल भैले बिरखर से और पिस्कोतू से भैया कराबू दो स्त्रांत में शुक्रवार के कराबू दो स्त्रांत में दगावल भैले ऐसी से ओसी पॉलिसी एंड बिरखर बोले हैगा पॉलिसी मान इस देश बोले गए इंस्पेक्टर कॉर्ट फॉर ऑफ इट एड्रेस अरिफेर्ड बोले हैगा एगो इंस्पेक्टर सिपाही जाए के एगो एड्रेस पे पहुंचल है और बतावेगा फन ऑमस्टैंडर्ड फॉर नाम है दैट अन मान सिख दार मेट अन फेज फिर वापन ओपहील एंड दर्दन में द दूध बदरेगा तो ऐसे बातचीत हुए लगल भैया उतरे में सिपाही भैया गेल पॉल्स होटल लेवे और हुआ देखेगा फरदाख्त दत वर्कलक ओकर पास एगो फेज फिर वापन है और बोले है सो मेर दे हम हेड वापन ऑफ द फ्लूर द प्लास मा दिखा खेन खोर अन बफेल बोले बोली हम ओके पिस्तौल वा नीचे धरस को तो बोले उसे बोले ना मांगे धरे तब बोले ओम हम तो अंदर खदाख्तन त ब्रेंगे लॉस द पॉलिसी मान फॉर फॉल्स टू वार्स्किंग दैट है वेल इंटिमिडेशन स्कूट in een veilige richting. Die zetten daar op de vlucht in. En tijdens een vlucht zou hij meerdere scoten in de richting van de politie hebben gelost. Deze werd daarbij niet geraakt. Dus je kan daar niet bij je te gelukkig scoten wat legala. Op het einde politie en verdachte op een dag welkeleheen. De verdachte wist uiteindelijk te ontkomen en vluchtte de omgeving in. De verdachte zou volgens buurtbewoner bekend zijn en vermoedelijk nog in een nabije omgeving verkeren. Er werd politieassistentie ingeschakeld om naar de man uit te kijken. तब यहाँ ना बताइए से भैया क्यों पकड़ा ये कि ना पकड़ान है लेकिन खफलवा के बारे में ऐसे अब देखो भैया तीन गो आदमी के निकेरी के ओर झगड़ा भैल पड़ोसिन में भैया मुर्गी मुर्गा के झगड़ा ना है पड़ोसी पड़ोसन के झगड़ा है और बताए गए है तीन मिला के सिपाही जाए के पकड़ी से कसाफा वैख में कसाफा वैख निकेरी में भैया वीर ऋषि के बारे में बतावे है फैख पड़ते ही बोले सवेरे सवेरे भैल हैगा 24 तारीख के सितंबर में और बोले हैगा एगो सीफ ने फिर तक यार के एगो औरत चोटाई गए बहुत चोटाई गए उस झगड़ा में बोले ओमदा तो बाजा बड़ा जोर बजे तब भैया द पुलिस सिरक अनफेकलक ना एन मेलिंग फॉर एक्सट्रीम ग्लेस ओवरलास ऑफ इट बोस्ट एड्रेस बोले इतना हम जाने भैया से नाम में बड़ा जोर जोर बाजा बजावे अंदर नामंतर प्लस म्यूजिक बॉक्स इन बसलाग ओम द रिस्ट हेयरस्टाइलिंग सिपाही बॉक्स वहां बस लख कलेज की झगड़वा कमती हुए और बोले जब फरत्रेक भैले तो एम तो एस्कालेर हुए के झगड़वा की बोले अनफर बाल वोर्ड विद इन टू से बीट बोनस
ontaarde in een massale vechtpartij op het erf. Op deze pahia bolaira. Op oze jarakari toje kerboksua geile tot de jabar marab heile bhaiya. Itra marab heile he. Ki akademie sikan huis met naam Mungra Medisch Centrum me jai ke parge. Ego se 41 jaar ke aurat ke. Bahut chotai ge aurat ya. Aur dunu partij hua 25 tarik september ke. On boden op de politiebureau ke hang sab ke awe ke. Na overleg van de OM. Verdachte bhaiya hier ek jhotala admi he. Sab ke pakad ke sipahi ban kari se overige 5 betrokken ke भी सही ना ने फरहूर ने नर हैश के खान तो झगड़ा बीरतिक भैया ही बाजा के कारण हुए आदमी बहुत जोर बाजा बजावे भाए और जब बाजा बजाइए तो सबके मोई थोरो लगे है गांव में कितना बुढ़िया पुरानी है तो उस सबके तो अच्छा ना लगे बाजा भैया और जब अच्छा ना लगेगा और सिपाही तो बैल कर ले अतुर बाजा ले गए तो जब बाजा ले गए है नानी तब तो झगड़वा हुई कस के झगड़वा हुई। तो हमारी जनता आप लोग को अपना समाचार सुनाते ही रहेंगे। कुछ बेटालान के बातचीत हम बता रहे भैया फेस के बातचीत है हुआ के स्टूडेंट क्लाक करी की सात गो आदमी बोले है सेफ मानन आना फॉर मींद खरूप फॉर क्राफ्टिंग भैल भैया फेस में भैल है सात आदमी खरूप से फॉर क्राफ्ट करी यूनिवर्सिटी के बातचीत हुए यहाँ पे फॉर मालक स्टूडेंट बतावे है यूनिवर्सिटी के अमेरिका के कि सात गो आदमी के अन क्लाक भैल है जो बोले घंटन खरूप फॉर क्राफ करी से स्टूडेंट है इसमें बोले द फ्राउस्टेल दैट से वर्थ ड्रोगेर्ड एंड दाना दोर मेर्डरम मानन सेक्सुअल वेट मिसब्रेक दिस ओके पहले कुछ ड्रोगेर्स करी मतलब कुछ पीआई सीआई से छौड़िया के और पीआई के और बोले ढेर आदमी ओके खरूप फॉर क्राफ करी से तेज फरमीन अनफॉल सो बोवंदीन एंड सेक्सुअल ब्रेक सेंड कस्टूड इन द स्नैपचैट ग्रुप्स जेप van de studentenvereniging van Chipi. Op bolehega ichi bhaila oktober 2024 de app ichi jua nalis bhaila bhaia bole volop in belangstelling naar de vrouw deze maand. Ego civiele rechtszaak aanspanker is tegen de Cornell Universiteit 7 huidige en voormalige studenten en verschillende organisatie die met de Chipi verbonden zijn. De ego barka zaken bij ja, New York gebaat he, studentenhuis van Chipi in New York. Daar zouden twee mannen haar onder druk hebben gezet om een wit poeder te schrijven, waarvan tegen haar werd gezegd dat het kentamine was. De vrouw stelt dat zij daarna zo zwaar onder invloed raakte dat zij niet in staat was toestemming te geven voor zulke seksuele handelingen. Volgens aanklacht was zij vervolgens gedurende meerdere uren door verschillende mannen seksueel misbruikt. ये बड़ा दुख के बात है को उज्जर पूरी पीआई डी से छौड़ी ये नंबर ड्वेलम हुई है अंदर ड्वेलम हुई के तो इस सब स्टूडेंट के वो औरत ये कैसे बन फर्त्राख के खूब फर्क्रास के इसे भाई तो ये सब मांत अमेरिका के है फेस के सुरनाम के ना है हमारी जनता फेस के है। हम चलते हैं अपना और आगे खमीस का ग्रांड क्रीक भैया ग्रांड क्रीक वो इंगी के जगह है तो हुआ पे द खमीस का ग्रांड क्रीक बोले हुआ इन ऑब्स्टान गेकोमन टेगन संत संत ग्राफिंगन बोले हुआ जो खुदा है बोले ओकर बारे में सबन हुआ पे खमीस का ग्रांड क्रीक ऑब्स्टान नहीं से बोले ना संत खबरी के खबरी का देर आई प्रोटेस्ट के हर फाटिंग वाला वर्कशॉप हिडन पॉलिसी हुआ गए हाथ हाफ करी से ऑन ग्रांड क्रीक में बोले है प्रॉब्लम स्पेल अल एनिग टाइड फॉलोइंग बवोनर्स फिंड ग्रोटस्कालेके सन अफग्राफिंग इन प्लेस फिंड इन हिन वोनिंग हिन वोन एंड लीव गebied में तो एकर बारे में शर्मक्का के डीजे जो नेगा अनिल रामौतार शेख बखरीब द हेवन फॉर द ग्रीफर फॉर सोल बवोनर्स अंडर नेमर के बारे में है तो शर्मक्का के ग्रोनिंगन में जो है डीसी एक बारे में सखवा गए देखे कैसे है और कैसे ना है हमारे प्यारे प्यारे
चिंता ये सब बात है। देखो भैया हम जाए है रुसलांत के और पुतिन बोले है एसलांत जो ने एयू के बस को लिफ्ट करी से कहा कि रुसलांत ओकर ड्रोन फैब्रिक में आगी लगाई से एसलांत बोले है ब्रांस देखते हैं बेद एस फैब्रिक van onbemande voertuigen vorige maand was het werk van Rusland, concludeerde Este Inlichtingdienst. De dienst spreekt in een verklaring. Bolle wel bewuste en geplande daad van de Russische veiligheidsdiensten. Jij kan bolle ook een dronekegelbedrijf met Angela Gaisse. De gevolgde werkwijze van Millerem Robotics komt overeen met die van andere Russische sabotageaanvallen in Europa. Binnenlandse veiligheids slotsom van de kapo is dat de aanval rechtstreeks is toen toe te schrijven aan Rusland. Duitsland vrees kregen, ja. Duitsland vrees kregen die Duitsland wees vorige maand Rusland al verantwoordelijk voor een mislukte droneaanval op een vliegveld van Leipzig. Dosto, ab dekho kya hua Rusland ke bare mein badi lamba chauda iske bare mein bhi likha gaya hai. Ye ye drone deve bhaiya auron ke Ukraine ke avishev cheez kare hai. Rusland hamare yaro hamare janta ongeregeldheden bij Franse scholen op dag van scholierenprotest. Aage lagele Franske, hua pe protest wale school ke aage ladkan ke, to hua aag lagele bhaiya Iran dreig mein aanvallen. Iran bhaiya phir dreig kare aanval kare ke op infrastructuur in de regio. Of alleen Iran dreigt krijgen, aanval krijgen of garanderen krijgen van Iran niet gegarandeerd wordt. Dit melden Iranse staatsmedia wat aanwezig. Of alleen een regio waar teel is, waar wij geen olie kunnen verkopen, zal ook niemand anders olie verkopen. Of als onze veiligheid niet gewaarborgd is, zal geen infrastructuur veilig blijven. Iranke buitenlandse minister Abbas bole mangarwar ke formeel van de VS verwachten over een voorspel van Teheran. John Straat Hormuz van Kadisiga bole chahi khole te heropenen als voorwaarde om de blokkade op te heffen. Eist Iran onder meer een 7-daagse staakt het vuren in regio, inclusief in Libanon. Zaterdag de Amerikaanse president Donald Trump het Iraanse voorstel al afgewezen. Trump heeft ook tegen Newsite gezegd dat de onderhandeling met Iran deze week vervolgd zullen worden. और हम लोग के तेल भैया ऑटो के तेल इतना महंगा हो जा है देखो कौन रेख 3 रुपया के ओर जा भैया जो हम लोग बैतलांत में और महंगा सस्ता है और हम लोग के यहां इतना महंगा ऑटो के तेल है भाई। तो ये बात है अमेरिका और ईरान के लड़ाई के बारे में। अब देखो बैंकॉक में भैया बैंकॉक के गैल है बैंकॉक जोन गैल है भैया। अब बैंकॉक में बोले 4 आदमी मर गए हैं नोटवेयर भैले बैंकॉक में तो ओवरस्ट्रोमिंग एंड दैट हैव गेवन टू 700,000 मेंशन सेगन द अथॉरिटीज ongeregeld het op een openbaar leven staat het jaar admis zochten en veilig heen komen in noodvangcentrum. Toen we hadden gouverneur John Hega City per waarschuw kunnen zeggen het waarke dat het een week zou kunnen duren. Toen je maand hebt Bangkok mee dit lang vakantie se ja hai aap sabke hum alert karte hai ki Bangkok mein wahan par kya hua hai doodan in Bangkok na ernstige noodweer ke bare mein hamare pyare pyare janta 4 कुत्ता मरल है नीदरलैंड की ओर हम जाले भैया 4 गो कुत्ता भैया घूमत रहा वंदलिंग एगो परक रहा और ये हैगा प्लांटेशन इन स्किदम के बांचित हुए है
अस्किदाम में वो प्लांटेशन है और वहाँ पे कुत्ता लेके चार मिला, चारों कुत्ता मर गए भैया। सिपाही एकर बारे में ऑन सुख करे है और बोले है रिकडिंग में दा द होंदन इज हैवर खखीतन वारदोर से सिक्स एंड खवर्दन बोनस फरतेलन। बोले है कुतवन बोले बीमार रहा, बोले फिर मुस्तन ओवर गिवन छाट करत रहा, दिया रे रहा सोम सेल्फ में ब्लूट अन अंदर बोन फरतेल द दा थार होन सिक वेयर ना दैट है इन अ पार्क वेत ब्रोकन हाथ खखीतन। Deze hond heeft het wel overleefd of de honden zijn vergiftig is nog niet duidelijk mensen. Bakitjaar kutta marge hij ook werd deze week een toxicologisch onderzoek gedaan. Kutta ke bare mein hamare janta skidam mein bhail hai, plantage skidam ke baatcheet ho rahega. तो ये है नीदरलैंड का न्यूज़ हमारे जनता जो आपको बताना हमारा काम है। नीदरलैंड एंड फाइव अंदर लंदन, नीदरलैंड और पांच देश जो लेते हैं वेलन हंड्रेड मिलियार्डन यूरो स्क्रैपन आउट द न्यू ईयू बखरूटिंग zonder flinke aanpassingen dreigen de landen hun steun aan de begroting in te trekken, schrijft de Financiële Times op basis van een brief van een regeringsleider. Ik erbaar in Nederland hebben Duitsland, Denemarken, Zweden, Finland en Oostenrijk. Ik heb brief ondertekend voor deze Europese begroting over de fundamentele hervormd moeten worden. Volgens de landen moet een duidelijke keuze worden gemaakt over waar het geld naartoe gaat. De bolehega chaudese willen meer geld voor defensie en innovatiebedrijven. Daarvoor moet volgens hen juist minder worden uitgegeven aan bijvoorbeeld landbouwsteun aan arme regio's. तो ये बातचीत है हमारे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे भौजी लोन।

और मेरे यार शब्बा शब्बा शब्बा खे दोस्तों। तो एक दो समाचार हम और सुनाएंगे, उसके बाद में हम अपना प्रोग्राम को खत्म करे है। और ये भैया जनरल पालम के बातचीत हुए हैगा भैया ना फ्लुख्त और खफ़र इस वसीरी नाम और स्नाप जनरल पालम ऑफ न्यू इन ब्रासिलिया मार फ्राई है दूर्थ कोर भैया एक कैसे बने खो जाता नीदरलैंड में कई बरिशन के जहल पायला भाग के गल सुरीनामे में। और बताए जनरल लुइजियाना पालम दी इन 2070 uit de gevangenis van Duisburgland was op ontsnap bij Bhaggerhaan op 26 september ke opnieuw uitbraak pleeg. Obwel ditmaal wist de Nederlander met een medegevangene uit een Sousa gevangenis Rio se Rio de Janeiro se Bhaggerhaan. Or bataye gaye hai dosto beiden werden daarna weer opgepakt. Sat is aan dosto ek do samachar hum China haalt bij VN uit naar Amerikaanse koers tegenover Iran en Cuba. Or bhaiya doei so SRD kar पलवार पलवार के जाता कटली से काटे भैया मान आन खाओद न बदराई के मेरे दो न फैमिली ऋषि ओफर तो ये होंदत एज है रही के बातचीत हो रहा है हमारे सुरीनाम के जनता। तो ये समाचार आज तक यहीं तक रहा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम नमस्कार प्यार भीर बात जॉनी नंबर वन है हमारा नाम।

आँच में जाके पता चला है कि चोली के पीछे क्या होता है। चोली के पीछे दिल होता है दोस्तों, और दिल तो सबके पास होता है, लेकिन किसी को उजला दिल होता है,

और तो ये आपका कौन सा दिल है आपको खुद मालूम होगा, लेकिन ये चोली के पीछे और कुछ दिल है दोस्तों। तो यहां से हम अगला और हॉट वन और कुछ नाचनी स्विंग के गीत हम आपको सुनाते हैं। क्या है

और नमकीन हो गई है, नमकीन हो गई वो, और पानी पानी का ये सॉन्ग थे हमारी यारो, और हम चलते हैं अगला अगला हॉट वन सॉन्ग की ओर। और वो क्या है, वो क्या है, चोली के बात, चोली के बात क्या आता है, क्या आता है।

और गुपचुप गुपचुप गुपचुप गुपचुप क्या होता है, गुपचुप में बहुत कुछ होता है। और जाए के और सो गए किसी और जगह जहां पान नहीं सोना था।

और दारू पी के डांस करे और डांस करे, बिना दारू पिए यहाँ लोग डांस करते हैं और गीत कहते हैं कि दारू पी के और डांस करे।

छम्मा छम्मा कौन है, किसका नाम है छम्मा छम्मा, और छम्मा छम्मा के बाद तो हम और आगे चलते हैं, और वो क्या है।

0: और नौ एन टी मारे बे रेडियो फन हैप्पी ऑल टेट एन थ्री सेंसेशन
1: एक नशा से चढ़ता है
0: ऑन रेडियो फन।

वो नींद के मारे में क्या क्या होता है दोस्तों, कुछ गलत मत कर देना, नींद में बहुत कुछ हो जाए।

जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। रूबरू मिलने की इच्छा करता है लेकिन शब्दों से ही बयां करता हूँ। आज के मेरे फाउन हिंदुस्तानी के रेडियो के श्रोता गणों को यानी राजेंद्र सिंह का हार्दिक नमस्कार और अभिनंदन। आज का जो प्रोग्राम है उसके विषय में हम बात करेंगे पितृपक्ष।

0: के बारे में और पितृपक्ष के समय के बारे में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सब हमारी रिसर्चर हैं, बहुत गहरे गहरे से खोज खोज के लाते हैं और इसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो शांता जी आप कुछ कहना चाह रही है?
1: हाँ जी राजेंद्र जी, जाना था हमसे दूर, जाना था हमसे दूर, बहाने बना लिए, अब तुमने कितने दूर ठिकाने बना लिए। मेरी आवाज़ के सुनने वालों, सेविका शांता की प्यार भरी राम राम प्रणाम। और यहाँ से जैसे राजेंद्र जी कहा कि आज की ज्योति का प्रकाश प्रोग्राम यहाँ से हम लेकर उपस्थित हो गई है,
0: तो क्यों ना शांता जी जिनका दिल उदास है उसके लिए, उनके लिए कोई एक भजन चलाया जाए।
1: हाँ बिल्कुल, यहाँ से चला दे।
0: उदासी मन काहे को डरे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार।

0: जी राजेंद्र जी, राम जी का और जो कृपा है तो जरूर हम सब पे है। सभी सुनने वालों को हार्दिक से अभिनंदन करते हुए शांता जी ये बताइए कि क्या आज का विषय है।
1: जैसे हमने बताई शुरुआत में तो आज के विषय है पितर पक्ष के बारे में, तो उसी के विषय में हम आप सबको यहाँ तैयारी करी है और यहाँ से हम अपने सुनने वालों को पहुँचाएंगे, बताएंगे कि पितर पक्ष के बारे में और उसके क्या सब सुविधा कर सकते हैं।
0: राजेंद्र जी, अगर जब देखा जाए कि जब ये त्योहारों में एक त्योहार ये पितृ का त्योहार जब आ जाता है ना
2: जी,
0: लोग पंडितों को फोन करने लगते हैं और पूछने लगते हैं, खास करके जिनका परिवार में हाल ही में कोई गुजरे हुए है तो वो पूछने लगते हैं कि क्या मैं ये पार्व श्राद्ध जो है पितृपक्ष जो हम सूरीनामी में कहते हैं ना, तो उसे उसमें हम अपने पितरों के लिए कुछ कर सकते हैं। ये प्रश्न हर बार आता है और हर बार पंडितों जनों से ये बढ़िया से संदेश दिया जाता है, पर उसके अंतर्गत में आज हम लोग के कुछ और जानकारी मिल सके तो बड़ा बढ़िया होता।
2: आज बहुत सारी जानकारी इसी बारे में है, इसीलिए ये प्रोग्राम में आज ये चीज़ रखे हैं। पितरों के लिए इसी समय जो समय है वही समय कर सकते हैं।
0: पर राजेंद्र जी, बात ये हो जाता है लोग मांगते हैं करने को
2: जी,
0: यहाँ पर ये भी संदेश हो जाता है कि कभी काल के कोई ऐसे बात करते हैं कि मैं अपने पितरों के अंतर्गत कुछ करना चाहते हूँ। पितरों है जो इस समय जो दुनिया को छोड़ चले गए, जिनके कृपा से हम लोगन है, यानी कि हमारे पितरों का नाम, तो ऐसा जब देखा जाए तो आजकल लोग से पूछा जाए कि भाई पिता का नाम, तो शायद पिता का नाम सभी जानते होंगे, पर पिता का नाम, वृत्त पिता का नाम, ये तो बस मुश्किल होने लगता है। और यहाँ तलक तो हम यह नहीं कहने वाले हैं कि जो बीच भारत को छोड़ करके और सूरीनाम 150 साल पहले गए थे, उतना दूर तो दूर की बात है। लोग अपना खुद का गोत्र और अपना खुद का पितृ का नाम गमन यानी कि उस पर चिंता ही नहीं करते, और पितृ दोष जब लगते हैं तो औरों से जा जा करके कितना लूटे जाते हैं, उसके बारे में तो आज कोई चर्चा नहीं होगा। चर्चा बस यही के बारे में होगा कि हम क्या कर सकते हैं अपने पितरों के अंतर्गत।
2: जरूर, लेकिन जब आपने ये बोल ही लिया कि अपने पितरों के नाम याद होना चाहिए, तो जब आप भारत में जाते हैं तीर्थ यात्रा में, जैसे हरिद्वार है और बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, जहाँ भी जो धाम है वहाँ पे जब भी आपके कोई पिछले पितर गए होंगे, लोग गए होंगे, आपके दादा परदादा कोई भी गए होंगे, तो वहाँ से वो खाता होता है एक पंडितों के पास, इतना बड़ा खाता,
0: पंडा के,
2: पंडा,
0: हाँ जी,
2: तो पंडा के पास सब लिखा रहता है कि आपके जितने लोग यात्रा गए वहाँ पे गए, वो पूरा रजिस्ट्रेशन रहता है उनके पास। आपका दादा का नाम ये था, परदादा का नाम, इसका नाम, उसका नाम, उसके उसका नाम, मैंने खुद जाके देखा है। तो जब गए वो डेट लिखी रहती कब गए थे वो, तो उन्होंने क्या क्या कराया था वहाँ पे पितृपक्ष के लिए और क्या कराया था, सब चीज लिखा रहता है
0: उसमें, मिल जाता है,
2: उसमें मिल जाता है खाता पंडित पंडा
0: के पास। इस बात पे ध्यान देना कि आप, हम लोग कार्यक्रम बनाते हैं ज्योति का प्रकाश, और इसमें जरूर कुछ ना कुछ अपना जीवन के ज्योति के अंतर्गत में कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा उसमें, और प्रकाश जरूर आएगा। और जब आप अपना पुरखों का अपना, और जैसे कि भाई राजेंद्र जी जो हम सबको संदेश दे रहा कि कहाँ पर आप जा करके उसका और अपना यानी कि पितरों तथा अपने पुरखों के बारे में, अपने गोत्र के बारे में पा सकते हैं। राजेंद्र जी, देखते हैं कि शांता जी पिटारा से क्या भर के लाए हैं।
2: जरूर शांता जी,
0: हम सब
2: पर अपना पिटारा, तो शांता जी का पिटारा तो हमने यहाँ सेट कर रखा है।
1: राजेंद्र जी सभी सेट करके रखिए, अभी आपको सुनाएगा
2: जी।

0: माता पिता से बढ़कर कोई नहीं होता। तो जैसा कि अभी सुन रहे थे संजय जी का प्रोग्राम कि उन्होंने क्या खाया नहीं खाया, लेकिन वो नहीं पता चल पाया अभी तक। संजय जी बताइए कि आपने खाया क्या है।
1: राजेंद्र जी, बताने का दिल है पर खाने का दिल भी और है, तो अभी जरूर बताएंगे कि क्या। और आज का समय थोड़ा निकल गया था, अभी उसके बारे में और चर्चा किया जाएगा।
0: जरूर।
1: आज हमारा विषय है राजेंद्र जी, जो कि पर्व श्राद्ध अंतर्गत, और उसके बारे में हम सबको कुछ जानकारी को हम लोग लेकर आए हैं दोस्तों, और देखेंगे कि क्या हम सबके लिए और हमारे विशेषज्ञ लोग तैयार करके रखे हुए हैं।
0: हाँ जरूर।
1: तो राजेंद्र जी, आपके पास क्या संदेश है?
0: सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि पितृ चरण में नमन करी, ध्यान धरी दिन रात, कृपा दृष्टि हम पर करी, सिर पर धरे दो हाथ।
1: सिर पर धरे दो हाथ। तो राजेंद्र जी, पितृ
0: दो हाथ नहीं, सिर पर धर दे हाथ।
1: हाँ,
0: धर दे
1: तो वो पितरों ऐसा अपने पुत्रों के कर सकते हैं।
0: हाँ, पितरों का जो आशीर्वाद होता है वो पुत्रों पे बहुत लगता है, उसी आशीर्वाद से सब लोग बहुत फूलते फलते हैं।
1: पर राजेंद्र जी, ऐसा होता है लोग तो डरते हैं अपने पितरों के कार्य करने के लिए।
0: नहीं, डरना नहीं है पितरों कार्य करने।
1: वो कहते हैं, सबसे पहले कहते हैं कि भाई मैं अपने पितरों के लिए कुछ करना चाहते हूँ, और जरूर करने का इच्छा भी रखते होंगे, पर उसमें ये प्रश्न करते हैं कि भाई अगर जब मैं ये करूँगा तो मेरे बच्चों को ये भी करना पड़ेंगे।
0: तो आगे बढ़ते हैं इसी में। ये कदम्ब है आपका, ये कुटुंब है आपका, आपका परिवार, आपके आशीर्वाद से फले फूले संसार। तो पितरों के आशीर्वाद से तो हम लोग हैं, तो कैसे डरने का विषय है?
1: पर लोग तो डरते हैं।
0: किस बात से डरते हैं?
1: और खास करके राजेंद्र जी, मैं तो देखा हूँ कि कहीं पे गए थे, कहीं पे गए थे, किसी का मृत्यु हो गया था, तो वहाँ हम लोग सत्संग करते हैं ना, तो जाकर के रामायण पाठ कहीं और गरुड़ पुराण पाठ होता है, तो वहाँ गए तो वहाँ लाइट ऑफ हो गया।
0: हो,
1: अब लाइट ऑफ हो गया, कैसे लाइट ऑफ हुआ ये पता नहीं है, पर लोग डर गए। जैसे ये पितर के बात होता है इसमें, या लाइट के बात होता
0: नहीं,
1: है
0: नहीं, इसमें पितर का बात नहीं,
1: के बात होता है,
0: इलेक्ट्रिसिटी की बात है। हो सकता है उस समय लाइट चली गई हो, या कुछ ड्रिप हो गया हो, ट्रिप हो गया हो, तो उसका पितर का कोई बात नहीं।
1: और राजेंद्र जी, बात ये भी है कि ये कार्यक्रम जो चल रहे हैं, आज का विषय रखा गया है, तो इसमें भी संदेह है कि पितर और प्रेत, इसका अंतर क्या है? तो अभी ये हम सबको भी सुनने को मिलने वाले हैं। तो और आ चुके हैं
0: सांद्रा जी,
1: आ करके पहुंच गए हैं स्टूडियो में,
0: तो
1: भूल जाए कि क्या हम सबके लिए।
0: तो दो लाइन और पितरों के बारे में कह देते हैं। भूल चूक सब क्षमा करी, करी मेहर भरपूर, सुख संपत्ति से घर भरी, कष्ट करी सब दूर। तो क्यों ना एक छोटा सा हम भजन चला दें।

0: अवनित हित परिवार, तो पितरों के समान आज हमारे बीच सांड्रा जी भी उपस्थित हुई हैं। तो आप कुछ सुना है कि बहुत बढ़िया चीज लेके आई हैं। सांड्रा जी बताइए।
1: आप सबको मेरा भी नमस्कार। तो एक लाइन मैं भी बोलना चाहती हूँ।
0: जरूर।
1: पितरों के लिए, आप हमारे हृदय में, आपके हम संतान, आपके नाम से हैं जुड़े मेरे हर पहचान। आपके ऋण बढ़े सदा, नहीं चुके जाए सात जन्म भी हम पढ़े, वेद पुराण बताए। तो आप बताइए राजेंद्र जी, मैंने क्या कहा?
0: आपने वेद पुराण की बात कही, क्या और आपने क्या कहा?
1: मैंने कहा कि आप हमारे हृदय में हैं।
0: अच्छा, हृदय में हैं, पुराण में
1: संतान, आपसे जुड़े हैं, आपकी पहचान है, पितरों से हमारा पहचान है। ये ऋण बढ़े सदा, नहीं चुकाए जाए सात जन्म भी हम पढ़े, वेद पुराण बताए।
0: हाँ, आपने बताया कि जो पितरों के जो हम पे ऋण हैं वो नहीं चुकाया जा सकता है, अगर सात जन्म भी लें तब भी नहीं चुकाया जा सकता है। बहुत अच्छा आपने जो बताया है। बढ़ते हैं आगे कि पितरों के समान और क्या क्या चीज़ें हैं। तो तीन वृक्ष, तीन पक्षी, तीन पशु और तीन जलचर। धर्मशास्त्रों के अनुसार पितरों का पितृलोक चंद्रमा की ऊर्ध्व भाग में माना गया है। धर्मलोक के अनुसार माना गया है। और दूसरी ओर अग्निहोत्र कर्म से आकाशमंडल के समस्त पक्षी भी तृप्त होते हैं। पक्षियों के लोक को भी पितृलोक कहा जाता है। तो जहाँ पे पक्षी उड़ते हैं वो लोग उस लोक को पितृलोक कहते हैं। तीसरी ओर कुछ पितर हमारे वरुण देव का आश्रय लेते हैं।
2: राजेंद्र जी, जैसे कि आपने कह रहे हैं कि पक्षी,
0: हाँ,
2: तो खास करके मैं कुछ फिल्मों में देखे हैं और व्हाट्सएप बरेख पे भी भेजा जाता है कि कोई प्रकार के पक्षी भी होता है जिसे, और ये पितृ पक्ष यानी कि पर्व श्राद्ध में उसे कुछ खाने पीने के दिया जाता है।
0: कौवा, कौवा,
2: वो कौवा होता है, तो उससे,
0: हाँ, कौवा की बात अभी हम आगे आने वाली है,
2: आने वाले।
0: अतः पितरों की स्थिति जल में भी बताई गई है। वरुण देव जल के देवता हैं और पितरों की स्थिति जल में भी बताई गई है। तीन वृक्ष की सबसे पहले बात करेंगे। पीपल का जो वृक्ष है, पीपल का वृक्ष बहुत पवित्र है। एक ओर इसमें जहाँ विष्णु का निवास है वहीं यह वृक्ष रूप में पितृदेव हैं। पितृपक्ष में इसकी उपासना करना या इसे लगाना विशेष शुभ होता है। और दूसरा नंबर है बरगद का वृक्ष। आगे का संदेश बरगद का वृक्ष है। बरगद के वृक्ष में साक्षात शिव निवास करते हैं। अगर ऐसा लगता है कि पितरों की मुक्ति नहीं हुई है तो बरगद के नीचे बैठकर शिव जी की पूजा करनी चाहिए। और जो तीसरा वृक्ष है वो है बेल का वृक्ष। बेल आप जानते हैं?
1: बेल वृक्ष, बेल का पत्र
2: जो शिव जी पे चढ़ाया
1: जाता है, शिव जी पे चढ़ाया जाता है,
2: बेल पत्र
1: पे चढ़ाया जाए।
0: बेल पत्र होता है पत्ता और बेल पत्थर होता है फल।
2: फल,
0: हाँ, उसको पत्थर, वो पत्थर जैसा मजबूत
2: बड़े बड़े।
1: राजेंद्र जी, हम लोग बात कर रहे हैं बेल ब्रादरे के।
0: बेल ब्रादरे,
1: या
0: यदि पितृपक्ष में शिव जी को अत्यंत प्रिय बेल का वृक्ष लगाया जाए तो अतृप्त आत्मा को शांति मिलती है। जिसकी आत्मा को शांति न मिले वो बेल के वृक्ष लगाने से मिल जाती है। अमावस्या के दिन शिव जी को बेल पत्र और गंगा जल अर्पित करने से सभी पितरों को मुक्ति मिल जाती है।
3: अगर सोने, अगर जैसे आपने कहा राजेंद्र जी कि अमावस्या के रोज अगर पितर पक्ष जो में अगर आपको मौका नहीं मिला करने के लिए कि कोई हालत जैसे हो, तो अमावस्या के रोज आप कर सकते हैं जी।
0: और इसके अलावा अशोक, तुलसी, समी और केले के वृक्ष की भी पूजा करनी चाहिए।
1: हाँ जी, केले में तो साक्षात विष्णु भगवान निवास करते हैं।
0: हाँ, केले का वृक्ष भगवान विष्णु का ही है।
2: आगे चलते हैं राजेंद्र जी, क्योंकि संदेश ज्योति का प्रकाश में यही लक्ष्य रखा जाता है कि कुछ ना कुछ संदेश हम सबको प्राप्त हुए। जैसे कि पता है कि शांता जी भी कुछ सुंदर सुंदर गीतों को लेकर भी आए हैं, तो देखते हैं राजेंद्र जी क्यों ना एक गीत की ओर बढ़ते हैं, फिर हाँ। आगे हम सब कार्यक्रम बढ़ाने वाले हैं।
0: जरूर, जरूर।

0: राजेंद्र जी, कहा जाता है कि ईश्वर दुनिया के सबसे बड़ा और डॉक्टर है। प्रार्थना दुनिया के सबसे बड़ी दवा है। तो आगे का कार्यक्रम में आप क्या सुनाने वाले हैं, क्योंकि डॉक्टर और दवा के बारे में तो हमें जानकारी मिल गया है, पर ये आज का विषय जो रखा गया है, ये श्राद्ध अंतर्गत कौन सा संदेश, क्योंकि शांता जी भी तैयार हो गया है नीदरलैंड्स में कुछ हम सबको सुनाने के लिए। और कार्यक्रम में जो अब हमारे कैसे कहा गया था,
1: मिस सेंड्रा
0: भी है, और मिस सेंड्रा से आग्रह करूंगा कि आप क्या लेकर आए हैं, आगे सुनाइए।
2: हाँ जी, मेरे पास भी दो लाइनें बची हुई है कविता के। हर दिन हर पल आपसे मांगे ये वरदान, वंश भले बताते रहे बढ़े मान सम्मान। ये पितरों से होता है। घर पिंडे में आप विराजे यही अरज करे, कहत भक्त हम शरण आपके निस दिन महर करे, ओम पित्र पितरायने नमो नमः।
0: तो राजेंद्र जी, सांद्रा जी काफी चतुर है और सामान लेकर आए हैं जिसे हम सबको, और काफी जानकारी छोड़ दी है हम सबके लिए।
1: हाँ, सांद्रा जी तो
3: तैयारी करके है,
1: सुरनाम जाती रहती है और पितृपक्ष के बारे में पढ़ती रहती है, तो उनको तो ज्ञान ही है।
0: ऐसा बहुत बढ़िया बात है सांद्रा जी, जो आपने भी संदेश दिए। ये पर्व श्राद्ध अंतर्गत जो पितृपक्ष से हम सब जानते हैं, इसमें कौन सा जानकारी अभी और राजेंद्र जी रखने वाले हैं। और दोस्तों, मैं आपसे अभी से कह देता हूँ कि शांता जी भी कुछ तैयारी करके लेकर आए हैं, और ना सिर्फ शांता जी के पिटारा में सुंदर सुंदर गीतों हम सब के लिए रहते हैं, पर शांता जी कुछ नई दलांस में लेकर के हम सब के लिए आए हैं। पर राजेंद्र जी, सब कहते हैं कि लेडीज फर्स्ट, पर क्यों ना आप आज कुछ संदेश और सुना देते हैं, तो फिर हम सब शांता जी की ओर बढ़े।
1: हाँ, जरूर। आगे के जो संदेश है कौवा के बारे में, कौवा को, कौवा यानी कागा
2: शनि देव के वाहन।
1: कौवे को अतिथि आगमन का सूचक और पितरों का आश्रय स्थल माना जाता है। श्राद्ध पक्ष में कौवा का बहुत महत्व माना गया है। इस पक्ष में कौवा को भोजन कराना अर्थात अपने पितरों को भोजन कराना माना गया है। शास्त्रों के अनुसार कोई भी क्षमतावान आत्मा कौवे के शरीर में स्थिर होकर विचरण कर सकती है।
0: तो राजेंद्र जी, कौवा के बारे में कुछ और हम सबको जरूर बताइए, पर हम लोग को, क्योंकि हमारे जो डायरेक्टर है और फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो के, हम सबके जरूर समय दिए है कार्यक्रम करने को, पर हम लोग के कुछ परप्लेक्सिंग होते हैं और हम सब न्यूज़ के ओर पहले बढ़ते हैं। और न्यूज़,
1: हाँ, न्यूज़ से जब कौवा की बात चली गई तो एक मिनट की बात और रह गई है। जब कोरोना का समय आया तो कौवों ने एक मीटिंग करी सबने।
0: हाँ जी।
1: श्राद्ध पक्ष को देखते हुए कौवों की आपात मीटिंग बैठी। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जिस घर में बूढ़े माता पिता के साथ बुरा व्यवहार होता है, उस घर के अन्न जल का बहिष्कार किया जाएगा। जो जीते जी अपने माता पिता को पाल न सके, वे मरे हुए लोगों को पितृपक्ष पितृभोग लगाने की कोशिश के काबिल नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि कौवों ने कैसी मीटिंग करी है, ये देखो। और लास्ट ईयर जब कोरोना के समय कौवों ने एक मीटिंग और करी थी कि भाई इस बार कौन कैसा रहेगा, क्योंकि कोरोना का समय है, इकट्ठे नहीं जाएंगे, अलग अलग सब लोग जाएंगे, तो उनकी ड्यूटी अलग अलग लगी थी कौवों की। तो संदेश हमने पिछली बार देखा था, बड़ा बढ़िया संदेश था वो भी। इस प्रकार से कौवों की बात चली थी, तो क्यों ना आगे अब न्यूज़ की ओर बढ़ा जाए और इसके बाद सारा जो वृतांत रखा जाए उसकी बात करेंगे।

0: होता है।
1: भगवान गरुड़ विष्णु के वाहन हैं और भगवान गरुड़ के नाम से ही गरुड़ पुराण है, जिसमें श्राद्ध कर्म, स्वर्ग, नरक, पितृलोक आदि का उल्लेख मिलता है। पक्षियों में गरुड़ को बहुत ही पवित्र माना गया है। भगवान राम को मेघनाद के नागपास से मुक्ति दिलाने वाले गरुड़ का आश्रय लेते हैं। और इसके अलावा कोंच या सारस नाम का भी लिया जाता है, जो पितृपक्ष में एक कोंच और सारस का नाम भी लिया जाता है, उनको भी वो अन्न देना चाहिए उस समय।
2: तो राजेंद्र जी, कोंच ये पक्षी है या जानवर है क्या?
1: पक्षी है।
2: एक पक्षी?
1: हाँ, एक सारस होता है जो ऊपर लाइन से चलते हैं, और एक क्रॉंच, क्रॉंच नहीं, वो क्रॉंच वो तो शंख।
3: हाँ, शंख,
1: शंख उसमें वो क्रॉंच।
3: हाँ, शंख के बोले।
1: तो जो शंख जिससे निकलता है वो तो रहता है समुद्र में, मिलता है नदी में नहीं मिलता है। तो इस प्रकार तीन पशुओं की भी बात करेंगे, उससे पहले एक छोटा सा हम सांता जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं नीदरलैंड में?
0: जरूर। तो यहाँ से हम आप लोगों को बता दे थोड़ा डच में, नीदरलैंड भाषा में, कि पितर पक्ष क्या होता है और किस लिए है, और तो पता है। तो यहाँ से हम शुरू कर दे।
1: हाँ, जरूर।
0: पितर पक्ष यार लक्ष दो दफर एरिंग तैदस द डोंकर हेल्फ ऑफ द मंथ सितंबर अक्टूबर वार्डन door sommige hindoes de doden herdag. Deze herdenking wordt Pritra Shraad genoemd. Dit wil zeggen het offerfeest voor de gestorven voorouders. Pitra is voorouder en Paksh is de donkere maandhelft. Dat deel van de maanmaand waarin de maan afneemt. Gedurende 15 dagen wordt er aan degene die de doden herdenken, een tilanjali gegeven. Dat is een offerande bestaande uit water, til. De til is sesamzaad met bloemen op een soort gras, janneke kusha gras. Deze offerande wordt in de hand gegoten, waarbij beide handen tegen elkaar worden gehouden. Anjali, de dubbel handvol. De tilanjali wordt dan op een gewijde plaats op het erf geplengd of uitgegoten. De gestorvenen worden herdacht om hun positie in de dodenrijk te verbeteren en voor hun welzijn en geluk al daar. Tevens smeekt men zegen van de overledenen af voor de nabestaanden voor geluk, welzijn. De plaats van de gestorvenen in het dodenrijk vertegenwoordigt een heel oud geloof dat in feite in alle natuurgodsdiensten voorkomt. De overledenen gaan naar het rijk van Yam. De eerste overledene na de schepping van de mens en sindsdien de vorst van het dodenrijk, oftewel Yamraj. Het welzijn van alle overledenen wordt in niet geringe mate bepaald door de offers van spijzen door hun levende nakomelingen. Het ritueel dat hierbij gevolgd wordt, is ook van zeer oude datum en stamt af van voor de tijd dat in de religieus denken van de Indiërs de gedachten van karma en reïncarnatie ontwikkeld werd. Karma houdt in dat de mens de loop van zijn leven bepaalt door de daden die hij verricht. Karma betekent letterlijk handeling, daad. Krachtens de daden van de mens wordt zijn leven bepaald. Reïncarnatie is wedergeboorte. Volgens deze gedachte blijft de ziel voortbestaan. Slechts het lichaam is vergankelijk. Dit is een gedachte die ook in alle godsdiensten

0: terug te vinden is. Vandaar de dodenverering. Toen यहाँ तक था सुनने वालों डच भाषा में नीदरलैंड भाषा में पितर पक्ष के बारे में
1: राजेंद्र जी शांता जी ने अच्छी सुंदर सूप रूप से और नीदरलैंड्स में जो संदेश को हम सबके लिए पहुंचाए और जैसे कि हम सब अभी और भी संदेश आपके ओर से प्राप्त करने वाले हैं तो आगे का संदेश क्या है क्यों ना एक सुंदर सा गीत की ओर बढ़ते हैं और फिर उसके बारे में उसके बाद में हम सब और आगे कार्यक्रम को बढ़ाएंगे
2: जरूर।

0: तो पितृपक्ष की जैसे बात चल रही थी, आगे बढ़ते हैं, तीन पशुओं की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला है कुत्ता। कुत्ते को यम का दूत माना जाता है। कहते हैं कि इससे इधर माध्यम की वस्तुएं भी नजर आती है। कुत्ता जो है यम का दूत है, तो उसको पहले ही हो जाता है, आसार हो जाता है कि क्या होने वाला है। दरअसल कुत्ता एक ऐसा प्राणी है जो भविष्य में होने वाली घटनाओं को और ईथर माध्यम सूक्ष्म जगत की आत्माओं को देखने की क्षमता रखता है। कुत्ते को
1: आगम हो जाता है।
0: हिंदू देवता भैरव महाराज का सेवक माना जाता है। कुत्ते को भोजन देने से भैरव महाराज प्रसन्न होते हैं और हर तरह के आकस्मिक संकटों से भी भक्त की रक्षा करते हैं। कुत्ते को रोटी देते रहने से पितरों की कृपा बनी रहती है, तो इसलिए कुत्ते को रोटी देना हर समय देना चाहिए, तो आपके पितरों की कृपा आपके बसी रहेगी। अगला है गाय। जिस तरह गाय में सभी देवी देवताओं का निवास है, उसी तरह गाय में सभी देवी और देवताओं का निवास बताया गया है। दरअसल मान्यता के अनुसार 84 लाख योनियों का सफर करके आत्मा अंतिम योनि के रूप में गाय बनती है। गाय लाखों योनियों का वह पड़ाव है जहां आत्मा विश्राम करके आगे की यात्रा शुरू करती है। गाय जो गाय माता है, कुछ लोग जानवर बोलते हैं, पशु बोलते हैं, तो गाय को पशु नहीं बोलना चाहिए, तो गाय माता का दर्जा दिया गया है।
1: हाँ राजेंद्र जी, जैसे आपने कहा था 84 लाख योनियों
0: मतलब
1: हाँ
0: हम मनुष्य की एक योनी है, ऐसे कुछ कुत्ता जानवर जो अलग अलग 84 लाख योनियों में से जब सबसे आखिरी योनि गाय की होती है,
1: हाँ।
0: वहाँ वो आत्मा कुछ समय के लिए विश्राम करती है और हाँ। इसके बाद आगे की यात्रा पे बढ़ती है।
1: अच्छा
0: हाथी, हाथी की बात चल रही है। हाथी को हिंदू धर्म में भगवान गणेश को साक्षात रूप में माना गया है। यह इंद्र का वाहन भी है। हाथी को पूर्वजों का प्रतीक भी माना गया है। जिस दिन किसी हाथी की मृत्यु हो जाती है, उस दिन उसका कोई साथी भोजन नहीं करता। हाथियों को अपना पूर्वजों की स्मृतियाँ रहती है। अश्विन मास की पूर्णिमा के दिन गज पूजा विधिवत रखा जाता है। सुख समृद्धि की इच्छा रखने वाले उस दिन हाथी की पूजा करते हैं।
1: गज किसको कहते हैं?
0: गज हाथी को कहते हैं।
2: अच्छा,
0: गज मत संस्कृत में बोलते हैं ना।
1: अच्छा गज। अच्छा
0: इसके अलावा बराहा, बैल और चींटियों का यहाँ उल्लेख किया जाता है। जो चींटी को आटा देते हैं और छोटी छोटी सी चींटियों को चावल देते हैं चिड़ियों को, वही बैकुंठ चले जाते हैं। तो इसलिए चींटी को आटा देना चाहिए, चिड़ियों को चावल देना चाहिए। तो आगे बात करते हैं, संजय जी आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं?
3: जरूर जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं शांता जी भी कुछ तैयार कर चुके हैं कहने के। मेरे ख्याल से कुछ पिटारा से कुछ सुनाने वाले हैं अपने ओर से। पर शांता जी, यहाँ पर किसी ने ये संदेश भी भेजा है राजेंद्र जी कि हर कोई सुख की चाबी ढूंढ रहा है, लेकिन सवाल ये है कि सुख की ताला किसने लगाया है। तो सुख के ताला के और किसने लगाया है, इसके लिए कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश है। और ज्योति का प्रकाश जिसमें आपको कुछ ना कुछ संदेश आपके लिए खोज खोज करके रखा जाता है, और जिसे आपके जीवन का ज्योति जो जल रहा है उसमें थोड़ा और प्रकाश आ सके। दोस्तों ये कार्यक्रम जो लगभग 188 देशों तक सुना जा सकता है, तो आशा यही है कि इस कार्यक्रम से कुछ ना कुछ लाभ आपको जरूर प्राप्त होए। चलो एक गीत सुन लेते हैं तो आगे बढ़ेंगे।
0: जरूर।

0: वो घर कितना सुंदर है जिस घर में पितरों का हो सत्कार। बहुत अच्छा जो भजन था, बहुत ही अच्छा भजन था शांता जी। आपने जो भजन ढूंढते हैं बड़े, उसका हम बहुत ही आभार करते हैं कि आप इतने ढूंढ ढूंढ के अच्छी चीज़ लाते हैं। हाँ, समय लगाते, बहुत अच्छा। आगे चलते हैं, जलचर जंतु। तीन जलचर जंतु की बात चलेगी। भगवान विष्णु ने एक बार मत्स्य का अवतार लेकर मनुष्य जाति के अस्तित्व को जल प्रलय से बचाना था। जब श्राद्ध पक्ष में चावल के लड्डू बनाए जाते हैं तो उन्हें जल में विसर्जित कर दिया जाता है। कछुआ, आगे की बात चलेगी कछुआ की।
1: तो राजेंद्र जी, कछुआ है क्या? कछुआ,
0: कछुआ
1: किसको कहते हैं?
0: कछुआ एक ऐसा होता है, ऐसा
2: स्केल पार,
0: वो ऐसे चलता है।
1: कछुआ किसको कहते हैं शांता, अगर आप हो सके तो और बढ़िया से हम सबको बता सके।
2: स्केल पात।
1: हाँ, राजेंद्र जी स्केल पात को कहते हैं।
0: भगवान विष्णु ने कच्छप का अवतार लेकर ही देव और असुरों के लिए मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर स्थापित किया था।
2: हाँ।
0: जब भगवान ने कछुआ का अवतार लिया था और मंदराचल पर्वत अपनी पीठ पे लिया
2: जी,
3: तो समुद्र मंथन
0: और समुद्र मंथन हुआ, तो समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले
2: जी।
0: सबसे पहले हलाहल विष निकला था
2: जी।
0: जिस विष से एकदम सब लोग झुलस रहे थे, कुछ मर रहे थे, तो फिर भगवान शंकर ने अपने गले में उसको विष को रोका और वही नीलकंठ महादेव के नाम से जाने गए। हरिद्वार से थोड़ी दूरी पे एक जगह है नील का मंदिर, आपने कोई गया है?
2: हाँ, जी, हमने गए।
0: हाँ, तो वही,
1: तो सांद्रा जी आपने भी गए हैं नीलकंठ मंदिर?
3: हाँ जी, मैं गई।
1: तो वहाँ के बारे में कुछ बताइए, वहाँ का वातावरण कैसे है और वहाँ पर जाकर के क्या खूबियां है और कैसे वहाँ पहुँचते हैं?
0: हाँ, कछुआ की थोड़ा सा बात खत्म कर देते हैं, इसके बाद सांद्रा जी आप बताएंगे वहाँ के बारे में। कछुआ बहुत ही पवित्र उभयचर जंतु है जो जल की सभी गतिविधियों को जानता है।
1: अच्छा? जल की सभी गतिविधियों।
0: हाँ, कछुआ को बहुत सारे लोग अपने घर पे भी रखते हैं, कहते हैं कि कछुआ अगर घर पे रहता तो लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए रखते हैं
1: ऐसा।
0: और तीसरा जो है नाग है। भारतीय संस्कृति में नाग की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि यह एक रहस्यमय जंतु है। यह भी पितरों का प्रतीक माना गया है। इसके अलावा मगरमच्छ भी माना जाता है। तो बताइए जी,
1: मगरमच्छ किसको कहते हैं राजेंद्र जी?
0: मगरमच्छ जो पानी में
1: कि हम जरूर समझ जाते, जैसे कि राजेंद्र जी हम सबको एकदम सरनामी में जो हम सबको समझा देते हैं और सारा संदेश। राजेंद्र जी, कार्यक्रम आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा सा वृतांत जब सांद्रा जी हम सबको सुना दे कि उन्होंने जा करके और कौन सा स्थान पे गए थे। सांद्रा जी
3: जी, हम गए थे नीलकंठ मंदिर, वो हरिद्वार में है। पहला बात तो ये है, आप भारत जाओ और मन में लेकर जाओ कि आप जा रहे हो हरिद्वार, तो सबसे पहले मन में आता है कि शिव बाबा के दर्शन होंगे और गंगा की दर्शन होगी, गंगा स्नान करेंगे। तो हम लोग तो गए थे न्यू दिल्ली से, हम लोग तो बस से गए थे और वहाँ से पैदल गए थे। तो जो मन में हो गया कि गंगा जी की दर्शन होगी, शिव जी की दर्शन होगी, तो मन तो तृप्त हो जाती है। बस ये बात सुनकर, ये बात दिल में रखकर जाओ वहाँ पर। हम तो गए थे, समर रहा, ठंड नहीं थी,
1: गर्मी के समय था,
3: धूप बहुत था। तो हम लोग गर्मी के समय में गए थे और गंगा में पैर रखो, गंगा इतना ठंडा है, गंगा जी
1: शीतल
3: जल, थीफ जो सो अनहेल खुद रिलैक्स फुल। एंड हाँ जी, हम गए मंदिर में, शिवलिंग है, शिवलिंग पर अर्पण किए जो भी अर्पण कर पाते थे। वहाँ थोड़े थोड़े पंडितों है वहाँ पे जो मदद करती है, चीज़ें बिकती है, जो भी चढ़ाना चाहो चढ़ा लो और मन अपना तृप्त कर लो। जैसे आपने कहा, मन शुद्ध करो तो धर्म के काम कीजिए ना, मन के पवित्र करना है तो धर्म के काम कीजिए, धर्म काम करने से मन पवित्र होता है।
2: हाँ सांद्रा जी, अपना अपना बताए, अच्छा लगा सुनने के लिए। और मेरे ख्याल से
1: सुनते सुनते ये भी मन में हो गया कि मेरा भी इच्छा हो रहा है कब जी। चले
2: और हम चलेंगे सच में
3: फिर से।
2: हाँ, ये सांद्रा जी जो गंगा जल के बात करी ना, तो जैसे मैं भी एक बार भारत जो गई तो मेरे गोड़ में बहुत सारा दर्द था, ठीक से चल नहीं पाती थी और मेरी पैर बहुत से सूजन था उसमें, और ऐसा मौका आई कि हम सब गए काशी,
1: काशी
2: काशी विश्वनाथ। तो वहाँ पे हमारे गाइड जो है हम सबको बोट में बैठा कर अलीगढ़ एक्वा की
3: दूसरे किनारे
2: किनारे हाँ, तो वहाँ से हमको कहा, हम सभी को कहा कि आप अपना पूजा करना चाहते तो करो। तो मेरे मन में यही, कभी मैं सुनी थी कि फान गंगा जी जो आप मांगोगे जो भी करोगे मन से करोगे तो वो पूरा
1: करती है, माँ गंगा है।
2: और वाकई में मैं गई, मैं तो स्नान की बार मैं उसमें गई गंगा में, और उससे
3: रखी आपने,
2: उससे माता से मैंने प्रार्थना की मने मन में, और सच में उसी दिन मेरी पैर अच्छी हो गई और आज तक मेरी पैर में दर्द नहीं।
0: तो सुनने वालों आपने देखा कितना बढ़िया वृतांत शांता जी ने बताया गंगा का, कि गंगा में केवल जल के स्पर्श मात्र से ही समस्त दुख दूर हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग तो कहते हैं कि गंगा जल से ऐसा नहीं होता। तो सब पॉजिटिविटी अगर जो लोग उन तरफ रहते हैं तो उनका जरूर होता है, जो नहीं रखते हैं तो उनका मैं कह नहीं सकता,
2: होता है।
0: बहुत ही अच्छा शांता जी आपने जो
2: स्नान के, और उसमें हम स्नान के कुंभ मेला में हम गए थे, जितने दिन हुआ थी दो हफ्ते हुआ थी, रोज हम जाते स्नान करें और उसका परिवर्तन होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि तुरंत नहीं होता है, पर समय के अनुसार उसका परिवर्तन होता है अपने जीवन में।
1: दोस्तों, ये फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश चल रहा है। तो राजेंद्र जी
0: जी,
1: जरा ये तो बताइए कि कुछ और संदेश है हमारे ये पार्व श्राद्ध के अंतर्गत।
0: हाँ, जैसे कि आजकल पितृपक्ष की शुरुआत है, चल ही रहा है पितृपक्ष, उसके बारे में थोड़ा सा बातचीत जी।
1: क्यों ना एक सुंदर सा गीत, क्योंकि शांता ने आज का गीतों जो इकट्ठा किए है ना, ये हम जानते हैं कि परमात्मा कभी भाग्य नहीं लिखता है। जीवन के हर कदम पर हमारे सोच, हमारे व्यवहार एवं हमारे कर्म है हमारा भाग्य लिखते हैं। तो राजेंद्र जी, एक सुंदर सा गीत की ओर हम सब चलते हैं, फिर आगे कार्यक्रम बढ़ेंगे।
0: जरूर।

0: भरोसा करना भारी है। तो क्यों ना आगे का जो आजकल पितृपक्ष के बारे में थोड़ा सा समझ जाए।
1: कहने के तात्पर्य यह है दोस्तों कि देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान सबसे सर्वश्रेष्ठ है। राजेंद्र जी, जैसे कि आप हम सबके कार्यक्रम में पितृपक्ष अंतर्गत जो परवंश रात है उस अंतर्गत में और सुनाने वाले हैं, तो आगे का संदेश क्या
0: है? आगे का संदेश है कि पितरों का महत्व क्या है। संसार के समस्त धर्मों में कहा गया है कि मरने के बाद भी जीवात्मा का अस्तित्व समाप्त नहीं होता, वरन वह किसी न किसी रूप में बना ही रहता है। जैसे मनुष्य कपड़ों को समय समय पर बदलते रहते हैं, उसी तरह जीव को भी शरीर बदलने पड़ते हैं। जिस प्रकार तमाम जीवन भर एक ही कपड़ा नहीं पहना जा सकता, उसी प्रकार आत्मा अनंत समय तक एक ही शरीर में नहीं ठहर सकती। न जाते मेयते वा कदाचिन्नमयी भूत्वा भवितो न भूभुवा, न जायते मित्रते वा कदाचिन्नाय भूता भवितो वा न भूपा, ऊजो नित्वः शाश्वतं पुराणानां। हन्यते हन्यमाने शरीरः गीता। गीता के अध्याय 2 के अध्याय में कहा गया है कि आत्मा न तो कभी जन्म लेती है और न मरती है। मरना जीवन शरीर का धर्म है। शरीर का नाश हो जाने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। विज्ञान के अनुसार कोई भी पदार्थ कभी नष्ट नहीं होता, वरन उसके रूप में परिवर्तित हो जाता है। व्यक्ति के संस्कार होने के बाद यही अक्षय आत्मा पितृ रूप में क्रियाशील रहती है तथा अपनी अनोत्मनी के लिए प्रयास रहित रहने के साथ साथ पृथ्वी पर अपने स्वजनों एवं सुपात्रों की मदद के लिए सदैव तैयार रहती है। पितरों के प्रति श्राद्ध, उनका स्मरण एवं उचित संस्कार करने से हमें सदैव पितरों से लाभ ही लाभ मिलता है। पितर वह उच्च आत्माएं होती है जो अपने स्वभाव एवं संस्कार के कारण दूसरों की यथासंभव सहायता करती है। हिंदू धर्मों के पितरों में संदेशवाहक भी कहा गया है। शास्त्रों में लिखा है, ओम अरयम माना तृप्तताम इदम त्रिलोकम तस्मै स्वाध्याय नमः मृत्योर्मा अमृतम गमया। अर्थात अर्यम्मा पितरों के देव हैं जो सबसे श्रेष्ठ हैं। उन अर्यम्मा देव को प्रणाम करता हूँ। हे पिता महा और प्रति महा, हे माता माता महा और परमात्मा महा, आपको भी बारंबार प्रणाम है। आप हमें मृत्यु से अमृत की ओर ले चलें। इसका अर्थ यह है कि वर्ष भर अपने देवों को समर्पित अनेकों पर्वों का आयोजन करते हैं, लेकिन हमने बहुत से लोग यह महसूस करते हैं कि हमारी प्रार्थना देवों तक नहीं पहुंच पा सक रही है। हमारे पूर्वज देवों और हमारे मध्य एक सेतु का कार्य करते हैं, और जब हमारे पितृ हमारी श्रद्धा हमारे भाव हमारे कर्मों से तृप्त हो जाते हैं, हमसे संतुष्ट हो जाते हैं, तो उनके माध्यम से उनके आशीर्वाद से देवों तथा हमारी प्रार्थना बहुत ही आसानी से पहुँच जाती है और हमारे मनोवांछित फल की शीघ्रता से प्राप्त हो जाती है। पितरों का सूक्ष्म जगत से संबंध होने के कारण वह अपने परिजनों स्वजनों को सतर्क करती रहती है तथा तमाम कठिनाइयों को दूर कराकर उन्हें सफलता भी दिलाती है। सामान्यतः यह सर्वसाधारण को अपनी उपस्थिति का आभास भी नहीं देते, परंतु उपयुक्त मनोवृत्ति एवं व्यक्तित्व को देखकर या उपस्थित होकर भी सहयोग एवं परामर्श देते हैं। पितरों का उद्देश्य ही अपने वंशजों को पितृवृत्त स्नेह दुलार सहयोग एवं खुशियाँ प्रदान करना है। संसार में तमाम उदाहरण उपलब्ध हैं जब इन्होंने दैवीय वरदान के रूप में मदद की है। पितरों का महत्व पितर अपने कुल से मात्र अपने प्रति श्रद्धा अपना स्मरण अपना आदर तथा अपने प्रति उच्च संस्कार ही अपेक्षा रखते हैं, और यह भी सत्य है कि उनका श्राद्ध करने के नाम उनके नाम से दान धर्म करने संस्कार करने स्मरण करने का पुण्य फल एवं यश करने वालों को ही प्राप्त होता है तथा उनका कुछ मात्र अंश ही हमारे पितरों के पास पहुंचता है। जो करता है वही भरता है, परंतु हमारे पितर जब यह देखते हैं कि मेरे कुल के लोग हमेशा प्रति कृतज्ञता का उपहार का भाव रखते हैं प्रदर्शित कर रहे हैं, तो उन्हें असीम संतोष एवं सुख का अनुभव हो जाता है।
1: ऐसा होता है। तो राजेंद्र जी, आपने लगातार और हिंदी में और ऐसा संदेश सुंदर रूप से दिया, चलो सांद्रा जी भी उसे कोशिश करेंगे, उसका पूरा नहीं हो पाएगा दोस्तों,
2: नहीं डांस भी करेगा।
3: हाँ जी, तो मैं भी यहाँ पर कुछ संदेश देना चाहती हूँ डच में, नीदरलैंड्स में। पितृ श्रद्धांजलि वट हाउ दैट इन दैट बिटेकन दैट वी गान फॉर एरन फ्रॉम द फोर ओल्डर्स एंड दैट इज अ हेल बेलंगरेक रिचुअल फॉर द हिंदूस। हियरमी टोन वी रिस्पेक्ट voor de verering van de overledene. En het is vooral zo belangrijk omdat de ziel van de overledene na de dood beschermer wordt voor het hele gezin. De verplichting aan de voorouders heet Pitr Reen. Hindoes vervullen deze verplichting door een offerplechtigheid te houden genaamd de Shraad. Shraad wordt meestal gehouden in Pitrapaksh voor de ouders indien al overleden. Alleen voor de overledene ouders wordt deze shraad gedaan. Ouders, grootouders en overgrootouders of voor alle voorouders. Aan hun ouders hebben Hindoes een ereschuld zolang die nog in leven zijn, want die hebben hen verzorgd en opgevoed. Mana to ye pitrareen kabhi khatam nahi hota hai, lekin hum log hinduo maan kar chalte hai ki shraad karne se kuch kam ho jata hai. Ze lossen de schuld voor het grootste deel af door hen te verzorgen als ze oud zijn geworden en niet kunnen werken. Er blijft nog een restschuld over die wordt ingelost met shraad door middel van jaldaan, water en melk, tildaan, maanzaad, diepdaan en het reciteren van Pitr Mantras om uw mata pita per pita op een juiste Vedische manier Sridhanjali uit. Aap Pitr Reen se mukt hona chahte, apne pitro ko mukti dilana chahte ho, to kuch bhi kijiye, lekin kijiye kuch.
1: जरूर, चंद्रा जी ने भी संदेश दिए। राजेंद्र जी, जैसे कि संदेश में और हम सब सुनते आए हैं कि हमें तीन प्रकार के ऋण होता है, पहला जो पितृ ऋण, दूसरा ऋषि ऋण और तीसरा देव ऋण। इन तीनों पे हमें ध्यान देना है और हम सब क्या कर सकते हैं इसे अंतर्गत में, इसमें कुछ ना कुछ संदेश और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा। तो संदेश क्या है, पहले हम सब संदेश सुना देते तो फिर हम सब अगले गीत की ओर बढ़ेंगे।
0: संदेश थोड़ा सा ही है, ज्यादा नहीं है। अपने प्रियजनों की साधना सहायता के लिए वह हर संभव प्रयत्न करते हैं। पितरों के प्रति श्रद्धा भाव रखने, उन्हें सद्भावना भरी श्रद्धांजलि देने तथा उनके प्रति अनुकूल भाव रखकर उनकी सहायता लेने से पीछे नहीं रहना चाहिए। परिजनों का मृतक के लिए लगातार रोना पीटना तथा शोक प्रदर्शन करने से उन्हें दुख होता है, उनकी शांति में बाधा पड़ती है। इसलिए उनकी यादों, स्मृतियों, क्रियाकलापों को सदा के लिए संजो कर रखकर हमने उनसे प्रेरणा कर लेनी चाहिए, उनकी शांति की कामना करनी चाहिए। परंतु मृतक के साथ शारीरिक मोह बंधन शीघ्र ही तोड़ लेना चाहिए। यह मानना चाहिए कि उनका रूप अवश्य बदल गया, लेकिन उनका आशीर्वाद सदा हमारे साथ है। परावैज्ञानिकों को अपने अनुसंधानों के दौरान अनेक साक्ष्य मिले हैं, जिससे यह पता चलता है कि तमाम पितरों ने समय समय पर अपने आत्मियों की कठिनाइयों की सहायता की है तथा उसका उचित मार्गदर्शन भी किया है। कहीं यह नज़र नहीं आई, कहीं उनकी आवाज़ सुनाई पड़ी और कहीं यह स्पष्ट आभास हुआ है कि कोई परलौकिक शक्ति हमारी मददगार बनी। प्रसन्न हमारा उनके प्रति श्रद्धा, विश्वास एवं कठिनाइयों में उनका स्मरण करने का है। हमें अपने पितरों के प्रति वैसे ही श्रद्धा भावना रखनी चाहिए जैसे हम प्रभु के प्रति रखते हैं। संसार में सभी धर्मों एवं सभ्यताओं में पितरों के प्रति कर्तव्य पूरा करने को कहा गया है। अनेक धर्मों में अलग अलग रीतियों की पितर पूजन एवं श्राद्ध पर्व धर्म की परंपरा प्रचलित है। पितरों को स्थूल सहायता नहीं परंतु सूक्ष्म भावात्मक सहयोग एवं श्रद्धा मात्र की आवश्यकता होती है, क्योंकि वह सूक्ष्म शरीर में ही रहते हैं तथा प्रसन्न होने पर यह पितर बदलने की प्रेरणा, शक्ति, सहयोग, मार्गदर्शन एवं सफलता प्रदान करते हैं। यही आज का जो संदेश था पितृपक्षों के समय का, यही संदेश रहा। अब हम चाहेंगे कि एक छोटा सा भजन चलाया जाए, जिस प्रकार दूजे की बात मानी जाए, तो आप फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे।

माँ बाप की नज़र में सर को पकड़ के रोके, बहुत ही अच्छा जो भजन था वैदिक नित्य कर्म विधि का, बहुत अच्छा भजन रहा। अब हमारा समय बढ़ता है आगे की ओर, तो संजय जी अब हम लोगों को वही गाना याद आता कि लागे छूटे ना अब तो सनम। जैसे ही मोहम्मद रफ़ी का ये गाना और लता मंगेशकर जी का गाना आता है, सब लोगों को पता चलता है कि हम लोगों का समय अपनी सीमा पे पहुंच चुका है और हम विदा लेने वाले हैं। तो समय तो कभी किसी के लिए रुकता नहीं, विदा तो लेना ही पड़ेगा, क्यों ना वही गाना लागी छूटे ना सनम अब तो सनम चलाया जाए।

0: पुकारे।
1: हाँ, हिंदुस्तानी की रेडियो को सुनने वालों, जैसे कि ये गाना शुरू होता है और हम लोगों का विदा लेने का समय होता है, तो बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं को जिन्होंने हमें इतना प्यार से सुना। और आज के जो कार्यक्रम रहा पितृपक्ष के बारे में, सब लोगों ने सुना, मनन किया, बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली बार इसी दिन इसी समय, तब तक के लिए नमस्कार, यानी सेवक राजेंद्र सिंह का नमस्कार, धन्यवाद।

एहसास मिटा, तलाश मिटा, मिट गया उम्मीदें भी, सब मिट गया, पर जो ना मिट सका वो है याद तेरी। सुने वालों, इसी वाणी के साथ आपको सेविका शांता की प्यार भरी राम राम प्रणाम। आपको एक शुभ दिवस होवे।

0: जीना।
1: जिंदगी छोटी नहीं होती है, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है, बस यही जिंदगी है। दोस्तों, आज का कार्यक्रम यहाँ पर समाप्ति पे आकर पहुँचे हैं। आशा यही है कि कुछ ना कुछ संदेश आपके लिए इसमें जरूर लाभदायक निकले और हम सब अगले सप्ताह कार्यक्रम लेकर फिर उपस्थित रहेंगे। आज के कार्यक्रम में सहयोग देने वाले शांता खेमई जी और सांद्रा जी और हमारे पैनल के पीछे राजेंद्र सिंह जी और मैं हूँ आपका सेवक संजय। नमस्कार कहता हूँ।

0: पंछी कभी अपने बच्चों के भविष्य के लिए घोंसला बनाकर नहीं देते हैं, वे तो बस उन्हें उड़ने की कला सिखाते हैं। सुनने वालों, ये है कार्यक्रम फनकारों की दुनिया, जो यहाँ से हम सब प्रस्तुत करने वाले हैं। सुनने वालों, हमारे साथ ही जो इस कार्यक्रम में सहयोग देते हैं, शांता खेमई जी और बबली आसरा जी, जो इस समय स्टूडियो में उपस्थित है। तो पहले शांता जी अपना एंट्री लेते हैं, फिर बबली जी, फिर कार्यक्रम को हम सब बढ़ाते हैं।
1: हेलो, सुन सुन सुन मेरे जान, जिनका मन का भाव सच्चा होता है, जिनके मन का भाव सच्चा होता है, उनका हर काम अच्छा होता है। आपको स्वागत है फनकारों की दुनिया में।
2: यदि आप गुस्से के एक क्षण में धैर्य रख लेते हैं, तो आप दुख के 100 दिनों से बच सकते हैं।
0: सुनने वालों, आज का कार्यक्रम में जो हम सब रखने वाले हैं कि हमारे कलाकारों का, और जो अपना हम सबको कला से अपना प्रदर्शन दिए, अपना कला से ऐसा ऐसा सुंदर सुंदर रेडियो आज हम सब बना रहे हैं और गीत को छोड़ कर गए हैं। तो शांता जी, इसके बारे में जो आज हमारे पास नहीं है, जो फनकार हमारे साथ नहीं है, जो इन द यार सेस्तक इन द यार फाइव तक के समय पे, तो मदन मोहन एक ऐसा कलाकार जो बहुत सा गीत हम सब का लिए और गाए, गा करके भी अपने और अंदाज में औरों को भी गवाए हैं।
1: यानी कि आज का प्रोग्राम चलेगा मदन मोहन के बारे
0: जी,
1: में।
0: जी, मदन मोहन जो एक सिंगर, एक राइटर, एक जो कंपोजर,
1: प्रोड्यूसर
0: और उन्होंने एक परिवार से जुड़े हुए, और जिनका जन्म इराक में हुआ था ना?
1: जी हाँ, इसे तो हमने पढ़ी है, सुनी है। जी हाँ, इराक में हुआ था उनका जन्म।
0: उनका जन्म इराक में हुआ। और
2: मदन मोहन जी का जन्म 25 जून 1924 को बगदाद में मदन मोहन जी का जन्म हुआ। उनके पिता राय बहादुर चुन्नी लाल इराकी पुलिस में काम करते थे।
0: मदन मोहन का जन्म जब जा करके और 25 जून नेखतीन कितना नेखती फीरन त्वेंतक ना
2: हाँ जी
0: नेखतीन फीरन त्वेंतक में हुआ। सुनने वालों, और जो जा करके और इराक में हुआ था, और अभी नेखती फीरन त्वेंतक में तो इंडिया अभी इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था, यानी कि आज़ादी नहीं हुआ था।
2: जब मदन मोहन जी का जन्म हुआ, तब ना भारत आज़ाद हुआ था अभी, और ना इराक आज़ाद हुआ था।
0: और उसके बाद में जो जा करके आज़ादी हुआ, आज़ादी के बाद में उन्होंने और जा करके भारत में आए कि उससे पहले?
2: ना, आज़ादी के बाद जब इराक आज़ाद हुआ ब्रिटिश से, तब उनके पिता भारत आए।
0: और भारत में गए भी तो एक म्यूजिक स्टूडियो में, यानी कि एक हकदार बन गया म्यूजिक स्टूडियो का ना?
2: ना, म्यूजिक स्टूडियो चलाते थे उनके पिता मदन मोहन जी के।
0: उनके पिता मदन मोहन जी का पिता एक म्यूजिक स्टूडियो चलाए करते थे। पर शांता जी, उस समय कहा जाता है कि एक फिल्म प्रोड्यूसर का मतलब क्या है?
1: वही तो फिल्म के प्रोड्यूसर, तो उसके बारे में मैं डच भाषा में कहना चाहती हूँ, चलेगा?
0: एकदम बिल्कुल बिल्कुल एकदम बिल्कुल हाँ। चलेगा,
1: कारण कि हम सुनते हैं हिंदी में कि प्रोड्यूसर एंग्लिश में भी है, पर उसका महत्व हम नहीं जानते हैं,
0: हम में उसका खासियत नहीं जानते
1: जी। तो हम डच भाषा में कहेंगे कि म्यूजिक प्रोड्यूसेंट इन द म्यूजिक इंडस्ट्री इज अ म्यूजिक प्रोड्यूसेंट दे कॉल्स प्रोड्यूसर खनूम ईमान दी द फरांतवर्दलकहाइट है फन म्यूजिक। और हम देखें आगे में, तब है कि प्रोड्यूसर आज प्रोड्यूसर ओक वेल प्रोडक्सी लेदर खनूम,
0: तो उसका लेदर यानी कि, पर ये बात हो जाता है यानी कि खर्चा जो होता है ना,
1: सभी बागदौर उसके
0: हाथ में हो जाता है।
1: जैसे कि हाँ, जैसे हमने कहा कि ओक वेल प्रोडक्सी लेदर खनूम बे ये हो साकलक बेसक मेथड और खानी सेरन फन ऑडियो विजुअल प्रोडक्सी दी पर्सन सॉरा फॉर voor de benodigde faciliteiten, materialen en mensen. Die persoon is dan ook daarbij zowel organisator als budget- en tijdbewaker.
0: तैयबवाकर तो सुनवालों ये इतने हाँ इतने सारे
1: जिम्मेदारियां
0: हो जाता है एक प्रोड्यूसर
1: जी और हम देखें और आगे में तो हैगा द रोल फॉर अ प्रोड्यूसर फिल्म प्रोड्यूसेंटन सेंड द मेंशन दी द क्वालिटी ऑफ द फिल्म होग हाउडन बहुत बड़ा जिम्मेदारी एंड एयरफोर्स सॉर्गन dat de productie op tijd en binnen het budget verloopt.
0: यानी कि उस पे भी ध्यान देना पड़ता है कि बजट के अंदर अंदर जो हो सके क्योंकि एक फिल्म बनाने के लिए शांता जी बहुत खर्चा होता है ना
1: हाँ इसलिए
0: और एक म्यूजिक गीत उसमें डालने के लिए भी खर्चा होता होंगे
1: इसलिए सब एक टाइम में या कैसे यहाँ कहते हैं डेडलाइन हाँ उसके उसके उससे पहले ये सब हो जाना चाहिए नहीं तो खर्चा और बढ़ जाएगा
0: तो दोस्तों आज का जो विषय है जो आज हम सब रखने वाले हैं कि मदन मोहन जी जो एक ऐसा कलाकार जो हम सब के लिए इतने ढेर सारे और गीत जो बना करके रख चुके रखे कितने तादाद में और उसके जो उनका जन्म हुआ नेखती फिरन त्वेंतक में ना
1: नेखती फिरन त्वेंतक
0: फिल्मी दुनिया में उन्होंने बहुत सा काम कमाया अपना और जो गीत के और रखे पर क्यों ना हम एक
1: वही मैं सोच रही हूँ क्यों ना कि गीत चला दे
0: एक गीत मदन मोहन का कंपोज किया गया
1: जी
0: तो हम रख देते हैं हमारे सभी सुनने वाले को लिए और अभी उसके बारे में और भी संदेश हम सब रखने वाले हैं

0: सुनने वालों, मदन मोहन जी का जन्म 25 जून 1924 बगदाद में हुआ और मृत्यु हुई 14 जुलाई 1975 मुंबई महाराष्ट्र में।
1: जी, जैसे कि आप अभी सुनाए बायोग्राफी जो मदन मोहन का, जो 1924 में जन्म हुआ और 1975 में उनकी स्वर्गवास हो गया, वो इतना अल्प आयु में उसका और यानी कि मृत्यु को प्राप्त किए, कितने साल के थे उस समय?
0: वो 51 साल के थे।
1: तो सुनने वालों, 85 तक यार के आयु में और मदन मोहन जी ने और कितने साल उन्होंने फिल्मी दुनिया में अपना सहयोग दिए, यानी कि जो गीत आदि से वो उन्होंने, क्योंकि ना कि सिर्फ शुरू शुरू में उन्होंने अपना गीत को गाए, फिर उसे वो पसंद नहीं था उसके आवाज़, और फिर उन्होंने फिर जा कर के कलाकारों के माध्यम से, यानी कि जैसे लता जी, मुकेश जी और किशोर कुमार जी, अलग अलग लोगों के साथ और उन्होंने गीत को गवाए ना।
0: हाँ जी, उनका काम करने का समय रहा है 1950 से लेकर 1975 तक।
1: 1950 से लेकर 1975 तक उन्होंने काम किया।
0: वह एक महान गायक और संगीतकार थे।
1: सुनने वालों, तो इस प्रकार से मदन मोहन सहित उनके बारे में हम सब बहुत कम सुने होंगे, बस यही है कि रेडियो द्वारा शायद हम सब और उनका जो गीत चलाते हैं तो उनका नाम बस अर्ज कर लेते हैं ना शांता जी।
0: 1971 में उनको नेशनल फिल्म अवार्ड मिला।
1: कौन सा फिल्म पे उन्होंने और फिल्म अवार्ड को, यानी कि अवार्ड को प्राप्त किए बबली जी?
0: फिल्म दस्तक बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन,
1: बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन का और अवार्ड को प्राप्त किए। शांता जी, आप कुछ सुनाने वाले थे।
2: मैं ये कहना चाहती थी, बबली जी ने कहा कि 1950 यानी 1975 तक से, तो 1975 तक ये कलाकार जो हैं मदन मोहन जी, यानी कि हम भी सोच के बड़े इतने दिन में मैं थोड़ा सा अकाउंट कर ली है कि उनका आयु जो 85 तक यार के था ना, तो लगभग 25 साल वो अपने ये काम की है।
1: जैसे मैंने सुना है शांता जी कि जब वो फिल्मी में आए, क्योंकि पहले जो वो लोग भारत में एंट्री लिए ना, क्योंकि इराक में जन्म हुआ उनकी।
2: हाँ।
1: और भारत में आए तो उनका पिता जो जा कर के फिल्मी दुनिया में और अपना उसमें जा कर के मिल गए, जिसका नाम, उनका पिता का नाम जो राय बहादुर चुन्नी लाल से लोग जानते थे, फिर मदन मोहन को और उन्होंने आदेश दिए कि तुझे मिलिट्री में जाना है, और मिलिट्री में उन्होंने जा कर के अपना काम भी किए। फिर उसके बाद में जो जा कर के वो, उसे गाना का शौक बहुत था और कहा जाता है कि वो कितने घंटों और ग्रामाफोन के पीछे बैठते थे। तो ये ग्रामाफोन है क्या चीज शांता जी?
2: ग्रामाफोन तो मैं अपने दिमाग के अनुसार तो मैं बता सकती हूँ, अगर आपने ये जो आपने तो मैं देख रही हूँ, जैसे प्लेटर स्पेलर इस साइड पे ना, और ऊपर में एक बड़ा सा
1: पिकअप के तरह,
2: पिकअप के हाँ
1: होते थे
2: हाँ, तो उसमें से आवाज निकलते थे, और मेरे ख्याल से उसको भी
1: अपवेंद कर किया जाता था पहले के समय।
0: उसमें एक चाबी होती थी शांता जी, चाबी को वैसे घुमा के तो फिर रिकॉर्ड चलता था।
1: तो इस प्रकार से होते थे सुनने वालों, ऐसा भी होते थे। और उन्होंने कितने घंटों पहले, यानी कि ये गायक बनने से पहले और राइटर बनने से पहले कितने समय तक उन्होंने उसके पीछे बैठे रहते थे। तो बबली जी, आप कुछ और सुनाने वाले हम सबको।
0: मदन मोहन जी हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध संगीतकार हैं। अपनी गज़लों के लिए प्रसिद्ध इस संगीतकार का पूरा नाम मदन मोहन कोहली था। अपने युवावस्था में वह एक सैनिक थे। बाद में संगीत के प्रति अपने झुकाव के कारण ऑल इंडिया रेडियो से जुड़ गए। तलत महमूद तथा लता मंगेशकर से इन्होंने कई यादगार गज़लें गवाईं, जिनमें आपकी नज़रों ने समझा फिल्म अनपढ़ 1962 में गीत शामिल हुआ। इनके मनपसंद गायक मोहम्मद रफ़ी थे। जब ऋषि कपूर और अजीता की फिल्म लैला मजनू बन रही थी तो गायक के रूप में किशोर कुमार का नाम आया, परंतु मदन मोहन जी ने साफ कह दिया कि पर्दे पर मजनू की आवाज़ तो रफ़ी साहब की ही होगी, और अपने मनपसंद गायक मोहम्मद रफ़ी से ही गवाया और लैला मजनू एक बहुत बड़ी म्यूजिकल हिट साबित हुई।
1: बबली जी, लैला मजनू एक दुनिया का और जो बॉलीवुड का एक ऐसा फिल्म हुआ जिनका याद आज तलक अभी तलक किया जाता है।
0: हाँ जी, और उसमें गाने बहुत मशहूर हुए, संगीत भी बहुत हिट हुआ, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को।
1: तो एक गीत वो कोई पत्थर सा, कैसे आपने कहा?
0: कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को।
1: तो हम चला देते हैं।

0: सुनने वालों, ये आपने गीत सुना फिल्म लैला मजनू से, और ये फिल्म इतनी हिट साबित हुई कि रंजीता और ऋषि कपूर की जोड़ी भी हिट हो गई इस फिल्म से।
1: सुनने वालों, यहाँ तक था जो सुंदर सा गीत निकाला गया लैला मजनू से। और शांता जी भी मैं देख रहा हूँ अपना तैयारी कर चुके हैं। शांता जी, आप क्या सुनाने वाले हैं हम सबको?
2: या मदन मोहन के बारे में हम यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं, तो उनके बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि हे बखोन इन बॉलीवुड द वर्कन आस असिस्टेंट फॉर म्यूजिक रेजिस्टर से रामचंद्र एंड क्रेस एंड एस्ट ग्रोथ फिल्म मेट आंखें एंड दैट वेल ऑफ 1950 एंड लिव द द्रीहुक। आंखें फिल्म जो जैसे डिस्क्राइब कर है लिव द द्रीहुक। द फिल्म वाज अनसक्सेस, फिल्म आंखें वाज अनसक्सेस।
1: जैसे कि आप सुन रहे हैं कि पहला फिल्म मदन मोहन का फिल्म आंखें जो 1950 में और बनाया गया
2: जी 1950
1: में बनाया गया।
2: और ये फिल्म जैसे मैंने कहा वाज अनसक्सेस। Vervolgens kwam er behoorlijk wat werk bij Mohanji. Onder zijn eerdere films was de trilogie van films met zijn jeugdvriend Raj Kapoor. Ashiana, film Ashiana in 1952. En Dhoon ook in 1952 en Papi. In 1953. Helaas voor Madan Mohan hadden de films waarvoor hij componeerde niet veel impact. En alleen met Bye Bye 1956, waarin de legendarische gebroeders Kumar, Janik Ashok Kumar, Kishore Kumar in de hoofdrol speelden, kreeg hij enige succes. जी हाँ, इतने फिल्म है तो फिल्म भाई भाई में जाकर फिर से उनको एक सक्सेस मिला है।
1: और शांता जी, जैसे कि मैंने सुना है कि अवार्ड आदि शुरुआत में उन्होंने नहीं पाया ना कोई फिल्म में, वो जाकर के जैसे अभी बबली जी कह रहे थे कि 1951 में पास जाकर के और अवार्ड का हकदार बने। तो हर एक कलाकार का ये इच्छा भी होते हैं कि मेरा कैसे मेरा कार्यक्रम हुआ, कैसा मेरा और जो मैंने अपना प्रोग्राम रखा कितना बढ़िया था, और उन पे जा करके कोई एक पुरस्कार मिल जाता है तो कितना अच्छा भी लगता है ना।
2: वो बात सही है,
1: पर उनको इस बात का था कि वो पुरस्कार नहीं पा रहे थे,
2: फिर भी वो अपना काम जारी रखा।
1: काम भी जारी रखा,
2: हाँ, पुरस्कार के वो इंतजार नहीं की, पर भी अपन काम जारी रखा।
1: इस प्रकार से मैंने एक जो संदेश सुने हैं लता जी का, और उन्होंने अपने ओर से संदेश रखे थे, क्यों ना हम अपने सुनने वालों को उसके अंतर्गत सुनाते हैं।
3: बड़े खुददार थे मदन भैया, अपने आदर्शों को वो किसी के सामने न झुकने देते थे न दबने देते थे। वो कौन थी कि गीतों की सफलता पर मुमकिन था कि उन्हें एक बहुत बड़ा अवार्ड मिले, वो अवार्ड मदन भैया को नहीं मिला। और ना मिलने पर जब मैंने अफसोस जाहिर किया तो वो कहने लगे, मेरे लिए ये क्या कम अवार्ड है कि तुम्हें अफसोस हुआ।

0: सुनने वालों, लता मंगेशकर जी को अपनी बहन बनाया था मदन मोहन जी ने। लता और मदन मोहन के रिश्ते के जुड़ने की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। उस दिन रक्षाबंधन था। मदन मोहन जी इस बात से बेहद दुखी थे कि उनकी पहली फिल्म में लता मंगेशकर जी ने कोई गाना नहीं गाया। मदन मोहन लता मंगेशकर जी को अपने घर ले आए और एक राखी देते हुए कहा, आज राखी है, इसे मेरी कलाई पर बांध दो। इसके बाद मदन मोहन जी ने लता जी को याद दिलाते हुए कहा, जब हम पहली बार मिले थे तब हमने भाई बहन का एक ही गीत गाया था, आज से तुम मेरी छोटी बहन और मैं तुम्हारा मदन भैया। मैं वचन देता हूँ आज से तुम अपने भाई की हर फिल्म में गाना गाओगी। सुनने वालों, मदन मोहन जी के मरने के बाद लता जी ने वो वादा निभाया। यतीन्द्र नाथ मिश्र ने अपनी लिखी किताब लता सुर गाथा में इस वाक्य का जिक्र किया है कि लता ने भाई मदन मोहन की मौत के बाद भी उनसे किया हुआ वादा पूरा किया था। दरअसल साल 2004 में फिल्म वीर ज़ारा में मदन मोहन के कॉम्पोजिशन का इस्तेमाल किया गया। तब फिल्म के सारे गाने लता मंगेशकर ने गाए थे और हर बार की तरह भाई बहन की इस जोड़ी ने कल्याण जी गीतों की रचना कर दी।
1: फिल्म जो वीर ज़ारा में और जाकर के और उन्होंने ये गीत को गाए, तो बबली जी ये बात हो जाता है कि वीर ज़ारा बना नेहती फैंस एवं तक में जब मदन मोहन का मृत्यु हो गया तो वीर ज़ारा तो त्वे दोयसंत फिर में बनाया गया, यानी कि कुछ 30 साल बाद।
0: क्योंकि मदन मोहन जी ने कुछ ऐसी धुनें तैयार करके रखी थी जो 30 साल बाद उनके बेटे ने फिल्म वीर ज़ारा में इस्तेमाल की।
1: तो सुनने वालों, एक कार्यक्रम में जो हमारे फनकारों की दुनिया में आज रखा जाता है कि 30 साल बाद, यानी कि इस प्रकार से हमारा भाई महेंद्र गुदर भी यहाँ होते थे स्टूडियो में और वो भी कितने गीत को चलाए जो यहाँ से चलाया जाता था कि जो कोई फिल्म में नहीं प्रयोग हुआ था। और इसी प्रकार से आज जैसे आप कह रहे हैं कि 30 साल बाद वीर ज़ारा में उनका कंपोज किया गया गीतों को और जाके उसी का धुन में और जा करके रखा गया, और ख़ास करके उस समय जबकि लता मंगेशकर का और देहांत त्वे दोयसंत त्वेन त्वेंतक में हो गई है ना, त्वे दोयसंत त्वेन त्वेंतक में वो और मृत्यु को प्राप्त कर लिए और फिर भी त्वे दोयसंत फिर में वो जा करके और जो 30 साल पुराना बनाया गया यानी कि लिखा रहा उसे प्रयोग नहीं किया गया था और वीर ज़ारा फिल्म में जा कर के प्रयोग किया गया उसी धुन पे, और उसमें ना सिर्फ लता जी ने अपना आवाज़ दिए पर सोनू निगम और भी कलाकारों ने अपना आवाज़ दिए ना।
0: हाँ जी, उदित नारायण
1: के सिवा और भी कुछ
0: रूप कुमार राठौर
1: जी भी अपना आवाज दिए, पर सभी का धुन, क्योंकि एक बात होता है ना,
0: गुरदास मान जी भी
1: अपना और संदेश उसमें अपना और कला से प्रदर्शन दिए, पर यह बात हो जाता कि कलाकारों जो राइटर होते हैं ना, जो गीत को लिखते हैं, तो वो धुन भी उसी का होता है। हमारे जो गायक होते हैं जो अपना आलाप देते हैं उसमें, तो वो तो सिर्फ गीत गाते हैं। और शांता जी, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है?
2: उनके बारे में कहना भी मुश्किल, क्योंकि गला होना चाहिए और उसमें गाना गाने में भी एक कला है।
1: हाँ। जरूर उसका आवाज़ सुनाई दिया जाता है, पर उसके पीछे में जो काम होते, जो राइटर होते, जो गीत को लिखते हैं, गीत को धुन देते हैं, उसके बारे में हम सब बहुत कम जानते हैं, ऐसा है कि ना?
2: ये बात तो सही कहा आपने, हाँ बिल्कुल सच है ये।
1: जो बिल्कुल उतना काम होने पे और बस गायक जिसके पास वो कला होता है, उसके पास आवाज़ होते हैं और वो उसी धुन पे चला देते हो, कितना रंगीला हो जाता है, कितना सुरीला हो जाता है, हमारे कानों को इतना अच्छा लगता है सुनने में ना।
2: बिल्कुल जी हाँ, आप सुनते हैं फनकार की दुनिया। तो यहाँ हम प्रोग्राम बनाते हैं मदन मोहन जी के बारे में, और यहाँ पे भी कुछ लाइन मदन मोहन जी अपने आवाज़ में कुछ गाकर भी सुनाएंगे, साथ में लता जी भी रहेगा, तो यहाँ से ज़रूर से आप उस पर गौर करें और ज़रूर से आनंद उठाए।
3: मैं इसे अपना सौभाग्य समझता हूँ कि बहुत अरसे के बाद आज फिर आपसे मुलाकात हो रही है। जो गीत मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ वो सब सुरीले हैं, हिंदुस्तानी हैं और जज्बाती हैं। मैं ये समझता हूँ कि हर फनकार का जज्बाती होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसमें इंसानियत का जज्बा नहीं है तो वो सही फनकार नहीं हो सकता।
4: एक याद दिलो दिमाग पर यूं छाई हुई है जैसे कल की बात है। 1948 में मास्टर गुलाम हैदर साहब ने मुझे एक गाना रिकॉर्ड करने के लिए बुलाया। मेरे साथ जो साहब गाने वाले थे उनका नाम था मदन मोहन। ये भी पता चला कि वो फिल्मिस्तान के मालिक राय बहादुर चुनीलाल जी के बेटे थे। भाई और बहन का गीत था। रिकॉर्डिंग के बाद मैंने खुश होकर मदन मोहन से कहा, आप बहुत अच्छा गए। बोले, हाँ ठीक रहा, वैसे मैं म्यूजिक डायरेक्शन शुरू कर रहा हूँ, आप इस फिल्म में जरूर गाइएगा। म्यूजिक डायरेक्टर की हैसियत से उनकी पहली फिल्म थी।

0: उस समय किसी कारणवश मैं उस फिल्म में नहीं गा सकी। मदन मोहन इस बात पर बहुत दुखी हो गए, मुझे घर ले गए। बोले, पहली बार जब हम मिले थे तो हमने भाई बहन का गीत मिलकर गाया था, आज से तुम मेरी बहन और मैं तुम्हारा मदन भैया। उस दिन से आखिरी दिन तक मदन भैया ने राखी के बंधन को यूं निभाया जैसे वो सगे भाई थे।
1: मदन भैया के लिए मैंने कई फिल्मों में गाया, इब्तिदा आशियाना की

0: jaren 50 में 60 और 70 में ये मदन मोहन जी अपने साज और संगीत के साथ हमारे खातिर बहुत से गाने बनाए हैं, फिल्म बनाई है। और यार 50 तो 60 उतना नहीं चला, बल्कि 60 से तो 57 जब तक ये रहा बहुत चला इनका गीत। पर नेखन 57 तक 1975 में इनका ध्यान भी हो गए हैं। इन 50 यार खलीफ देत स्टीरफ मोहन जी आन लेफर सिरोस इरोनिस, या लेफर सिरोस यानी कि लेफर की बीमारी से इनका ध्यान हो गया।
1: शांता जी, जैसे कि सुना है मैंने कि उसे उस समय पे बड़े बड़े फिल्मों में, उस समय क्योंकि वे फिल्में बन रहा था तो राज कपूर का समय था, देवानंद का समय था, तो सबका अपना अपना और ग्रुप बन गया था। पर इन सभी में क्या ऐसा नहीं लिखा गया कि मदन मोहन जी ने खास इस सब से जुड़े हुए थे, ये अपना अपार्थ रहे पर सभी फिल्मों में ये अपना सहयोग दिए गए ऐसा?
0: हाँ, जैसे कहते हैं ना बैकग्राउंड में रहा पर भी जैसे फंडेरिंग था फिल्म का, और ये कलाकार लोग के एक फंडेरिंग था, तो ऐसे ही आगे बढ़ा। और सिर्फ राजकुमार जी जुड़े नहीं थे, हम भी जुड़े थे उन दिनों में। मुझे भी बहुत अच्छा लगता, आज भी अच्छा लगता है वो सब फिल्म देखने के लिए, राज कपूर के और देवानंद जी का, और उनका गाना जो है तो रोंगटे खड़ा हो जाता है।
1: बिल्कुल सच कह रहे हो, क्योंकि शुरू शुरू में जब मदन मोहन जी का और जो एंट्री लिए ना फिल्मी दुनिया में, तो एस डी बर्मन के साथ और श्याम सुंदर के साथ उन्होंने असिस्टेंट काम किए। फिर उसके बाद में अपना काम जब प्रारंभ किया तो कितने ढेर सारे और गीतों को बनाए, गीतों को कंपोज किए और जाकर के फिल्मों में रखे। पहले हम सब जब एलपी मिलते थे ना हर एक फिल्म में, उसमें एक फोटो रखे जाते थे कि ये लता का और मदन मोहन का, तो हमें अभी वो ख्याल आता है कि मुझे ये नहीं पता था ये किसका है ये फिल्म में कभी। मुझे तो लगता था कि जैसे कि अभी आपने हम सबको शुरुआत में बताए सुनाए,
0: जिम्मेदारियां
1: होता है प्रोड्यूसर का, और इस प्रकार से सॉन्ग डायरेक्टर का फोटो भी रखा जाता था जो एलपी के हुस पे, क्योंकि हर एक फिल्म में कितने ढेर सारे गाने होते थे।
0: पर कितने अच्छे से तुमने कहा ना कि ये लता जी के और ये फिल्म जो फिल्म जो फिल्म का ये गीत चलता था, तो जो खिलाड़ी उसमें था उनका पिक्चर तो यानी फोटो के तो बहुत बड़ा बड़ा दिखते थे, और जो हाल के बहुत ज्यादा उसमें काम किया तो उनका फोटो बहुत छोटे थे,
1: एक छोटा सा फोटो। बिल्कुल, सुनने वालों इस बात को शायद आपको सुन को भी ख्याल आता होगा, और जरूर अगर आपके पास जो अभी प्लाट क्या कहते थे उसे एलपी और सिंगल हो तो जरा उस पे और कोशिश करके देख लेना, क्योंकि ये बस चंद दिनों तक देख सकते हैं आप।
0: और एलपी और
1: सिंगल होते थे,
0: सिंगल उससे पहले भी एक था,
1: एक हाँ जो ये था, एक था 45 तक, एक था 78 तक, और उससे पहले एक और था पर उसका नाम नहीं पता मुझे,
0: मेरे को पता नहीं, पर
1: हमारे सुनने वालों को शायद पता होगा जो उस समय अपने घर से जो पुराना कुछ, क्योंकि वो दीप लात वाला इट्स देकर है
0: क्लॉथ, या और हम लोग के पास भी था घर पे,
1: तो सो मात्रा। हाँ, तो वो कौन सा साइज रहा ये भी नहीं पता मुझे, एई पे ही था ना,
0: इसने कुछ है पता ना उतना ठीक से।
1: मुझे भी नहीं पता। हाँ, शांता जी यो, क्योंकि आप एक ही नाराजी और
0: हाँ, तो उसके बाद तक कैसेट आए तो फिर सीधे आए, अब तो यहाँ यूट्यूब पर ये जो चाहते हैं देख लेते हैं। पर यूट्यूब पे ऐसा भी है कि अगर वो सब गीत जो है वो डाउनलोड करके नहीं रखेगा तो आप भी नहीं सुन पाओगे, तो हमको भी शुक्रगुजार करना चाहिए कि वो सब जो डाउनलोड करके और रख देते हैं हमारे खात आसान कर देते हैं,
1: तो हम लोग के भी आसान हो जाता है कि हम लोग कंप्यूटर पे और नाम रखते हैं और उसका गीत हम सबको सुनने को प्राप्त हो जाता है। सुनने वालों कार्यक्रम आगे बढ़ाते हूँ, और बबली जी कुछ कहने वाले नहीं, शांता जी आप जो आपका संदेश पूरा हो गया,
0: पूरा तो नहीं हुआ है, पर मैं कहना चाहती थी कि जब आपको पता है कि कोई के जन्म भी होता है तो मृत्यु भी हो जाता है, पर ऐसा भी होता है कि अच्छे अच्छे लोग और दिन भी रहते तो कितना अच्छा होता, पर क्या करें,
1: समय का खेल निराला है।
0: वही तो मैं यह कहना चाहती कि कैसे बता रही थी कि मदन मोहन जी की मृत्यु कैसे हुआ और कहाँ पर कैसे हुआ। तो जैसे हमने कहा इन नेखन तीन फैफ से तक ऑप इन फैफ तक यार लेफ तेत स्थिर मोहन अन लेफन सीरोस।
1: तो ये लेफर का कुछ, क्योंकि उसके बारे में बताया गया है कि वो शराब का भी शिकार हो गए थे ना, तो शराब पीने से लोग कहते हैं कि लेफर ख़राब हो जाता है। और एक फिल्म भी बनाया गया था जिसमें अमिताभ बच्चन बार बार ये शिकार करते हैं, कौन सा फिल्म में था?
0: मेरे ख्याल से सत्य पे सत्ता।
1: हाँ, सत्य पे सत्ता में, तो उसमें ये संदेश रखता है अमिताभ बच्चन की दारू पीने से लेवड़ खराब हो जाता है,
0: बहुत ज्यादा दारू पीने से लेवड़ खराब हो जाता है।
1: सही बात, आपने पूरा डायलॉग सुना दिए और सुनने वालों यही बात हुआ कि शायद मदन मोहन जो एक सोनखरौत आर्टिस्ट जो जा करके और उसका मृत्यु जो एन फाइव तक यार पे हो गई है, पर फिर भी आज तक दुनिया के हर एक देशों में उनका गीतों को सुना जाता है। बबली जी भी कुछ रखने वाले हैं।
2: मदन मोहन जी संगीत की दुनिया के बेताज बादशाह रहे। गायिका बेगम अख्तर जी कहती हैं, बेगम अख्तर जी की गज़ल गायन का प्रभाव भी मदन मोहन जी की बंदिशों में सुनने को मिलता है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि मदन मोहन जैसी गज़लों की रचना करने में कोई फिल्म संगीतकार सफल नहीं हुआ है। मदन मोहन की कुछ लाजवाब गज़लें हैं, उनको ये शिकायत है कि हम कुछ नहीं कहते। आज सोचा तो आंसू भर आए, आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, इसी में प्यार की आरजू और हम प्यार में जलने वालों को चैन कहाँ आराम कहाँ प्रमुख हैं।
0: जिंदगी जीना एक कला है, जिसने ये कला सीख लिया वो जिंदगी जीत लिया। सुने वालों, आपने सुन रहे थे फंकारों की दुनिया। स्वीकार कीजिए शांता की, नमस्कार।

नेक लोगों की संगत से हमेशा भलाई मिलती है, क्योंकि हवा जब फूलों से गुजरती है तो वो भी खुशबूदार हो जाती है। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार।

किस्मत मौका देती है लेकिन मेहनत सबको चौंका देती है। सुनने वालों, यहाँ तलक जो कार्यक्रम फनकारों की दुनिया हम सब आपके लिए रखे, हमारे साथ दिए बबली आसरा जी और शांता खेमाई जी, मैं हूँ आपका सेवक संजय और आशा ये रखता हूँ कि जरूर इस कार्यक्रम को सुनकर आपको जरूर अच्छा लगा होगा। हम फिर मिलेंगे, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे ये कैसी मुलाकात है, मैं किस कुमार में हूँ। कुमार सानू के साथ में अलका याग्निक मिलकर आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी आ अब लौट चले। मैं चाहता हूँ तुझको दिल जान की तरह, फ्रॉम द मूवी प्यार जिंदगी है। अभिजीत और अलका याग्निक मिलकर आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे मैं चाहता हूँ तुझको दिलो जान की तरह। अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं वो है दिलबर दिलबर फ्रॉम द मूवी सिर्फ तुम, और आपको सुनाने वाले हैं अलका याग्निक जी।

अभी आप सुन रहे थे दिलबर दिलबर अलका याग्निक, आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी सिर्फ तुम। फिल्म का नाम है मुझे कुछ कहना है, गीत का बोल है दुपट्टा मेरा। अनुराधा श्रीराम जी आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे दुपट्टा मेरा, और इस गीत के बाद ये सॉन्ग हम पेश करते हैं फ्रॉम द मूवी धड़कन से। आप सुनेंगे नाना करते प्यार तुम्हें से घर गई।

फ्रॉम द मूवी धड़कन से हमने पेश की है। वही आप सुन रहे थे उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में। निकम्मा किया इस दिल ने, फिल्म का नाम है क्या दिल ने कहा।

शान और संजीवनी भी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी क्या दिल ने कहा। इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं निकम्मा किया इस दिल ने किया है निकम्मा। शैली जी जब कभी ये प्रोग्राम को सुन रहे हैं तो ये गीत हम पेश करते हैं शैली के वास्ते, झांझरिया उसकी खनक गई। अलका याग्निक आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी कृष्णा से।

अभी आप सुन रहे थे झांझरिया मेरी छनक गई, और ये गीत हमने पेश किए थे शिरली के वास्ते, जबकि शिरली भी ये प्रोग्राम को सुन रही है। बांध मेरे पैरों में पायलिया,

अभी आप सुन रहे थे बांध मेरे पैरों में पायलिया। हैया हो क्या मस्ती, ये सॉन्ग हो जाए आप सभी के वास्ते। चलिए मिलकर सुनते हैं अलका याग्निक और कुमार सानू के साथ में उदित नारायण आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी अलबेला से आप सुनेंगे।

फ्रॉम द मूवी इंडियन से हमने पेश किए हैं जाना तुझे जाना, तो जाना मैंने ये। अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं वो गीत का बोल है ये समा ये नज़ारे, बाबू सुप्रियो और अनुराधा पौडवाल जी आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे ये समा ये नज़ारे, बाबू सुप्रियो और अनुराधा पौडवाल जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी ढाई अक्षर प्रेम की। सरासा हम देखे तो मैं आप सभी से कुछ कहना चाहूँगी और वो ये है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि सुकून के लिए किसी दवा की नहीं बल्कि लफ्ज़ों की ज़रूरत होती है। ये हवाएं सूफ में तेरी गुम हो जाए, अलका याग्निक और शान आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी बस इतना सा ख्वाब है।

फ्रॉम द मूवी बस इतना सा। हाँ है, अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक और शान की आवाज में। पानी से तस्वीर कहाँ बनती है, ख्वाबों से तकदीर कहाँ बनती है। किसी भी रिश्ते को सच्चे दिल से निभाओ, क्योंकि ये जिंदगी फिर वापस कहाँ मिलती है। कौन किसी से चाह कर दूर होता है, हर कोई अपने हालातों से मजबूर होता है। हम तो बस इतना जानते हैं, हर रिश्ता मोती और हर दोस्त कोई नूर की तरह होता है। फ्रॉम द मूवी क्यों हो गया ना, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं आओ ना, उदित नारायण आपको सुनाने वाले हैं। चलिए मिलकर सुनते हैं उदित नारायण के साथ में साधना सरगम जी।

अभी आप सुन रहे थे आओ ना। नसीब के खेल भी अजीब होते हैं, सच्चे दिल वालों को आंसू ही नसीब होते हैं। कौन चाहता है अपनों से दूर होना, पर अक्सर छूट जाते हैं जो करीब होते हैं। अब तेरे दिल में हम आ गए तो, फ्रॉम द मूवी आरसू से आप सुनेंगे कुमार सानू के साथ में अलका याग्निक आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे अब तेरे दिल में हम आ गए, तो अलका याग्निक और कुमार शानू आपको सुनाने वाले थे। फ्रॉम द मूवी आरजू से हमने पेश किए हैं। कसूर तो बहुत किए थे जिंदगी में, कसूर तो बहुत किए थे जिंदगी में, लेकिन सदा यानी लेकिन सजा भी वहाँ मिली जहाँ बेकसूर थे हम। उदित नारायण और अलका याग्निक आपको सुनाने वाले हैं। आ कहीं दूर चले जाए हम, फ्रॉम द मूवी लावारिस से हम पेश करते हैं।

अभी आप सुन रहे थे आ कहीं दूर चले जाएं हम, फ्रॉम द मूवी लवारिस से हमने पेश किए हैं। अवकाय याग्निक के साथ में उदित नारायण जी आपको सुनाने वाले थे। अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं वो है फ्रॉम द मूवी सलामी से। आप सुनेंगे चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर कर देखो ना।

अभी आप सुन रहे थे चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर कर देखो ना। क्यों उदास है ऐ इंसान, तुझे वही मिलेगा जो तेरे लिए बेहतर होगा। हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम, द टाइटल आप सुनेंगे फ्रॉम द मूवी हम तुम्हारे हैं सनम।

अभी आप सुन रहे थे गुलाबी साड़ी फ्रॉम द मूवी धमाल, तो से हमने पेश किए हैं। जरा सा हम देखें तो ये सुंदर सा गीत हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते। तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं,

अभी आप सुन रहे थे गुड़िया चुराना मेरा जिया। धमाल फोर से हम पेश करते हैं इसी फिल्म से फुलौरी बिना चटनी, चलो ये भी हो जाए।

0: अभी आप सुन रहे थे फुलौरी बिना चटनी कैसे बनी, फ्रॉम द मूवी धमाल फोर से हमने पेश किए हैं। श्री तू है फिल्म का नाम, इसी फिल्म से ये सॉन्ग हो जाए आप सभी के वास्ते।
1: वो नहीं आने वाले, वो बेवफा

फ्रॉम द मूवी स्त्री टू से हमने पेश किए हैं। अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं वो ये है, सावन में लग गई आग।

From the movie Ginny with Sunny, इसी फिल्म से हमने पेश किए है सावन में लग गई आग दिल में रहा है। श्रीतु है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से आप सुनेंगे आज की रात।

फ्रॉम द मूवी स्त्री तो से हमने पेश किए है आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए। धमाल फॉर इसी फिल्म से एक और गीत हम चलाएंगे आप सभी के वास्ते, पैसा लाओ।

फ्रॉम द मूवी धमाल 4 से हमने पेश किए हैं बैसलाव, पति पत्नी और वो है फिल्म का नाम। और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं रूप दीरानी

अभी आप सुन रहे थे रूप दी रानी फ्रॉम द मूवी पति पत्नी और वो तुम ही हो बंधु। हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते फ्रॉम द मूवी कॉकटेल से आप सुनेंगे।

अभी आप सुन रहे थे तुम ही हो बंधु सखा तुम ही, फ्रॉम द मूवी कॉकटेल से हमने पेश किए हैं। अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं वो है दिल्ली से दिल तक।

अभी आप सुन रहे थे दिल्ली से दिल तक, ये सॉन्ग हमने पेश किए हैं आप सभी के वास्ते। रुत्वी पांडे की आवाज़ में हम पेश करते हैं घाघरों।

अभी आप सुन रहे थे घाघरो ऋत्वी पांडे की आवाज़ में इश्क से आगे ये न्यू सॉन्ग हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते।

वाह क्या बात है, लता जी अपनी आवाज़ में आपको सुना है, इसे चिन्ह नहीं गावे। बहरहाल वाह क्या लता जी, जापान पहुंच गए। चलिए वाह वापस जापान से लौटते हैं, और लौटते हैं कहाँ, कुमार सानू के पास। चलिए कुमार सानू आपको क्या सुना रहा है। कभी हाँ कभी ना फिल्म का नाम है। हाँ प्यार में तो होता है, कभी हाँ होता है कभी ना होती है। तो हाँ और ना के ये सिलसिला हम आपको सुनाते हैं, और कुमार सानू आपको गाकर सुनाता है।

ऐ काश के हम होश में अब आने ना पाए, फिल्म का नाम है फिल्म कभी हाँ कभी ना, में से निकाल कर हम आपको सुनाए। चलिए राज कपूर, ये फिल्म तो आपने अवश्य देखे होंगे, ये फिल्म बहुत चला बहुत चला, कौन है जो ये फिल्म नहीं देखा होगा। तो आप सोच रहे हो गंगा कौन सा गीत है, तो चलो अब आपको सुनाते हैं।

अच्छा मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए ये गीत कि हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, लेकिन उसके बाद मैं तो मुकेश भी क्या कह रहा है जहाँ कि उन्हें प्यार से कोई मतलब नहीं है। जी हाँ, कोई मतलब नहीं है। तो सुनिए मैं तो मुकेश।

मैं थी मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस, आपको सुनाए है फिल्म कन्हैया में से निकाल कर हम ये शानदार गीत पेश किए हैं ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। लेकिन सुन सोनू निगम बैठकर मुकेश जी के गीत सुन रहा था और वो कहता है कि अरे मुकेश जी, उन्हें तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है प्यार करने में, तो क्या ख्याल है।

वाह क्या बात है, अलका याग्निक के साथ कुमार सानू ये शानदार गीत पेश किए हैं फान हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। जबकि आप चून हैं, आप जहां भी होंगे कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपका हृदय से स्वागत है। चलिए हम आपको ये गीत सुनाते हैं। एक म्यूजिक डायरेक्टर है, वो गायक भी हैं, म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं यानी सिंगर भी हैं और कोरियोग्राफर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं। हाँ तो आप सोच रहे होंगे वो कौन शख्स है, चलिए उनकी आवाज़ हम आपको सुनाते हैं। वो है म्यूजिक डायरेक्टर आनंद राज आनंद। आनंद राज आनंद चलिए आपको सुना रहा है ये गीत।

सदा। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपना संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। हरिओम। एक ही दम भैया बीरबल के स्टाइल में कैसे रह लो आप लोग साथियों, हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज का दुनिया के दोस्तों, स्वीकार कीजिए हम लोगों का सागर से भरा हुआ प्यार नमस्कार और साथ ही साथ कबूल हो फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का मोहब्बत से भरी हुई सलाम को, और आप सभी को भी हरिओम हरिबोल सत श्री अकाल। मैं हूँ आप लोगों का सेवक खिदमतगार सुरेंद्र कृष्णा दत्त भगवान दीन, जिसे आप ढेर सारे श्रोता गुना आकाशवाणी के दोस्तों भैया बीरबल के नाम से भी जानते हैं। बुधवार का रात्रि का प्रोग्राम गीत और गजल और इस गोद कलंक में संगीतकार का दास्तान नामक कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुआ हूँ। साथ ये उम्मीद लेकर कि आज का सिलेक्शन भी आप सभी को पसंद आएगा। तो जहाँ पर भी हो, जिस हाल में हो, घर पे हो या टमोटर कार में सफर कर रहे हो या काम कर रहे हो, दुनिया के जो भी कोने में ये कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का, ढेर सारा प्यार दुलार प्रेम और मोहब्बत आप सभी तक पहुँचे। हमारे फूल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक शुभ रात्रि पेश है मैं ढील फील लजर प्लेजीर के साथ। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो इस तबलेश्तरफिया इंटरनेट के लहरों द्वारा फाउन FM.NL पर आप लोग दुनिया के छोटे छोटे कोने में भी 24 घंटे रोजाना लगातार फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुन सकते हो। जो भी रेडियो का काम है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना चाहते हो साथियों, तो जरूर आप ये टेलीफोन नंबर को नोट कीजिए, आज नहीं तो कल जरूर आपके काम आएगा। कम तोर 07-3-26-20-27-40 और स्टूडियो के तार का नंबर है 07-3-26-20-77। क्वालिटी गारंटी और सर्विस के साथ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो काम आप लोगों के लिए बेचैनी से करने के लिए इंतजार में रहते हैं साथियों। एंड नीट फरगेट है ऑन्स क्वालिटी इज ऑलवेज योर गारंटी एंड नेचुरली नेचुरली नेचुरली फूड से सेक ऑलवेज लेकरदर bij Fahon Hindustani Radio, toch? Dan zijn we hier op zondag een katiesender programma kusun rehet hee, joh haaskar ke barka bhaiya, the one and only maestro Chandrasen Gangaji ne aap sultaon ke sewa mein pesh kiya. जिस तौर तरीके से भाई गंगा जी आप सभी को सदियों से सेवा करते आ रहा है, ये अश्वमीर है हमारे फूल टीम की तरफ से कि उनका पेश किया हुआ प्रोग्राम जो काफ़ी जबरदस्त सा आप सभी को जरूर पसंद आया हुआ होगा। आज के लिए तय दिल से धन्यवाद भाई गंगा जी, और आपको भी हमारे फूल टीम की तरफ से एक शुभ रात्रि। हो सकता है कि आपके घर पे एक जश्न मनाया जा रहा है, हो सकता है कि आपके घर पे एक बेटा या तो एक बेटी ने जन्म लिया होगा, या तो किसी के जन्मदिन आप सभी धूमधाम से मिलकर मना रहे हैं। अतकानो दत्त कि आप विवाह संस्कार की तैयारियां में लगे हो, जो भी खुशी के दिन आप सभी मना रहे हैं, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के फूल टीम की तरफ से आप सभी को ढेर सारे बधाइयां ही बधाइयां, खुशियां ही खुशियां, प्यार मोहब्बत के साथ पेश है। और परम पिता परमेश्वर से हम सब मिलकर विनती दुआ करते हैं कि आप सभी के नेक मनोकामनाएं नेक इरादे पूर्ण होते जाए। आपके घर पे एक दुख का घड़ियान पड़ा है, आप एक मातम में हो गमी में, तो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो अपने फूल टीम के साथ आपके दुख में उपस्थित है, मातम में शरीक है। और परम पिता परमेश्वर से हम सब मिलकर विनती दुआ करते हैं कि आप सभी को सहन शक्ति और शांति प्रदान करते रहे। जो बीमार लाचार है आपकी तंदुरुस्ती के लिए हम सब मिलकर विनती दुआ करते हैं कि आप जल्द से जल्द तंदुरुस्त हो जाए, बेहतर हो जाए, चंगा हो जाए। नित्य फिर खेत है बंधु, जिंदगी का मजा रोजाना लेते रहना। वंट हैथ लीफ ड्यूट ओसो कॉर्ट एंड फाउन हिंदुस्तानी रेडियो को भी सुनते रहना। फनार्थ बेहतर कामयाब हुए तो हमारे फूल टीम की तरफ से तहे दिल से बधाइयां ही बधाइयां। और हो सकता है बंधु कि आप कल आज या परसों कामयाब नहीं हुए हो, तो चिंता के कोई बात नहीं है, मोरखे स्वेर दख दिन पे दिन अपने आप पर विश्वास भरोसा यकीन सेल्फ थोड़ा और जोर से बढ़ाते रहना, और साथ ही साथ कोशिश भी जारी रखना। तो हो सकता है ना कि कामयाबी भी
जल्द से जल्द दौड़ दौड़ कर आपके कदमों को भी चूम सकते हैं बंधु। देखो मेहनत तो है दौलत का यारी ना, नोट ओ तो घरे स्कूल तमुआ पे ओ फराल खरेर नेफर गिफ ब्रदर लंगा सीसा ससलो बिलो बी ऑन ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू एंड नेटुरली बदंत फॉर हेट लाइस्ट्रन। दिस में प्रवेश हुए तो हमारे फुल टीम की तरफ से सुस्वागतम। फेन वकांसी गेनीट ervan nog een paar dagen, dan is het warm weer ook weer voorbij hè. और हो सकता है कि आप देश को छोड़ के विदेश यात्रा पे जा रहे हो अब सुख न मेर वारंत, तो आपको भी एक शुभ यात्रा हमारे फुल टीम की तरफ से। फैन वकांसी तमाम लोग सुनते हैं फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो को। फैन वकांसी एड्रेस इंटरनेट के लहर द्वारा ओपन टैबलेट स्मार्टफोन ऑफ लैपटॉप, तो आप भी सुनिए हम लोगों को शुभ बनती एंड ब्लाइफ टी फन ऑल ऑफ द होते हैं फन यू फेवरेट रेडियो स्टेशन एंड दस दट इज नैचुरली हमारे धन हाँ शेयर का द वन एंड ओनली फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो 24 आवर्स एट योर सर्विस। तो साथियों प्रोग्राम का शुरुआत तो सदियों से मैं करते आ रहा हूँ वही शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान के साथ। एडियो फिल्म ललकार निगेटिंग टू इन सेफ अंत कंपोज बाय द ब्रदर्स कल्याण जी आनंद जी और हमेशा की तरह आप सभी को सुनाने को जा रहे हैं सुरों का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी पद्म श्री मोहम्मद रफी साहब जी की। आज गालो मुस्कुरालो महफिल सजा लो, क्या जाने कल कोई साथी छूट जाएगा जीवन के डोर। तो बड़े कमजोर है यारो, ये कब टूट जाएगा ये कब समाप्त हो जाएगा ये तो सिर्फ ऊपर वाले को मालूम है ना। इसलिए हम लोग तो आप सभी से सदियों से यहाँ से कहते रहते हैं और सदा कहते ही रहेंगे ना कि हैव टू नास्ट ऑल दैट लीव डारफुर सेवे मेंस ने कांधे से कांधे भिड़ाकर लगाकर आगे को बढ़ना है यारो, खुद को आगे को बढ़ाना है, देश को भी आगे को बढ़ाना है, कौम को भी आगे को बढ़ाना है। तो इस शिक्षा सबक से भरा हुआ बयान के बाद आप सुनेंगे साप्ताहिक प्रोग्राम कुछ पुराने नगमे कुछ बहुत ही शिक्षा और सबक से भरा हुआ नगमे भी है और बीच में कुछ ज्ञान के बातें शेर शायरी भी है। तो कुल मिलाकर हमारा और आपका साथ तकरीबन 10:30 रात्रि तक चलेगा साथियों। तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना मजे लेते रहना। अंत है लीफ ड्यूट ओसो कॉर्ट है रफी साहब।

0: अब आईना पूछता है मुझसे,
1: किसके लिए भागे थे?
0: मैं चुप रहता हूं,
1: क्योंकि जिनके लिए भागे थे
0: वो अपने रास्ते चले गए।

क्या बात है, दिल को छू लेने वाला नगमा, इतना सच्चाई और शिक्षा से भरा हुआ ये बयान आप श्रोताओं के सामने पेश किया गया। और ये भी खास करके द ग्रेट गजल सिंह यानी जगजीत सिंह जी के याद में, मेट विद आई एआई टेक्नोलॉजी। अगला बयान एक जबरदस्त सॉन्ग है, लाखों करोड़ों का दिल चुराने वाला, द हार्टथ्रब ऑफ मिलियंस, द माइटी मुकेश जी के ब्यूटीफुल आवाज में आप सुनेंगे। फिल्म अंजाम 1968, साथ दे रही है मुकेश जी का द नाइटिंगेल सुमन कल्याणपुर जी, संगीतकार गणेश जी के साथ है और अख्तार रोमानी के अल्फाजे, ए दिलरुबा कल की बात।

Beautiful song, wonderful song from the movie Anjam 1968. La Cocorroca del Churaniola, The Heart of Millions, The Mighty Mukeshji, Sadiriti, Suman Kalyan Purji, Mahan Sangeetkaru Zamanikar, The Great Ganeshji ke saanch par aur Alfazeta Akhtar Romanika. हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुन है बुधवार का रात्रि का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। 8 मिनट बाकी है 8:30 बजने में। गीत और गजल ओल्ड इज गोल्ड खलिंग में संगीतकार का दास्तान नाम कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, जो आप श्रोताओं के समय लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है हमारे फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के बड़े स्टूडियो से। अगला बयान 4 जबरदस्त नगमे में चुन कर रखा हूं आप सभी को सुनाने के लिए। संगीतकारों का बादशाह और शहंशाह सीनों का पुजारी द ग्रेट किशोरदास जी के ब्यूटीफुल आवाज में, और ये 4 गाने कभी नहीं रिलीज किया गया था, तो मैं आप सभी को काफ़ी दिनों से सुनाने की कोशिश करना चाहता था, और आज वो दिन आया है। इन कॉमन सॉन्ग्स फ्रॉम किशोर कुमार जी पार्ट 7 में से निकाला हूँ, तो ज़रूर मिल के हम लोग सुनते हैं ये 4 गाने जो कम लोगों को मालूम होगा।

Beautiful songs, Chare Gania Pesunet, drie waren heel onbekend. Het laatste, dat klonk heel bekend voor natuurlijk. Hasinoka Pujari Aur Sangeetkar Ka Shahinsa Aur Pacha, the one and only, Chare Gania Kishorda ke beautiful awaaz mein sun rahe the. 20 minuut baki hai saathiyon, 8 bajne mein. कुछ ज्ञान के बातें हो जाए ना हमारे विद्वानों के लिए, पुराने जमाने और इस जमाने के कुछ विद्वानों, पढ़े लिखे लोगों, मशहूर लोगों ने जिंदगी के बारे में अति सुंदर सुंदर ज्ञान से भरी हुई बातें लिखे है सिताते के रूप में, जो मैं आप श्रोताओं के साथ बांटना चाहता हूँ। ये आशा उम्मीद लेकर कि इन बातों से हमेशा की तरह कुछ ना कुछ तो हम लोग सीखते ही रहेंगे। गौर फरमाए, अर्ज किया है श्री खेरा तरीफ जी ने कि वनेर ये सेल्फ नीट कंट इरोनी सेरन माँ किए ये सेल्फ बस पोतलक।

चलो छोड़ो शहर बंबई, ब्यूटीफुल हिंदी सॉन्ग फ्रॉम अ बंगाली मूवी uit 1960. महान संगीतकार उस जमाने का, द ग्रेट भूपेन हजारिका जी का बनाया हुआ ये बिल्कुल मीठा धुन. अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं साथियों, और ये साथ ही साथ हमारे पहला अध्याय ओटिस कोल्ड का आखिरी बयान होगा. सुनने को जा रहे हैं आप सभी को सुरुका देवी, द क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी और महान संगीतकार जयदेव जी का बनाया हुआ ये अति सुंदर सॉन्ग. जयदेव जी के बारे में जितने मैं कहूँ कम है. महान संगीतकार पुराने जमाने के, और जितने गाने ये जबरदस्त म्यूजिक डायरेक्टर कंपोजर ने बनाया सभी सुपरहिट साबित हुए. मिलके सुनते हैं ये दिल और उनकी निगाहों के साए. लता जी कभी ने अपने इंटरव्यू में कही है कि जब जब जयदेव जी ने मुझे बुलाती थी, मैं कुछ एक्स्ट्रा रिहर्सल और अपने आप को तैयार करके उनके पास जाती थी, क्योंकि ये हाई लेवल का कंपोजर था. मिलके सुनते हैं ये अति सुंदर बयान स्पेशल आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम.

फन हिंदुस्तानी रेडियो का बुधवार का रात्रि का प्रोग्राम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। 30 सितंबर 2026 het laatste dag van de maand op je programma sun rahe hai jo aap shrotaon ke samne live broadcast ho raha hai Den Haag Sheer se bade studio Faun Hindustani Radio ka 2 minute guzar chuka hai 9 bajkar tumhari full team ki taraf se aap shrotaon ko ek baar phir se swagatam karyakram mein तमाम टैक्सी ड्राइवर्स जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम कार्यक्रम में एंड अतिरिक्त वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स सोसलो बिलो बियॉन्ड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू एंड अतिरिक्त बदंत फॉर हेट लॉयस्टरन तो जो भी रेडियो का काम हो ना खास फरमाई से जरूरी खबरें इस तिहारे देन कन्फा हो हिंदुस्तानी रेडियो की फाइट सिस्ट डाउन सर्विस गारंटी क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश हो ना मात पर हम लोग बनाकर और जितने बार आप चाहेंगे उतने ही बार हम लोग चला देंगे बंधु और ये भी की फाइट सस्ते दाम में मैं तो सदियों से आप श्रोताओं से यही कहते आ रहा हूँ कि फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप सभी को होने देश भर में नहीं मिलेगा यारो आप आजमा कर तो देख Bel van maandag tot vrijdag tijdens kantooruren op de volgende telefoonnummers 070-365-2247. Ja, Studio Katarka nummer 070-362-2077. Ik herhaal kantoor 070-365-2247. Studio Katarka nummer 070-362-2077. आज नहीं तो कल जरूर किसी दिन आपको ये नंबर काम आएंगे तो नोट करना मत भूलना इसी तरह हम लोगों के बारे में रिक्लाम बनाते रहना साथियों चर्चा करते रहना और हो सके तो थोड़ा बहुत ढंढोड़ा भी पीट देना क्योंकि आप लोग है तो हम लोग भी है ना मिलजुल कर हम लोग काम करते हैं और ये भी आप लोग के खिदमत में Bent u nog geen lid van Faun Hindustani Radio, to Binti Guzaris niveden kiya ja raha hai ki aap bhi jald se jald hum logo ka member bane aur o ko bhi banaye. Aapko to dher sare fayda hi fayda hai. En zo, als jullie allemaal weten, hebben we ook onze eigen karaoke-team van Faun Hindustani Radio waar een stuk of 8 omroepers en omroepsters meezingen. Elke laatste donderdag van de maand vanaf 6 uur kunt u live karaoke verwachten bij Faun Hindustani Radio waar een stuk of soms 6, soms 7, soms 8 present zijn om jullie allemaal live te entertainen. En volgens velen zijn wij de primeur op de radio met live karaoke. तो आप भी जल्द से जल्द हम लोग का मेंबर बने और रोको भी बनाए तो आप भी आइए और ये जो छोटा सा मोटा सा फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का परिवार बनते जा रहे हैं आप भी आकर उसमें शामिल हो जाए सभी जानकारी इसके बारे में आप तार करे tijdens kantooruren op 070-365-2247, dan wordt u automatisch doorverbonden naar onze teamleider, the one and only maestro Johnny number 1. Toen heb je gezegd hem ook aan member beneden, en ook op je beneden. U bent van harte welkom. Waar ik moet hebben, kijk je dan, Bertie, hij, Kari Grimke, terug staat hier, bieten we op hem ook, पहुंच चुके थे फिर हम चुपके चुपके तक जो रिलीज किया गया था 1975 में और सभी गाने चुपके चुपके का मैं आप सभी को सुना चुका हूं अब लेकर चलते हैं एक मूवी जो आल्सो रिलीज किया गया था 1975 में फिल्म चैताली तीन गाने मिला इस फिल्म में बहुत ढूंढने के बाद तो अब आप सुनेंगे नगमे आई फिल्म चैताली और इस फिल्म में धर्मेंद्र जी ने काम किया है ब्यूटी क्वीन मलकाय हुस्न द ग्रेट ग्रेट ग्रेट सैरा बानो जी के साथ और
प्रदीप कुमार भी इसका फिल्म में काम किया है, बिंदु, असरानी, दुर्गा, खोटे एट्सेत्रा एट्सेत्रा, सभी गाने डिग्रेट लेखक आनंद बख्शी जी ने लिखा है और महान संगीतकार जोड़ी डिग्रेट लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत है। अगला बयान, धरती अंबर नींद से जागे, अग्रेट सॉन्ग आप सुनने को जा रहे हैं, भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता जी के आवाज में और साथ उनकी दे रहा है द ग्रेट मनदे जी।

Si Jagge, beautiful song, wonderful song from the movie Chaitali 1975. Lakshmigan Pyare Lal ke saaj Anand Bakshi ke alfaze aur awaze tha Lata ji aur Manna Dey ji ka. 13 minute guzar chuka hai, now bachkar agla bayan from the same movie Chaitali. Aur ek bar phir भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी और हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का सरस्वती माँ द ग्रेट लता जी सरगम के फूल.

uit de film Chaitali. Bharat Ratna Queen of Melody, Lata Mangeshkar ji ke beautiful awaaz mein composed and arranged by Mahan Sangeetkar Jodi the Great Lakshmikant Pyare Lao ji. Agla bayan also uit de film Chaitali aur saath hi saath aakhri bayan, want teen nagme mila tha us film se. और लाते हैं एक बार फिर भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता जी को, और वो सुनाती हैं आप सभी को महबूबा नाम है मेरा.

सुंदर बयान क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी के ब्यूटीफुल आवाज में आप श्रोताओं सुन रहे थे, और ये भी खास करके लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साथ पर। सभी गाने फिल्म चैताली का आप सुन चुके, लेकर चलते हैं एक फिल्म जो ऑल्सो रिलीज किया गया था, फिल्म अपने दुश्मन ओक एनेक्टी फेफन सेफन तक। और इस फिल्म में धर्मेंद्र जी ने काम किया है, रीना रॉय जी के साथ संजीव कुमार, लेखक कमर जला ललबादी की ये अल्फाजे है, और संगीत है द ब्रदर्स कल्याण जी आनंद जी का। तो फिल्म अपने दुश्मन में से ये अति सुंदर बयान आप सुनिए, और इस बार लाते हैं द ग्रेट आशा भोसले जी को, और वो सुनाती है आप सभी को हो लगा ऐसा पीछे।

क्या बात है, अति सुंदर बयान, और चलते चलते रुक गया। ये भी होता है। आशा भोसले जी के ब्यूटीफुल आवाज में आप सुन रहे थे एक फिल्म अपने दुश्मन।

0: अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं, दो मिनट बाकी है साथियों, 9:30 बजने में और बुधवार का रात्रि का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं ओल्ड इज गोल्ड गीत और गजल। और नगमे चल रहे हैं जिन मूवीज में महान अभिनेता द ग्रेट एक्टर धर्मेंद्र जी ने काम किया है, और हम पहुंच चुके हैं फिल्म अपने दुश्मन तक, जो रिलीज किया गया था में। तो दो नगमे सिर्फ इस फिल्म में मैंने पाया था। तो अगला बयान इस देश का सोचा क्या होगा सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को सुर का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब कोरस के साथ कल्याण जी आनंद जी के साथ पर।
1: चांदी
2: की
1: दुश्मन।

क्या बात है, अति सुंदर बयान श्रोताओं भी सुन रहे थे इस देश का सोचा क्या, रफी साहब जी और कोरस के आवाज में कल्याण जानन जी के सांच पर। पूरे 3 मिनट गुजर चुका है साथियों, 9:30 तो वक्त हो गया है भी कुछ शेर शायरी हो जाए ना हमारे शेर्स के जाने वालों के लिए। अर्ज किया है यार कुछ इश्क के बारे में, क्या इश्क हो गया था शिद्दत से मुझे, क्यों रो रहे हो मुद्दत से, क्या तुझे इश्क हो गया था शिद्दत से, मुझे तो तजुर्बा है तभी कहता हूं मौत अच्छी है मोहब्बत से। जिंदगी में बार बार सहारा नहीं मिलता है यारो, जिंदगी में बार बार सहारा नहीं मिलता, बार बार कोई प्यार से प्यारा भी नहीं मिलता, है जो पास उसे संभाल के रखना, है जो पास उसे संभाल के रखना, खोकर वो फिर कभी दोबारा हो सके नहीं मिलेगा। हम खुदा से तेरी मांग करते हैं, तन्हाई में सिर्फ तुझे याद करते हैं, तू आए या ना आए वो तेरी मर्जी, तू आए ना आए वो तेरी मर्जी, पर आज भी हम तेरा ही इंतजार करते हैं।

एक दो तीन हो जाती है भैया। जबरदस्त सॉन्ग फ्रॉम द मूवी शोले 1975 हसीनो का पुजारी किशोर दा के ब्यूटीफुल आवाज में आप इतनी सुंदर बयान को सुन रहे थे। हम कंपोनेडो और मैस्ट्रो आर डी बर्मन और लिखा है ये जबरदस्त सॉन्ग को आनंद बख्शी जी ने। 15 मिनट रह गया है साथियों 10 बजने में और आप चुन है आप ही का मन चाह रेडियो स्टेशन पर हमारे दिनाशर का फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर 24 आवर्स एट योर सर्विस मी गुरु। अगला बयान जबरदस्त सॉन्ग और लाते हैं प्रोग्राम में जबरदस्त गायक म्यूजिक डायरेक्टर कंपोजर सिंगर द वन एंड ओनली राहुल देव बर्मन जी के आवाज में आप सुनिए एवरग्रीन जबरदस्त हिट सॉन्ग है देख बे 40 मिलियन व्यूज ऑल महबूबा ओ महबूबा आप सभी प्रिय प्रिय साथियों के नाम।

Hi, maestro Adi Berman from the movie Sholay 1975. और Adi Berman जी के आवाज में, उन्हीं के अंदाज में, उन्हीं के स्टाइल में ये थी सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना और अल्फाज था आनंद बख्शी जी का। 11 मिनट बाकी है साथियों, 10 बजने में अगला बयान एक एवरग्रीन होली सॉन्ग आप सुनिए। आवाजें है लता जी, किशोर दा और साथियों का, मिलके सुनते हैं ये जबरदस्त होली सॉन्ग कंपोनियर और आल्सो माएस्ट्रो Adi Berman।

शराबी क्या

फाउंटेन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। ले तो निकलिए तार कीजिए 9735 तक 20 तक 7 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

हिंदुस्तानी रेडियो का बुधवार का रात्रि का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। दो मिनट गुजर चुका है 10:00। हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम कार्यक्रम में। एंड नैटुरली वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स सो विल बी ऑन ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू एंड नैटुरली बेडंक्ड फॉर एट लिस्टनिंग। जो भी रेडियो का काम हो देन कन्फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो। खास फरमाई से जरूरी खबरें इश्तिहारे देन कन्फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो। सभी जानकारी बेलेटाइडेंस कंटोर यूरोप 070-365-2047 या तो अब 070-362-2077। जो भी रेडियो का काम हो ना देन कन्फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो। इसी तरह हम लोगों के बारे में चर्चा करते रहना है यार और रिक्लाम बनाते रहना है। हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू इसके लिए और हमारे फुल टीम की तरफ से आप सभी को तह दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप लोग हैं तो हम लोग भी है ना। तीनों के लिए फनफाउन हिंदुस्तानी रेडियो तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और ओ को भी बनाए। आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। Natuurlijk hebben we ook onze eigen karaoke team elke laatste donderdag van de maand vanaf 6:00 s'avonds live karaoke op Fahon Hindustani Radio. Een stuk of 6 tot 8 omroepers live voor jullie gaan zingen. We hebben het al 2 keer gedaan. Heel veel goede respons ook wereldwijd. En volgens velen een primeur op de radio. Dus een programma koos, en natuurlijk volg onze social media en ook van de omroepers. Dan hoort u of ziet u heel gauw waar wij binnenkort live voor u gaan zingen. Dan bent u ook van harte welkom natuurlijk. Toen aap je hem ook aan member bené, ouroko bené. Toen aap lo ga je, je jo, chota sa mota sa hem loka fahun. हिंदुस्तानी रेडियो का परिवार है जो हॉलैंड में हम लोगों को सुनते हैं, सरनाम देश में और जाने कितने देशों में इंटरनेट के लहर द्वारा तफील मुफ्तनुम। तो आप भी आइए और इस छोटा सा मोटा सा फाहन का जो फैमिली है बनते जा रहे हैं, आप भी आप कर उसमें शामिल हो जाए। 070-365-2047 पर आप तार करें, dan wordt u rechtstreeks doorverbonden naar onze teamleider, de one and only maestro, Johnny Number One. Aur aap unse zarur iske bare mein baatein shaate kare. Aap bhi jald se jald member bane aur roko bhi banaye. Ek dam lekar chalte hai program ke taraf. Kuch nagme reh gaya hai sunane ke film Shole ka. जबरदस्त सॉन्ग क्वीन ऑफ मेलोडी भारत रत्न लता जी का ये सुपर हिट सॉन्ग हाँ जब तक है जान मैं नाचूंगी। मास्टरपीस ऑफ कंपोजिंग बाय मास्टरो आरडी बर्मन और अल्फाजे क्या है आनंद बख्शी जी का। भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी सुरोका देवी और हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री जी का सरस्वती माँ स्विंग लता जी।

ब्यूटीफुल सॉन्ग दर्द से भरा हुआ अति सुंदर बयान है द फिल्म शोले 1975 लता जी के ब्यूटीफुल आवाज में आप ये अति सुंदर बयान सुन रहे थे। कॉम्पोनियड और आर डी बर्मन और अल्फा से था आनंद बख्शी जी का। 12 मिनट गुजर चुका है साथियों, 10 बजकर वक्त भी धीरे धीरे करीब आने लगा है। तो ये आखिरी बयान है द फिल्म शोले। आप लोग तो जानते हैं जितना बैंड है दुनिया भर में, मेरे ख्याल से ये आखिरी नगमा बजाते हैं शादियों में, महफिलों में। मनदे और किशोर दा का गाया हुआ ये सुपरहिट सॉन्ग कॉम्पोनेट और माएस्ट्रो आर डी बर्मन। और अल्फाजे, क्या अल्फाजे है दोस्ती के बारे में कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे और हमेशा हमेशा के लिए नहीं तोड़ेंगे। नेवर और एवर ग्रीन दोस्त हम लोग रहेंगे और दोस्ती को बनाए रखेंगे। दैट इज ओक हैड ग्रोट बोडस्काप फन इट लीट ना फ्रेंड टू। मिलकर सुनते हैं एवर ग्रीन सॉन्ग। और मेरे ख्याल से बहुत बार ये सॉन्ग एक साल में गाया जाता है। Hey!

wonderful song, super hit song from the movie Sholay 1975. Kishore Dhawan deed die keer als een meetisondrumiana op zijn hit heer, gecomponeerd door maestro Adi Burman, geschreven door Anand Bakshi. Jeremy Drake, ja, hey, saathiyo, 10:30 bajne mein waqt bhi dheere dheere kareeb aa raha hai. To kuch aakhri shades ho jaye na aaj ke mere hisse ke karyakram mein. Na zikr kar na fikr kar, na zikr kar na fikr kar, apne jazbaaton ka tu bas qadar kar. जो तेरा है वो तुझे मिल ही जाएगा, अपनी बारी का बस तू सबर कर. कीमत पानी की नहीं प्यास की होती है, कदर मौत की नहीं सांस की होती है. प्यार तो बहुत लोग करते हैं दुनिया में, प्यार तो बहुत लोग करते हैं दुनिया में, पर कीमत प्यार की नहीं विश्वास की होती है. कुछ पल की हंसी देकर जिंदगी रुलाती क्यों है, कुछ पल की हंसी देकर जिंदगी रुलाती क्यों है. जो किस्मत में नहीं होते किस्मत उनसे मिलाती क्यों है.

0: अर्ज किया है यारों की ख्वाबों की दुनिया में हम खोते गए, होश में थे फिर भी मदहोश होते गए। जाने क्या जादू था उस अजनबी चेहरे में, जाने क्या जादू था उस अजनबी चेहरे में, खुद को रोका बहुत फिर भी उसके होते गए। आखिरी शेर साथियों, एक बात सुनो, मुझे नहीं पता मैं कब तक इस दुनिया में हूं, मुझे तो नहीं पता मैं कब तक इस दुनिया में हूं, लेकिन जब तक हूं, लेकिन जब तक हूं, मोहब्बत सिर्फ आपसे रहेगी, ये वादा है मेरा। तो ये था कुछ आखिरी शेर आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में, और वक्त जो करीब आते हैं यारो, उसे देखते ही मैं ये सोचा कि आज के मेरे हिस्से का ये आखिरी बयान होगा। तो सभी नगमे फिल्म शोले का मैं आप सभी को सुना चुका हूँ, जो रिलीज किया गया था नेगेटिव फिल्म सीन तक में। अब लेकर चलते एक और जबरदस्त मूवी जो रिलीज किया गया था एनिकटिन सेशन सिंफन तक में, और देखा जाए बहुत ही जबरदस्त नाम कमाया था ये फिल्म ओपखनोमा ओपहत एलंत माल्टा फिल्म चरस। और इस फिल्म में धर्मेंद्र जी ने एक बार फिर अपने सेकंड वाइफ हेमा जी के साथ काम किया है, एक बार फिर अमजद खान, रूना ईरानी इस फिल्म में काम किए है, महान लेखक एक बार फिर आनंद बख्शी के अल्फाजे, और द ग्रेट लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के संगीत है। तो फिल्म चरस से आप ये सुपरहिट सॉन्ग को सुनिए, और देखा जाए बहुत ही जबरदस्त संगीतकार जोड़ी, और क्या जोड़ी था किशोर दा और लता जी के आवाज के। तो ये दोनों आवाजें आप सुनिए ये सुपरहिट सॉन्ग में जो आप अभी सुनेंगे। कल की हंसी मुलाकात के लिए एक जबरदस्त सॉन्ग एटनीटी सेशन सीखने तक, और साथ ही साथ आखिरी बयान आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में स्पेशल आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम।
1: गुड नाइट।
0: गुड नाइट।
1: गुड नाइट।
2: अच्छा गुड नाइट।

Zoen Red uit de film Cherus 1976. Daar minder over hem, maar Lini Jika is superhit movie. Over Ganewalit he संगीतकारों का बादशाह और शहंशाह द वन एंड ओनली हसीनों का पुजारी किशोर दा उनका साथ दे रही थी लता जी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के सांच पर और अल्फाज था आनंद बख्शी जी का। एक मिनट रह गया है साथियों 10:30 बजने में, तो यही तक था आज का मेरे हिस्से का प्रोग्राम जो समाप्त होने को आया। ये आशा उम्मीद लेकर घर को जा रहा हूँ साथियों कि जिस तौर तरीक से मैं कोशिश किया आप श्रोताओं को सेवा करने में, ये आशा उम्मीद है कि मेरा पेश किया हुआ प्रोग्राम आप सभी को पसंद आया हुआ होगा। अगर जिंदगी कुदरत ने साथ दिया तो आने वाले रविवार शाम 5 बजे मैं हाजिर हो जाऊँगा आप सभी को सेवा करने के लिए। मैं सरनामी संगीत पहला दूसरा अध्याय और तीसरा अध्याय में ओनली new Bollywood songs from the film industry. हमारी बात आप प्रोग्राम को जरूर सुनते रहना। जाते जाते हमेशा की तरह कुछ ना कुछ गुनगुना देता हूँ, आदत से जो मजबूर हूँ ना।

और अगर जिंदगी खुदरत ने साथ दिया तो आने वाले रविवार शाम 5 बजे मैं हाजिर हो जाऊंगा। बाय बाय, लव यू ऑल फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। सो सो लवी लवी एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू एंड बेडंक फॉर इट लेट्स रन।

आप सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम राजन के साथ। अब की बार दोस्तों मैं चला जाता हूँ श्री नामदेश, वहां पर रहता है उस्ताद जॉनी बच्चू। और जॉनी बच्चू क्या फरमाएंगे, जिस दिन जिस दुनिया से नफरत मैंने खोजा है दोस्तों, और कई सिलेक्शन मैंने पाया है, और सभी सिलेक्शन में से मुझे ये गीत सबसे अच्छा लगा, तो मैं सोचता हूँ आप सभी से मैं ये गीत बांट लूँ जॉनी बच्चू के आवाज़ में।

वाह क्या आवाज है मिस्टर जॉनी बच्चू के आवाज में भी आप गीत को सुना रात कली। ये रात का कली कभी जो है जो वो कभी कभी सोने नहीं देते हैं, फिर भी ख्वाब में आए हैं।

रात्रि कली तो वादा किया है एक बार फिर ख्वाब में आने को। दोस्तों आपको सिर्फ सोना पड़ेगा, रात्रि को आग बंद कर लेना तो रात कली जरूर आ जाएंगे आपके ख्वाब में। ये दिल का रिमिक्स है लेडी संजना एंड मिस्टर मुका।

जब हम सड़क पे चलते हैं, रास्ते पे चलते हैं, कभी कभी लिफ्ट में, कभी कभी सुपर मार्केट में भी बहुत अजनबी लोगों से मुलाकात होते हैं, लेकिन एक अजनबी हसीना जब मिल जाता है तो क्या बात हो जाता है।

प्यार का नगमा है। प्यार तो दुनिया में कई लोग ने किया है, सभी कोई प्यार किया है। प्यार चांदन ने किया है, प्यार नली ने किया है, प्यार विद्या ने किया है, प्यार आशा ने किया है, प्यार रोशन ने भी किया है।

प्यार का नगमा है जिंदगी कुछ भी नहीं, जिंदगी कुछ भी नहीं सिर्फ तेरी मेरी कहानी है। इन हवाओं में, इन फिजाओं में तुझको मेरा प्यार पुकार। रिमिक्स सॉन्ग।

लफ्जों के है दिल की कहानी, दो लफ्जों की है दिल की कहानी, दीपावली सुमैया के आवाज में।

0: दोस्तों, ये दिल का चैन है जो है, ये कब मिलता है? जब दिल खुश रहता है, जब प्यार हो जाता है तो दिल खुश रहता है, वगैरह वगैरह। लेकिन जब दिल को चोट लगता है तो ये जितना चैन है ये सब चला जाता है। इसलिए दिल का चैन जो है, हमेशा जोड़ते रहना, साथ रखना और कभी मत छोड़ना।
1: अपनी बहुत ही मेलोडियस आवाज में वो एक नहीं बल्कि अनेक गानों की कुछ प्यार, अभी गाना भी ए पे है बराबर, तो हमें बहुत फक्र है कि मैं सुर लगाना, वो जो कॉम्प्लीमेंट किया कि आपने सब।

बातों ही बातों में होना है जो हो जाता है, आंखों ही आंखों में।

0: आंखों में यारों का दिल खो जाता है।
1: दुनिया में लोगों की धोखा कभी हो जाता है। दोस्तों, मान लिया जाए आप अपन प्रेतियों या प्रीतमा के साथ सड़क पर चल रहे होंगे, खाली सड़क है, एक फैलाते हुए है और बारिश का शुरुआत हो जाता है। बारिश का शुरुआत हो जाता है, आप दोनों के पास सिर्फ एक पारापली, सिर्फ एक छतरी है। क्या आप करेंगे? दोनों जाकर छतरी के नीचे खड़े हो जाएंगे। ये तो हकीकत है, वास्तव में ये काम आप जरूर करेंगे। लेकिन जब बारिश खत्म हो जाता है तो क्या होता है? आप फिर दूसरे बगल, वो भी दूसरे बगल। तो वो समय जो आप छतरी के नीचे खड़े होते हैं, बारिश होता है, तो आप सिर्फ दुआ मांगते होंगे कि बारिश हमेशा होता रहे और हम दोनों हमेशा साथ खड़े रहे। ये भी, ये बात में भी कुछ मजा है दोस्तों।

नरम अंदाज का सॉन्ग भी आप सुनेंगे, हम आज कहीं दिल खो बैठे, माइटी मुकेश की आवाज में आप गीत सुनेंगे। इस फिल्म में दिलीप कुमार, नरगिस और साथ ही साथ राज कपूर भी इस फिल्म में काम किया। दोस्तों, इसी फिल्म के शूटिंग के समय राज कपूर नरगिस से प्यार हो गया है दोनों में, और ये दोनों का प्यार बहुत दिन तक जारी था। साथ ही साथ ये दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन राज कपूर शादीशुदा था कृष्णा से, राज कपूर का शादी हो गए थे, तो इसलिए नरगिस का माता पिता नहीं चाहते थे कि नरगिस आगे चलकर राज कपूर के साथ प्रेम करे। तो आगे में चलकर नरगिस का शादी तो सुनिधत के साथ हो गया, लेकिन राज कपूर दोस्तों न सिर्फ नरगिस, पद्मिनी के साथ भी प्यार मोहब्बत किया। उसके बाद वीएनटी माला, साथ ही साथ हेमा मालिनी के साथ भी राज कपूर प्यार और मोहब्बत किया। फिल्म अंदाज का सॉन्ग आप सुनेंगे। दिलीप कुमार ये गीत दिल के बाद पियानो के साथ आपको सुनाएगा।

0: देवानंद भी एक टॉप एक्टर था दोस्तों, और बहुत दिनों तक फिल्मों में काम किया। आप जानते हैं देवानंद दीवाना था सिन्नत अमन के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों में प्यार मोहब्बत था। लेकिन एक दिन के बाद है देवानंद ताज होटल में सिन्नत अमन के साथ खाना खा रहे थे, तो उसी समय राज कपूर वहाँ पहुँचा। और राज कपूर ने थोड़ा से नशे में थे और जाकर पीछे से सिन्नत अमन को पकड़ लिया, तो ये बात देवानंद को अच्छा नहीं लगा। तो उसी दिनों से उसी वक्त से देवानंद और सिन्नत अमन दोनों में प्रॉब्लम हो गया। ये भी होता रहता है दोस्तों। लेकिन राज कपूर, जैसे मैंने कहा, कई फिल्म एक्ट्रेस के साथ प्यार मोहब्बत की, उनका समय था उन दिनों में। और राज कपूर के बाद भी बहुत से फिल्म एक्टर्स हैं इन दिनों में, तो चलता फिरता रहता है फिल्म दुनिया में। आज शादी, कल जुदाई, उसके बाद फिर शादी, फिर जुदाई, वो होता रहता है। लेकिन फिल्मी दुनिया में बहुत से होता है।
1: राजा,

ओ मेरे राजा, ओ मेरे रानी। दोस्तों वैसे दिलीप कुमार भी सायरा बानो से शायरी की, लेकिन उससे पहले मधुबाला का ऊपर दीवाना था। ये दोनों में प्यार मोहब्बत चलता फिरता था, लेकिन बात यह है कि दिलीप कुमार एक बार गुस्से में आकर मधुबाला का पिता को एक देखता हाथ और कह दिया। तो पिता ने कहा दिलीप साहब को चाहिए माफ़ी मांगने को, लेकिन दिलीप ने कहा मैं माफ़ी नहीं लूँगा। तो आगे चलकर मधुबाला ने शादी किशोर कुमार से कर ली।

कुमार सानू, पद्मश्री कुमार सानू के आवाज में मैं एक गीत को पेश करूंगा। दोस्तों आप सभी को मानना चाहिए कि कुमार सानू को वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज बुक में उनका नाम लिखा गया, इसलिए कि कुमार सानू ने 28 गीत एक रोज में बनाया। दोस्तों एक रोज में 28 नगमे सॉन्ग्स पेश किया है, ये एक रिकॉर्ड है, एक दूसरा गायक ये काम नहीं किया है। तो सानू के आवाज़ में मैं आपके सीने में

जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ मेरे महबूबा। ये तस्वीर का कहानी दोस्तों, मुझे याद हो गया बीते हुए दिनों में सुनाम देश में जब लोग फिल्म देखते थे तो ज़्यादा से ज़्यादा जब हेलन का समय आते थे एक का तो लोग बहुत से हल्ला मचाते थे। हेलन का बहुत फैन था दोस्तों, ये एक फिल्म में हेलन खेले थे, फिल्म लोग दो बार या तीन बार जाकर देखते थे। और फिर भी आप जानते हैं ये तस्वीर जो है फिल्मी स्टार्स का तस्वीर जो है ये लोग परमाणु का बाजार या बड़े बड़े दुकान में भी बेचते थे। रात में वहाँ सड़क के बगल में भी एक आदमी तस्वीर बेचते थे, लेकिन अगर आप गया वहाँ और पूछता कि मुझे एक हेलन का तस्वीर चाहिए तो वो सेल आउट, हमेशा वो बेचा जाता था। जिस हेलन का तस्वीर आते थे लोग खरीद लेते थे अपन बटुआ पोर्तोमनी में धर कर और घूमते थे। उन दिनों का शौक यही था।

मेरे महबूबा बहुत प्यार आया है तुम पे, पद्मश्री उदित नारायण एंड श्रिया घोषाल, नदीम श्रवण का लिखा हुआ गीत है। दोस्तों मैंने अभी कहा नदीम श्रवण ने गीत को लिखा, लेकिन जब गीत एक गीत तैयार होता है तो उसका शुरुआत एक राइटर, एक स्क्राइफर जो गीत लिखते हैं वहाँ से गीत का शुरुआत होता है। लोग कहते हैं कि राफी ने गीत बहुत अच्छा से गाया, मुकेश ने गीत अच्छा से गाया, ये लोग प्राइस पाए जाते, लोग तफोड़ी पीते, लेकिन जो लोग ये गीत लिखते हैं, जो कलाकार ये गीत लिखते हैं, सोच समझ के कई रोज लगता है, कई घंटे में ये गीत लिखते हैं, तो उसका तारीफ बहुत कम होता है। मैं सोचता हूँ आने वाले दिनों में ये म्यूजिक सॉन्ग राइटर्स जो है उनके बारे में कुछ बातचीत जरूर करूँगा।

जी की एक बार फिर मैं स्वागत करता हूँ, वेलकम कहता हूँ। पावन इंसान रेडियो पर आप चुन है, आप सुनेंगे दिल के बाद पियानो के साथ। के बाद पियानो के साथ चलेगा सिमी, फिल्म साथी का बात है। सिमी पियानो के पीछे बैठ गया है दोस्तों, और बगल में खड़ा हुआ है राजेंद्र कुमार और सामने विजयंती माला। और सिमी क्या फरमाएंगे अपन दिल का बात, आप खुद सिमी का दिल के बात सुनते रहना।

की बार आपन दिल के बाद पियानो के पीछे बैठ कर सुनाएगा राजेंद्र कुमार। राजेंद्र कुमार कहेगा, ऐ हुस्न जरा जाग, ऐ हुस्न जरा जाग, तुझे इश्क जगाए।

माँ सो रही है, साधना जी सो रही है, जब ये म्यूजिक सुना, ये पियानो का आवाज उसे गले में उसका कान में गया और राजेंद्र कुमार का आवाज, तो जाग गया और आहिस्ता आहिस्ता आकर राजेंद्र कुमार के सामने खड़ा हो गया।

जिंदर कुमार के आवाज का और जिंदर कुमार का दिल के बाट अभी आपने पियानो के साथ सुना। दिल के बाट पियानो से सुनाएंगे आपकी बार मनोज कुमार। मनोज कुमार पियानो बजा रहा है और सामने खड़ा हुआ है वहीदा रहमान और मुमताज। मुमताज का चेहरे पे तो खुशी है लेकिन वहीदा रहमान का चेहरा तनी मायूस मालूम होता है। पता नहीं क्या हुआ, आप हो सकता है अगर आप ये गीत सुनेंगे तो सुनने के बाद आपको मालूम हो जाएगा कि क्या हो रहा हुआ या क्या हुआ है उस वक्त वहाँ पर। दिल के बाद पियानो के साथ

के बाद पियानो के साथ आप सुन रहे हैं और आपको मालूम है दोस्तों फिल्म संगम। इस फिल्म में एक फूल था दो काते, यानी कि राजेंद्र कुमार और राज कपूर, और फूल था प्यारी सी फूल था वियंती माला। तो दोस्तों में जब प्रॉब्लम होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा ही प्यार मोहब्बत का बात रहता है। राज कपूर साहेब, राज कपूर जी पियानो के पीछे बैठा हुआ है और राज कपूर के पीछे बैठे हुए है वियंती माला, और उसके सामने राजेंद्र कुमार राज कपूर जी क्या फरमाते हैं। मुकेश की आवाज़ है दोस्तों, लेकिन ये फिल्म में राज कपूर ने प्लेबैक किया। राज कपूर के ये सॉन्ग है दोस्त दोस्त ना रहा, अपन प्यारी जिगरी दोस्त के लिए फरमाते हैं, सुनिए।

उस दोस्त नारहा के बाद आप जानते दोस्तों दिल में दर्द छा जाता है भी, न सिर्फ प्यार मोहब्बत में, लेकिन जब एक पिता बचपन में माता को और छोड़ के चला जाता है तो आप जानते हैं किस तरह से एक माँ अपन बालक को पोसते रहते हैं। लेकिन बात यह हुआ है कि देव मुखर्जी पिता प्रदीप कुमार को पहचान लिया है और प्रदीप कुमार अभी देव मुखर्जी को नहीं पहचाना कि वो उसका बेटा है। तो देव मुखर्जी पियानो के पीछे बैठे हुए हैं और सामने पिताजी खड़ा है, मुंह में एक सिगार लगाकर सुन रहे हैं ये गीत।

के बाद पियानो के साथ में अब की बार दोस्तों निखिल आतन शास्त्र की बात है। जब फिल्म ब्रह्मचारी पेश हुआ, शमी कपूर का प्यार था रायश्री से, लेकिन रायश्री ने शमी से प्यार किया और सगाई की प्राण के साथ। तो पियानो के पीछे बैठा हुआ है शमी और सामने बैठी हुई है प्राण और रायश्री, और शमी कपूर क्या फरमाते हैं सुनिए।

के बाद पियानो के साथ आप सुने, एक आखिरी दिल के बाद पियानो के साथ आप सुनेंगे दिलीप कुमार। दिलीप कुमार पियानो के पीछे बैठा हुआ है दोस्तों, और सामने बैठी हुए उदासी छाई हुए है चेहरे पर, बैठी हुई है वहीदा रहमान। और कुछ देर बाद आ जाते हैं, दिलीप के बगल में खड़ा हो जाता है मनोज कुमार। तो ये दोनों क्या फरमाते हैं मिलके, आप सुनिए दिल के बाद पियानो के साथ।

के बाद पियानो के साथ अभी आप सुन रहे थे दोस्तों फाहन हिंसानी रेडियो पर आप चुन है। हमेशा आप फाहन हिंसानी सुनते रहना और हर एक काम जो आपको रेडियो के जरिए कराना है आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे दफ्तर से न्यूज सीफ तक फिर सीफ पर आपको तार करना है। ओ माजिरे आशा जी के आवाज़ में आप गीत सुनेंगे। फिल्म बंदे हार्ट का सॉन्ग है दोस्तों, ये फिल्म जिसमें मुमताज अमिताभ बच्चन के साथ काम किया। ओ माजी रे

फिल्म बंदे हाथ का सॉन्ग मैं पेश कर रहा हूँ दोस्तों। इस फिल्म में मुमताज अमिताभ बच्चन के साथ काम किया। बात क्या हुआ है कि निखिल सीफन तक में जब ये फिल्म बन रहा था, फिल्म के शूटिंग के समय, तो मुमताज अपन मर्सिडीज बेंज से आते थे और अमिताभ बच्चन वही कदम रखा था फिल्मी दुनिया में, एक छोटा सा मोटर कार से आते थे। तो हमेशा जब मुमताज आ जाते थे तो अमिताभ बच्चन वहाँ दरवाजा के सामने खड़ा होकर इसका कार को तारीफ करते थे। शूटिंग के समय भी कार के बात मर्सिडीज बेंज के बातचीत करते थे। तो मुमताज ने सोचा ये आदमी को मेरा मर्सिडीज बेंज बहुत पसंद है। तो मुमताज क्या कहा दोस्तों, एक रोज ये शूटिंग के बाद मुमताज निकल के चला गया और अमिताभ बच्चन के मोटर कार लेके चला गया और अपन मर्सिडीज बेंज वहाँ छोड़ दिया। आमने सामने एक दो लोग जो था उनसे कहा कि कह देना अमिताभ साहब से कि तोहफा के रूप में ये बेंज वो रख सकता है। तो अमिताभ बच्चन जब शूटिंग के बाद बाहर आया और देखा उसका मोटर कार नहीं है, वहाँ बेंज खड़ा हुआ है, तो लोग गया उससे कहा कि आपका कार जो है, तो अब मुमताज उन्हें लेकर चला गया है। तो अमिताभ बच्चन के से बताया भी कि तोहफा के रूप में आप इन्हें रख सकता है। अमिताभ बच्चन बहुत खुशी हुआ और बहुत तारीफ किया मुमताज जी को। और आप जानते हैं दोस्तों, मुमताज अमिताभ बच्चन ये दोनों लगभग 5 या 6 फिल्म बनाए। मुमताज उन दिनों में एक पुराना एक्ट्रेस था, कई फिल्म खेल चुका था, लेकिन अमिताभ बच्चन वही जैसे मैंने कहा कदम रखा था फिल्मी दुनिया में। और अमिताभ बच्चन के उतना पैसा भी नहीं था उन दिनों में एक नया कार किने, तो एक पुराना सा कार लेकर स्टूडियो में आते थे। तो ये था अमिताभ बच्चन और मुमताज का कहानी फिल्म बंदे हाथ का।

हो माँ जी रे, आशा जी के आवाज में अभी आप सुन रहे थे गाता रहे मेरा दिल तू ही मेरी मंजिल, देवानंद का फिल्म गाइड का सॉन्ग किशोरदा के आवाज में, और साथ ही साथ लता।

गाता रहे मेरा दिल कहीं बीते ना ये रातें कहीं बीते ना ये दिन फाहन सारे पर आप चुन है

0: सीने में सुलगते हैं अरमान। एक बार फिर जगदीप सिंह के आवाज में दोस्तों आप सुनेंगे कहीं दूर जब दिन ढल जाए।
1: प्रोबेशन
0: क्लोज टू माय हार्ट का सिलेक्शन है।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीतों का संगम राजन के साथ। अब की बार दोस्तों मैं चला जाता हूँ श्री नामदेश, वहां पर रहता है उस्ताद जॉनी बच्चू। और जॉनी बच्चू क्या फरमाएंगे, जिस दिन जिस दुनिया से नफरत मैंने खोजा है दोस्तों, और कैसे सिलेक्शन मैंने पाया है, और सभी सिलेक्शन में से मुझे ये गीत सबसे अच्छा लगा, तो मैं सोचता हूँ आप सभी से मैं ये गीत बात लूँ जॉनी बच्चू के आवाज़ में।

वाह, क्या आवाज है मिस्टर जॉनी। बच्चू के आवाज में भी आप गीत को सुना, रात कली। ये रात का कली कभी जो है जो वो कभी कभी सोने नहीं देते हैं, फिर भी ख्वाब में आए हैं।

रात्रि कली तो वादा किया है एक बार फिर ख्वाब में आने को। दोस्तों आपको सिर्फ सोना पड़ेगा, रात्रि को आग बंद कर लेना तो रात कली जरूर आ जाएंगे आपके ख्वाब में। ये दिल का रिमिक्स है लेडीज संजना एंड मिस्टर मुका।

तेरे नाम किया। जब हम सड़क पे चलते हैं, रास्ते पे चलते हैं, कभी कभी लिफ्ट में, कभी कभी सुपर मार्केट में भी, बहुत अजनबी लोगों से मुलाकात होते हैं, लेकिन एक अजनबी हसीना जब मिल जाता है तो क्या बात हो जाता है।

प्यार का नखमा है, प्यार तो दुनिया में कई लोग ने किया है, सभी कोई प्यार किया है। प्यार चांदन ने किया है, प्यार नली ने किया है, प्यार विद्या ने किया है, प्यार आशा ने किया है, प्यार रोशन ने भी किया है।

प्यार का नगमा है जिंदगी कुछ भी नहीं, जिंदगी कुछ भी नहीं सिर्फ तेरी मेरी कहानी है। इन हवाओं में, इन फिजाओं में तुझको मेरा प्यार पुकार। रिमिक्स सॉन्ग।

लफ्जों के है दिल की कहानी, दो लफ्जों की है दिल की कहानी, दीपावली सुमैया के आवाज में।

0: की कहानी, दिल की कहानी के बाद दिल की चैन है दोस्तों। ये दिल का चैन है जो है, ये कब मिलता है? जब दिल खुश रहता है, जब प्यार हो जाता है तो दिल खुश रहता है वगैरह वगैरह। लेकिन जब दिल को चोट लगता है तो ये जितना चैन है ये सब चला जाता है। इसलिए दिल का चैन जो है हमेशा जोड़ते रहना, साथ रखना और कभी मत छोड़ना।
1: अपनी बहुत ही मेलोडियस आवाज में वो एक नहीं बल्कि अनेक गानों की कुछ प्यार की, अभी गाना भी ए पे है बराबर, तो हमें बहुत फक्र है कि मैं सुर लगाना, वो जो कॉम्प्लीमेंट किया कि आपने सब you.